ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि। तदनुसार 25 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर दो मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में समाचार, 7 बजकर 2 मिनट पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 9 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, 9 बजकर 2 मिनट पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10 बजकर 2 मिनट पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11 बजकर 2 मिनट पर बॉलीवुड ट्रेल्स। 12 बजे अंग्रेजी में समाचार, 12 बजकर 2 मिनट पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल। 1 बजे अंग्रेजी में हिंदी में समाचार, 1 बजकर 2 मिनट पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा मेरा वाला सॉन्ग।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदे विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त। पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्रवाई में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। मंत्रिमंडल की आखिरी आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के झंडू कुमार

ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक। और FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी के बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से मात दी। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शनिवार की इस सुबह में। और बिल्कुल सभी श्रोताओं को नई सुबह, सुनहरी और उम्मीदों से भरी सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। और कहते हैं कि सुबह की पहली सोच हमारे दिन का रंग तय करती है, और अगर सुबह मन के में अच्छे विचार आते हैं ना, तो चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल अपने आप ही आ जाती है, और दिलों में किसी के लिए अच्छा करने की एक जो भावना होती है ना, वो पूरा दिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बना देती है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बिल्कुल एक अच्छा एक विचार अपने मन में लेके आना है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही एहसास की जो ना तो बाज़ार में मिलता है, ना ही पैसों से ख़रीदा जा सकता है। बस ये एहसास मिलता है दूसरों की मदद करके। मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं होती, कभी किसी की बात पर ध्यान से आप उनको ध्यान से सुनेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो यह भी एक छोटी सी मदद आपकी तरफ से हो सकती है। किसी परेशान व्यक्तियों का हौसला बढ़ा देना, यह भी एक मदद होती है। और किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना, यह भी एक आपकी तरफ से छोटी मदद है, बट किसी के लिए यह बहुत बड़ा एक कदम हो सकता है। और किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लेके आना, बिल्कुल ये एक बहुत ही अच्छी आपकी तरफ से एक सपोर्ट हो सकती है किसी के लिए भी। तो बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि जब हम किसी की जिंदगी में रोशनी करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी अपने आप रोशन हो जाती है, अपने आप जगमगा उठती है। बिल्कुल, और इसी तरीके से हम भी आपको इनवाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है, स्टे ट्यून्ड, और इस सुनहरी सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष है आपके साथ। और बिल्कुल ज़रा सोचिए कि कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी की छोटी सी मदद की हो और उसके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर आपका पूरा दिन बन गया हो। बिल्कुल असल खुशी वही है जो बांटने से बढ़ती है। और आज की भागदौड़ बड़ी जो ज़िंदगी है ना, उसमें हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और हम लगातार ऑक्यूपाइड रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ। लेकिन सच तो ये है कि किसी की मदद करने के लिए हमेशा पैसों की नहीं बल्कि अच्छे इरादों की ज़रूरत होती है। आप समय निकालिए अपना और किसी सहकर्मी का काम आसान कर देना, बिल्कुल ये बहुत बहुत एक आसान काम है आपके लिए, क्योंकि आप तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते ही हैं ऑफिशियल वे में, तो आपके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन हो सकता है किसी के लिए बहुत मुश्किल हो, तो अगर आप उसकी मदद करेंगे तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी। और किसी बिल्कुल बच्चे को अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई में समय देंगे ना, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं और आपके लिए बहुत आप प्रैक्टिस करके यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो आप उनको एक अच्छे तरीके से उस समझा सकते हैं चीज़ों को। और किसी अकेले व्यक्ति का हालचाल पूछ लेना, क्योंकि अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतने घिरे हुए हैं ना कि किसी से कह नहीं पाते। लेकिन हो सकता है कि अगर कोई आपसे बात कर ले तो आपकी जो मन की जो जो भी खटासे हैं, जो भी आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, वो आसान हो जाएं, बहुत ईजीली आप उसको कॉप अप कर सकते हैं उन चीज़ों से। और ये छोटे छोटे कदम है कि जो कि किसी बड़ी उम्मीद से कम नहीं होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है किसी को अगर कोई उसका साथ देता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं ना, तो हमारे भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और आज सुबह जब भी आप घर से निकले ना, तो एक वादा खुद से ज़रूर कीजिएगा कि आज मैं कम से कम एक ऐसा काम ज़रूर करूँगा कि जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आए और किसी का काम आसान हो जाए। और बिल्कुल आप यकीन मानेंगे कि शाम तक आपको महसूस होगा कि आपका दिन पहले से कहीं बेहतर हो चुका है। बिल्कुल इसी बेहतरी के साथ आप लगातार चलते चले जाइए, जीवन को और भी अच्छा करते चले जाइए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और एक से बढ़कर एक संगीत आपके लिए हम यहाँ प्ले कर रहे हैं, एक और म्यूज़िक आपके लिए ट्रैक निकल रहा है म्यूज़िकल विजल के साथ शुरू कर रहे हैं। अभिजीत आपके साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही पलों में। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष आपके साथ कनेक्टेड है यहाँ पर। और इस सुबह पर फिलहाल एक कहानी आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा यहाँ पर मैं, कि एक बार एक छोटा बच्चा समुद्र किनारे टहल रहा था, बिल्कुल ऐसे घूम रहा था, और तेज़ लहरों के बाद हज़ारों स्टारफिश किनारे पर आ जाती थी, और बच्चा बिल्कुल ध्यान से इन सब चीज़ों को देख रहा था। और उसने सोचा कि क्यों ना एक एक स्टारफिश उठाकर समुद्र में वापस फेंक दी जाए। तो वो ऐसा ही करने लगा, तो वहीं पर एक और व्यक्ति आसपास उसको बहुत देर से देख रहा था, तो वो उस बच्चे के पास आया और कहा कि इतनी सारी स्टारफिश हैं तो तुम सबको नहीं बचा पाओगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बच्चे ने एक और स्टारफिश उठाई और समुद्र में फेंक दी और मुस्कुराकर बोला कि इसके लिए तो बहुत बड़ा फ़र्क है और इससे इसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो बिल्कुल इस कहानी से हम यही सीख लेते हैं कि हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन किसी एक इंसान की दुनिया ज़रूर बदल सकते हैं, उसकी ज़िंदगी को हम ज़रूर निखार सकते हैं। और यही सोच एक सकारात्मक समाज की शुरुआत करती है, और इसी प्रेरणा के साथ हम भी इस सफ़र को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हर सुबह अपने आप से बातें कीजिए आईने में बैठकर, और कहिए कि बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ और मैं दूसरों के लिए बहुत मददगार हूँ और बिल्कुल हेल्पफुल हूँ और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा, और बिल्कुल आज मैं किसी न किसी की मदद कर ज़रूर करूँगा और अपने दिन को बहुत बेहतर बनाऊँगा। और सकारात्मक सोच केवल अपने लिए नहीं होती बल्कि दूसरों के जीवन में भी एक आशा जगाने का माध्यम बन जाती है वो। और अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी कोशिश क्या बदलाव लाएगी, लेकिन सच तो ये है कि हर एक बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है, और एक मुस्कान, एक हौसला, और बिल्कुल यही एक हमारी ज़िंदगी का सफ़र होता है जो कि किसी की जो ज़िंदगी ना उसको बदल कर रख देता है। और अगर आपके पास देने के लिए धन नहीं है तो समय दीजिए, और समय नहीं है तो सम्मान दीजिए, और अगर वो भी संभव ना हो तो कम से कम एक मुस्कान ज़रूर दीजिए, है ना। और बिल्कुल इंसान की सबसे बड़ी पहचान बिल्कुल उसके ओहदे से, उसके पैसों से नहीं होती बल्कि उसके व्यवहार और उसके संवेदनशीलता से होती है। तो इसलिए अपने अंदर एक ऐसा इंसान पैदा कीजिए कि जो कि दूसरों को समझ सके। फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे जो लिसनर्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं और हमारे साथ मैसेज भेज रहे हैं। राजेश भल्ला जी मेरठ से हमें सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग, भेज रही हैं डॉली इस वक्त और प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं। साथ ही साथ पंकज भी अमरावती से हमारे साथ हैप्पी मॉर्निंग विश कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और भी तमाम लिसनर जो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त लेकिन मैसेज नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे जो संगीत हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल बस अब इस प्रोग्राम में इतना ही, अब चलता हूँ लेकिन मिलूँगा जल्द आपको मॉर्निंग में 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के साथ। फिलहाल कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय, जहां पर आपने सुना परीक्षित महाराज जी ने पूछा था कि ये बताइए कि सृष्टि कैसे करते हैं भगवान। और इसी का उत्तर देने से पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान की स्तुति की, और आज 24वें श्लोक में वो अपने गुरुदेव की स्तुति कर रहे हैं। उनके गुरुदेव हुए व्यासदेव जी। व्यासदेव जी उनके पिता भी हुए और गुरुदेव भी हुए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बु रुहा सवम। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास देव के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने याद किया है अपने श्री गुरुदेव को, और बात भी सही है, गुरु पूर्णिमा आने ही को है 29 तारीख को, और श्री गुरु पूर्णिमा को श्री व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। श्री गुरु पूर्णिमा एक श्रद्धांजलि है गुरु तत्व को, जो कि साक्षात भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान ही गुरुदेव के रूप में आते हैं। देखिए, ये जो जीव है ना, जीव, इसने ऐसा कुछ किया नहीं कि जिससे इसे मनुष्य जीवन मिले, लेकिन भगवान कृपा करते हैं और जीव को मनुष्य जीवन देते हैं, और तब भगवान ही कृपा करते हैं, वो स्वयं श्री गुरु के रूप में श्रवण गुरुदेव हों, चाहे शिक्षा गुरुदेव हों और दीक्षा गुरुदेव हों, इनके रूप में भगवान ही अपने आप को प्रकट करते हैं। वो कैसे होता है? जब कोई जीव मनुष्य देह पाकर भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति करते करते उनमें रमने लगता है और इतना तन्मय हो जाता है भगवान में कि उसकी अन्य वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, सिर्फ भगवान ही उसका काम में हो जाते हैं, तब उस जीव के चित्त में विशुद्ध सत्व का आविर्भाव होता है। और जब विशुद्ध सत्व का आविर्भाव होता है तो भगवान कृपा करके वहां अपनी गुरु शक्ति भेजते हैं, और साथ में भेजते हैं अनुग्रह शक्ति, कृपा शक्ति। तो चूंकि गुरुदेव के हृदय में भगवान की करुणा शक्ति होती है, गुरु शक्ति होती है, इसीलिए कहा जाता है कि वो भगवान के समान ही पूजनीय हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, माली होइया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए, तबे जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण, तहा विस्तारित होइया फले प्रेम फल, इहां माली से जे श्रवण कीर्तन आदि जल। तो ना जाने कितने ही शरीर जीव प्राप्त करता है, अनंत शरीरों में घूमते घूमते बड़े ही भाग्य से विभिन्न ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते उसे भगवान की कृपा से श्री गुरुदेव की प्राप्ति होती है, और श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता बीज की प्राप्ति होती है, और फिर वो भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का नाम कीर्तन करते करते, निरपराध रूप से भजन करते करते प्रेम रूपी फल को प्राप्त कर लेता है। प्रेम ही सर्वोच्च फल है भक्ति का, और जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो फिर
उसे भगवत चरण का आश्रय प्राप्त हो जाता है। तो ये जो गुरु तत्व है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। और गुरु तत्व को समझने के लिए हम अपने शास्त्रों का सहारा लेते हैं और भगवान बारंबार कहते हैं कि भाई गुरुदेव को मुझसे अभिन्न समझना। अभिन्न कैसे? गुरुदेव वो जो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र देते हैं, श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं, श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान देते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति का अनुभव भी प्रदान करते हैं, वो है गुरुदेव। तो श्री राम की भक्ति हो, श्री कृष्ण की भक्ति हो, विष्णु तत्व की भक्ति जो देते हैं, जो वैष्णव हैं, उन गुरुदेव का आश्रय लेने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम भवबंधन से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी ऐसे तो अनेक देवी देवता भी हैं और देवी देवताओं का मंत्र प्रदान करने वाले बहुत गुरुदेव भी हैं, परंतु उससे संसार से निवृत्ति नहीं पाई जा सकती। भोग तो पाया जा सकता है, लेकिन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से हमें भगवान के चरणों की सेवा मिल सकती है। ये जो शरीर हम धारण करते हैं, बारंबार आते हैं जाते हैं अज्ञान की वजह से, इनसे छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में और उसमें भी 17वें श्लोक में एक प्रश्न पूछा गया है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यथैता महेश्वरी माया दुस्तराम कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जः स्थूल धियो महर्षि इदमुच्यताम।

नवयोगेंद्र के संवाद में ये बात कही गई है कि प्रभु इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बड़ा ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाते। अब आप कृपा करके ये बताइए कि जो लोग शरीर आदि में मैं बुद्धि रखते हैं या जिनकी समझ मोटी है वे भी क्या अनायास ही इस माया को पार कर सकते हैं, भव सागर को पार कर सकते हैं? तो योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा, कर्मण्यार रभमाणा नाम दुखत्यै सुखाय चा पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्मा मृत्युना गृहा पत्याप्त पशुभिः का प्रीति ही साधितैश्च चले एवं लोकम परम विद्यानश्वरम कर्म निर्मितम सत्तुल्यातिशयध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। तो उन्होंने कहा, देखो राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति माया को पार करना चाहता है उसको ये सोचना चाहिए कि उनके कर्मों का फल कैसे उल्टा होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन उनका दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही देखो, इससे दिन पर दिन दुख ही बढ़ता है और इसको पाना भी कठिन है, और यदि मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो ये मृत्यु स्वरूप है, उसे व्यसन लग जाते हैं। और जो धन की उलझन में पड़ जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन, ये सब भी अनित्य हैं, नाशवान हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या उसे सुख शांति मिल सकती है? इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे ये भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक पर लोग भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ और लाग डांट लगी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव लगा रहता है, कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है। कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है, नाश का भय तो वहां भी नहीं छूट पाता। तो फिर क्या करना चाहिए? तब 21वें श्लोक में उन्होंने कहा, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो सच में अपना कल्याण चाहता हो उसे श्री गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और कैसे गुरुदेव हों? तो गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म के पारदर्शी विद्वान हों, जो शास्त्रों के मर्म को समझते हों, और वो अपने भक्तों में भजन का अनुभव भी संचारित कर सके। ऐसे तत्वज्ञानी हो और अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त की हुई रहस्य की बातों को बता सके, और साथ में परब्रह्म में परिनिष्ठित हो, उनका चित्त शांत हो, व्यवहारिक प्रपंच में वो विशेष प्रवृत्त ना हो। तो ये भी बड़ी बात है कि देखिए, हम इस जगत में भी देखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो भी हमें गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही है, जो हमें पढ़ाता है लिखाता है। हम बिना सिखाए हुए कुछ नहीं सीखते, बारंबार हमें सीखना पड़ता है, बारंबार कोई सिखाता है हम सीखते हैं, और ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि इस जगत में बारंबार जन्म लेना, मरना, कर्म करना, ये सब क्या है, ये विषय भोग, ये तो रोग है,

मुझे तो इससे ऊपर की वस्तु चाहिए। कोई कहे ठीक है भाई स्वर्ग चले जाओ, वो तो ऊपर की वस्तु है, तो वो कहेगा नहीं नहीं स्वर्ग नहीं जा सकते, ऐसी ऊपर की वस्तु नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मुझे चाहिए भगवद रस, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति अगर कोई सोचे चलो घर में बैठकर हम करते हैं,

हम भजन भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे भगवत तत्व को, जान ही नहीं पाएंगे आत्म तत्व को, समझ ही नहीं पाएंगे किस तरह से भजन करना है, किसका करना है, कैसे करना है। तो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो जो, वो होते हैं गुरु। यानी जो शास्त्रों के विरुद्ध ना हो, ऐसा ना कह दें अरे ये सब तो बस किसी ने लिख दिया होगा तुम मुझे सुनो, ऐसा ना कह दें। जो गीता भागवत की मर्म को जानते हों, जो जानते हों कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम का सम्राट वाक्य है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जानते हों, जो ये जानते हों कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कह ही दिया है कि मैं ही भगवान हूं, वो जानते हों, उसे घुमाने की कोशिश ना करें। अगर भगवान ने कह दिया है श्रीमद् भागवतम में कि मूर्ति की पूजा यानी भगवद मूर्ति की पूजा आवश्यक है, अर्चा विग्रह कहा जाता है उन्हें, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं, हमारी सेवा ग्रहण करते हैं, तो उसके विरुद्ध ना हो व्यक्ति, यानी भगवान की कही गई बातों के विरुद्ध ना हो, कभी भी ना हो, शास्त्रों में पारदर्शी हो, ताकि उनके आश्रित लोगों के संशयों का वो समाधान कर सकें, ताकि उनकी श्रद्धा पक्की हो सके भगवान में, और दूसरा परब्रह्म में अनुभवी हो। और जब कोई भगवान की भक्ति में अनुभव प्राप्त कर लेता है, भगवान का अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो वो शांत हो ही जाता है, व्यवहार का प्रपंच उसे ज़्यादा लुभान्वित नहीं करता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इससे मिलो उससे मिलो, ये करो वो करो, नहीं, वो शांत हो जाता है, वो भगवान के चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। तो ऐसे गुरुदेव का आश्रय लेना होगा। ऐसे गुरुदेव हो सकता है भगवत कथा बोलते हों, अगर वो भगवत कथा नहीं बोलते हों तो किसी श्रवण गुरु का आश्रय लेना होगा। अगर हमने श्री गुरुदेव से, जो कि दीक्षा गुरुदेव हैं, जिनसे हमने गोपाल मंत्र ले लिया है, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि दीक्षा गुरुदेव तो एक हो सकते हैं, परंतु वो हमें दे नहीं पा रहे हैं शिक्षा, या वो भगवत तत्व नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसे में एक श्रवण गुरु की भी आवश्यकता है जीवन में, जिनको हम श्रवण करें। ये गुरुदेव ऐसे होने चाहिए जो कि फिर से चिंता रहित हों, शांत हों, व्यवहार के प्रपंच में ज़्यादा प्रवृत्त ना हों, और उनका जो भजन है और हमें जो भजन मिला है हमारे गुरुदेव से, वो एक हो। ऐसे श्रवण गुरु का भी आश्रय लिया जा सकता है। और भजन में और गहरे उतरने के लिए शिक्षा गुरुदेव की भी आवश्यकता हो सकती है, अगर हमारे दीक्षा गुरुदेव हमें भजन की शिक्षा नहीं दे रहे हों, तो फिर शिक्षा गुरुदेव अगर हमारे जीवन में आते हैं, उनमें भी यही गुण होने चाहिए, वो शास्त्रों में पारदर्शी हों, भजन में पारदर्शी हों, परब्रह्म में अनुभवी हों, किसी की निंदा ना करें, क्रोधी ना हों, लोभी ना हों, और व्यवहार के प्रपंच में ज़्यादा ना प्रवृत्त हों, ज़्यादा दुनियावी प्रपंचों में ना निमग्न हों। तो ऐसे गुरुदेव हमारे जीवन में आने चाहिए, दीक्षा गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव, श्रवण गुरुदेव। अगर दीक्षा गुरुदेव ही हमें समस्त तत्व बता रहे हैं, भजन की शिक्षा भी दे रहे हैं, भगवान से भी जोड़ रहे हैं, तो फिर आवश्यक नहीं है कि हम जगह जगह भटके, है ना। तो 22वें श्लोक में प्रबुद्ध जी ने कहा कि जिज्ञासु को चाहिए कि श्री गुरुदेव को अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे, उनके पास रहकर भागवत धर्म की और भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भाव के साधनों की शिक्षा ग्रहण करे, क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपनी आत्मा का दान करने वाले भगवान
प्रसन्न होते हैं।

0: कितनी बड़ी बात है। तो श्री गुरुदेव का आगमन हो गया हमारे जीवन में, तो हम क्या करें? तो हम गुरुदेव के जीवन में आने पर क्या करें, यही बता रहे हैं यहाँ पर प्रबुद्ध जी। तो इसी पर चर्चा जारी रखेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि एक शिष्य अपने श्री गुरुदेव से क्या सीखे, कैसे व्यवहार करे गुरुदेव से। तो 22वें श्लोक में कहा गया, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्म दैवताः अमाययानुवृत्तया यैस्तुष्य दात्मात्मदो हरिः। 22वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा गया कि शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने। इसका अर्थ क्या ये हुआ कि वो भगवान को ना माने और गुरुदेव को ही भगवान मान ले, और भगवान के अर्चा विग्रह, उनकी मूर्तियां, उनकी जो चित्रपट हैं, उनको हटा दिया जाए? अगर कोई गुरुदेव ये कहता है कि हाँ, श्री कृष्ण के विग्रह को, श्री राम जी के विग्रह को अपने घर के मंदिर में नहीं रखना है, अरे ये तो भगवान की माइक देह है, अगर कोई ऐसे कह दे तो समझ लीजिए वो बहुत बहुत बड़ा कपटी है, क्योंकि उन्होंने फिर शास्त्रों को ना जाना ना समझा। तो वो ऐसा अगर कहते हैं तो भाई साधु सावधान, तो फिर क्या किया जाए? यहाँ तो कहा है गुरुदेव को अपना इष्ट देव मानिए। तो इसका अर्थ ये है कि जो गुरुदेव हमें भागवत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, जो गुरुदेव हमें भगवान के पास जाने की क्रियात्मक शिक्षा भी दे रहे हैं, कैसे अर्चन करना है, कैसे मंत्र जप करना है, कैसे जीना है, कैसे भजन को आगे बढ़ाना है, तो फिर वो तो सच में अपनी परम प्रियतम आत्मा हो ही जाते हैं ना, क्योंकि वही तो हमें भवसागर से पार ले जाते हैं, क्योंकि वही तो हमें वो साधन बताते हैं जिसे अपनाकर हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। वरना एक अणु जीव भगवान को प्राप्त कर ले बिना गुरु कृपा के, ये हो नहीं सकता, ये कभी हुआ भी नहीं है, ना हो सकता है। क्योंकि जब भगवान स्वयं आते हैं श्री राम जी के रूप में, तो श्री वशिष्ठ जी को उन्होंने श्री गुरुदेव के रूप में अंगीकार किया, महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने श्री ईश्वरपुरी जी को श्री गुरुदेव के रूप में अंगीकार किया, श्री कृष्ण के रूप में आए तो भागुरी ऋषि जी को गुरुदेव जी के रूप में उन्होंने अंगीकार किया। भगवान अपनी आचरण से ये दिखाते हैं कि बिना गुरुदेव के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं तो स्वयं भगवान हैं वो, उनको क्या आवश्यक है। तथापि जीवों के लिए वो आचरण ही ऐसा करते हैं। अगर कहा जाए कि क्या स्वयं भगवान दीक्षा नहीं देते, तो उत्तर है नहीं, स्वयं भगवान दीक्षा नहीं देते हैं, स्वयं भगवान अपने प्रिय परिकरों से दीक्षा दिलाते हैं, है ना। मंत्र देने का कार्य स्वयं भगवान नहीं करते हैं, इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने कभी किसी को कोई मंत्र नहीं दिया, दीक्षा नहीं दी, लेकिन उनके जितने गोस्वामी थे उनसे उन्होंने दीक्षा दिलाई, और जो उनके परिकर थे उनसे उन्होंने मंत्र दिलाया। तो स्वयं भगवान या स्वयं भगवती ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो जब भगवान का कोई प्रिय भक्त हमारे जीवन में आता है और भगवान तक पहुंचने की राह बताता है, तो वो हमारा परम प्रियतम हो ही जाता है, और उसके साथ जो हमारा व्यवहार होगा, यानी ऐसे श्री गुरुदेव के साथ, वो इष्ट देव के समान ही होगा। यानी श्री कृष्ण के प्रति मेरा जो व्यवहार होगा वैसा ही श्री गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। और फिर यहां बताया गया, उनके निष्कपट भाव से सेवा करें। अमायानुवृत्तया, अमायया, बिना कपट के। होता यह है कि हम सोचते हैं कि सेवा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसे दोष होते ही हैं कि कपट आ ही जाता है। तो अगर कहीं हृदय में कपट है तो इस कपट को सर्वज्ञ गुरुदेव जान लेते हैं। तो क्या होता है, हमें हमारे भजन का उतना फल मिल नहीं पाता है जितना मिलना चाहिए, यानी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए गुरु सेवा तो निष्कपट भाव से ही होगी, और फिर उनके पास रहकर या उनसे सुनकर, क्योंकि अगर हमारे गुरुदेव पुरुष शरीर में है और हम स्त्री शरीर में है तो उनके पास तो रहा नहीं जा सकता, लेकिन वो जहां भी भगवत कथा कहते हैं वहां जाया जा सकता है, और उनसे मिल करके अपने प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो फिर उनके मुख से भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तब कहीं हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या होना चाहिए, यानी हम कैसे भगवान को सुखी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति को रखना होगा, अनासक्त होना होगा। फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना होगा, हमें ये सीखना होगा। फिर समस्त प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और बहुत ही ज्यादा नम्रता का भाव हमें सीखना होगा। अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, स्वाध्याय, सरलता, सहन शक्ति, गर्मी सर्दी सुख दुख इन सबको सहना सीखना होगा। और ये भाव नहीं रखना होगा कि ये मेरा घर है, नहीं, भाव ये रखना होगा कि ये सब भगवान ने मुझे दिया है, ये सब भगवान का है। साथ में जो शास्त्र, जैसे श्रीमद् भागवत जी, भगवद गीता जी भगवान की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, मार्ग बताते हैं, उनमें श्रद्धा करनी होगी, परंतु अन्य किसी भी शास्त्र की निंदा नहीं की जा सकती है, है ना। तो इस तरह से भगवान के चरणों में अपने आप को अगर हम समर्पित करना चाहते हैं तो वो बिना महत कृपा के संभव नहीं है। महत कृपा जब हो जाएगी तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि देखिए, जब हम गुरुदेव का आश्रय लेते हैं तो फिर हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर ही लेते हैं गुरु कृपा से, इसमें तब मुश्किल नहीं होती है। इसीलिए साधु सावधान, गुरुदेव का आश्रय भी लेना है और गुरुदेव की सेवा भी करनी है इस तरह से, ताकि वो भी संतुष्ट रहें और हमारी भक्ति आगे बढ़ती रहे। इसीलिए कहा गया है, पानी पीजिए छानकर, गुरु कीजिए जानकर। तो बहुत ही सुंदर रही आज की चर्चा, और इसी के साथ आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में 7 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अब तक की खास खबरें। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर जारी अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया। विदेश मंत्रालय का बयान, जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद और समर्थन देता रहेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला पदक मिला। बिहार के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। और विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत की अनाहत सिंह का मुकाबला मिस्र की बार्ब सामेह से होगा। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेनबो स्टेशन. आज है 25 जुलाई एंड द टाइम इज फ्लाइंग इन द एयर. स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 7:06 और प्रोग्राम शुरू हो गया है गुड मॉर्निंग दिल्ली विद योर आरजे खुशी. 25 जुलाई है आज की तारीख और आज के इतिहास के पन्ने खुलने वाले हैं. इस तारीख के सफर पर चलेंगे इस पूरे एक घंटे, वो भी साथ साथ. सो स्टे ट्यून्ड.

द सॉन्ग वॉज फ्रॉम द मूवी हैप्पी न्यू ईयर। 25 जुलाई यानी आज के दिन के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अगर बात करूँ तो सन 1813 में कोलकाता में हुगली नदी पर देश की पहली नौका दौड़ यानी कि बोट रेस हुई थी। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी ने देश के राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को शपथ ली थी। इसके बाद भारत के ज्यादातर राष्ट्रपतियों ने, इनफैक्ट हमारी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी इसी तारीख को यानी कि 25 जुलाई को ही शपथ ली है। साथ ही 2007 में प्रतिभा पाटिल ने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और इसी के साथ वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। साथ ही 1978 में भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी कंचन का जन्म कोलकाता में हुआ था। कितना अच्छा लगता है ना कि जब हमें पता चलता है कि आज का दिन कितना सारा, कितना लंबा सफर तय करता हुआ आ रहा है। आई एम श्योर ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आज की सारी ऐतिहासिक घटनाएं आपको याद रखनी चाहिए ताकि हमें पता चले भाई आज के दिन हुआ क्या था। सुबह सुबह सुन लो और फिर पूरे दिन किसी ना किसी को बताओ, उनकी भी नॉलेज बढ़ाओ। This song is from the movie Chennai Express, only on Rainbow Station 102.6.

टाइम बस 2:17 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली, आपके आरजे खुशी के साथ। इस वक्त दिल्ली का तापमान है 29 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 80% पर बनी हुई है और हवा भी थोड़ी सी धीमी गति पर चल रही है फिलहाल तो। लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूं तो बहुत ही घमासान बारिश बिजली के साथ, सैटरडे भी है, संडे भी है, मंडे भी है, तो फिर इन तीनों दिन तो बहुत तेज बारिश है। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, थोड़ी बहुत बारिश से प्रोटेक्शन के लिए अपने पास अम्ब्रेला रखें, रेनकोट रखें, ताकि के आपका समय भी बचे। साथ ही ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ड्रिजलिंग हो सकती है, लेकिन फिर से अगला वीकेंड जब शुरू हो रहा है सैटरडे, तो फिर घमासान बारिश।

0: के आसार है। पूरे हफ्ते की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो अपना ध्यान रखे, लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से ब्रेक के बाद।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्रेया घोषाल की फॉरएवर वर्सेटाइल बढ़िया सी आवाज में ये गाना चल रहा था रेनबो स्टेशन 102.6 पे फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। आज है 25 जुलाई और आज के दिन जिन महान हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया उनमें है बी आर इशारा जी जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रहे, मनमोहन सूरी जो कि भारतीय यांत्रिक इंजीनियर रहे, गोदावरीश मिश्र जो कि उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे, और थोड़ी ही देर में मैं आपको लेकर चलूंगी कॉमनवेल्थ गेम्स की अपडेट के साथ। उससे पहले ये ब्यूटीफुल ट्रैक अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फ्रॉम द मूवी लक्ष्य।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और अब सुनते हैं ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की अपडेट्स ओनली ऑन रेनबो स्टेशन 102.6।
2: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
3: स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में इन दिनों एक अलग गर्मी है, मुकाबलों की, उम्मीदों की और उन सपनों की जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर आकर सांस ले रहे हैं। एक वक्त था जब हिंदुस्तान की पहचान किसी और के शासन के साए में डूब गई थी, लेकिन उस दौर ने हमें एक चीज जरूर सिखाई, अपने हक के लिए खड़ा होना, अपने हिस्से की जगह मांगना और उसे अपने दम पर हासिल करना।
4: आज वही भारत उसी दुनिया के सामने अपने खिलाड़ियों के दम पर खड़ा है, बराबरी से आंखों में आंखें डालकर। और जब कोई भारतीय खिलाड़ी यहाँ पोडियम पर चढ़ता है तो सिर्फ एक पदक नहीं जीतता, उस छोटे से गांव, उस कस्बे, उस घर तक भी एक भरोसा पहुँचाता है, जहाँ बैठा कोई आम इंसान शायद पहली बार सोचता है हम भी किसी से कम नहीं।
3: और इस बार शायद इस भरोसे को नए चेहरे मिले हैं। As you know, popular sports like badminton, hockey, cricket, table tennis and wrestling are not a part of Commonwealth Games of the 22nd Commonwealth Games in Glasgow. But the absence of these sports have been a blessing in disguise for some of the lesser known sports. Para powerlifting, artistic gymnastics, swimming and lawn bowls are now making headlines and our athletes representing India in these sports are showing what they are capable of.
4: ये वो खेल और खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे जगह बनानी पड़ती थी। इस बार मंच उनके सामने है, अब देखना ये है कि कौन इस मौके को दोनों हाथों से थामकर सुर्खियां अपने नाम कर लेता है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दूसरे दिन कौन कौन से खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोर ली हैं।
3: सबसे पहले बात पैरा पावर लिफ्टिंग की। पैरा पावर लिफ्टिंग में खिलाड़ी सिर्फ वजन नहीं उठाते, वो उन सीमाओं को उठाकर एक तरफ रख देते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर उनके सामने खड़ा कर देती है। भारत में पैरा खेलों ने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है और शायद इस मंच पर एक और जीत किसी को ये यकीन दिला दे कि उसकी ताकत उसकी कमजोरी से कहीं बड़ी है। इसका उदाहरण स्थापित किया भारत के झंडू कुमार ने। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग में 72 किलोग्राम के भार वर्ग वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके चलते 130.9 अंक हासिल किए। इसके साथ ही झंडू कुमार को कांस्य पदक हाथ लगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का खाता खुला।
5: ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया झंडू कुमार।
3: ग्लासगो जाने से पहले ही आकाशवाणी से हुई खास बातचीत में झंडू कुमार ने बताया था कि उनके हौसले बुलंद हैं और वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार।
6: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे। एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए, इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे।
7: इतना वजन उठाने के टारगेट रखा, वजन उठाने
6: से देखिए अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जब पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210-220 कर रहे हैं, मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है वहाँ पे।
3: और झंडू कुमार ने कर दिखाया भी। पैरा पावर लिफ्टर से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हम सभी को थी। नई दिल्ली में हुई सेंड ऑफ सेरेमनी के दौरान ही कोच राजेंद्र सिंह रेहलू ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी।
8: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
3: ये पदक पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी में आया। इसी कैटेगरी में भारत के सुधीर ने भी हिस्सा लिया और 91 किलो के सुधीर ने 183 किलो का भार उठाया और 114.1 अंक हासिल किए। सुधीर को पदक भले ही ना मिला हो, लेकिन जब जब एक पैरा एथलीट शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच पर पहुंच भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो समाज में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
4: A quintessential example of this was given on Friday by Ashok in men's para powerlifting. Ashok registered his personal best by lifting an impressive 200 kgs and earning 143.8 points. Alas, he finished fourth and missed out on a podium finish.
3: In the same event, Paramjit Kumar lifted 176 kgs and finished 7th.
4: वहीं महिलाओं में उम्मीदें जसप्रीत कौर और सुमन देवी से थी।
9: मैं जसप्रीत हूँ, पैरा पावर लिफ्टर। अभी मैंने रिसेंट हमारा एशियन चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ मेरे ब्रॉन्ज मेडल लिया और उसके बाद अभी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ी है, ऐसे मुझे उम्मीद है कि मैं मेडल लेके आऊँ।
3: हाउएवर इट वॉज अगेन अ स्टोरी ऑफ सो नियर येट सो फार। जसप्रीत कौर ने 100 किलो वजन उठाया लेकिन उसके बावजूद वो चौथे स्थान पर रही और पदक से चूक गई। उनके बाद सुमन देवी ने 103 किलोग्राम भार उठाने के दो प्रयास किए और मेडल पर निशाना लगाना चाहा, लेकिन उनके दोनों ही प्रयास असफल रहे और उन्हें छठे पायदान से संतोष करना पड़ा।
4: ऐसी ही कहानी रही कस्तूरी राजमनी की भी, जिन्हें 3 असफल प्रयासों के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाना पड़ा।
3: अब बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की, जहां पर हर एक पंच भारतीय मुक्केबाजों के हौसले, उनकी तैयारी और उनके जोश को बयां करता है। भारत के जादूमणि सिंह ने इसी का परिचय देते हुए पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेजबान टीम के एरन कलन को सर्वसम्मति से मात दी, यानी पांचों के पांचों जज का फैसला जादूमणि सिंह के हक में रहा। इसके साथ ही जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश पा लिया है। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि क्या इस बार इतिहास रचेंगे?
4: अब बात करते हैं लॉन बॉल्स की, जहां पिछले संस्करण में भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीता था। इस बार मानो हमारे एथलीट्स ठान कर आए हैं कि लॉन बॉल्स की गूंज भारत की हर गली में सुनाई देनी चाहिए। पिछली बार की सफलता को देखकर लॉन बॉल्स के खेल में शुरुआत करने वाले पुतुल सोनेवाल ने शुरुआत ही इस प्रकार की है।
10: नमस्कार, मैं पुतुल सोनेवाल असम से हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है।
3: ऑन डे 1 पुतुल सोनेवाल डिफीटेड आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर ऑफ कनाडा। ही कंटिन्यूड द विनिंग वेज ऑन डे 2 एज वेल। इन फ्रंट ऑफ हिम वाज द चैलेंज ऑफ सेलिक अलेक्जेंडर ऑफ फॉकलैंड आइलैंड्स। इन द फर्स्ट सेट सोनेवाल वाज ट्रेलिंग बट ही केम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू टाई दैट सेट एंड देन रजिस्टर्ड एन एम्फैटिक विक्ट्री इन द सेकंड सेट।
4: जैसा आप जानते हैं कि 2022 में भारत की महिलाएं लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक लेकर आई थी। उस टीम का हिस्सा रही रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने विमेंस पेयर में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। पहले दिन माल्टा को टाई ब्रेकर में हराने के बाद दूसरे दिन इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को 2 सीधे सेटों में मात दी। इनका अगला मुकाबला टोंगा से आने वाली मिलिका नेथेन और पेरिस बेकर की जोड़ी से है।
3: पिंकी ने तो ग्लासगो जाने से पहले ही बता दिया था कि भले ही इस बार ये प्रतियोगिता पिछली बार की तरह नेचुरल ग्रास के बजाय कारपेट वाली घास पर हो रही हो, लेकिन उनका इरादा पोडियम फिनिश से कम का नहीं है।
11: हमने जो हिस्ट्री बनाई थी, क्रिएट की थी, हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरह किसी भी मेडल पे पोडियम के लिए जरूर आएंगे कि हम अपना देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी लोगों ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखी है, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर पाए।
4: मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा स्विमिंग के फाइनल में क्वालिफाई होकर पहुंचे रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक टॉप 3 की रेस से कुछ पीछे रह गए। उन्होंने मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में चौथे स्थान पर और वहीं उसी प्रतिस्पर्धा में अली इमाम ने 7वें स्थान पर खत्म किया और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी पदक की रेस से बाहर हो गए।
3: दूसरी तरफ पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचे, लेकिन अपनी सेमीफाइनल की रेस में उन्होंने 25.29 सेकंड का समय लिया, जिसके चलते वो 8 स्विमर्स में 7वें पायदान पर रहे। इसी प्रतिस्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के पीटर कुजिया ने 24.29 सेकंड का समय लेकर नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया। जिमनास्टिक्स में तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह पुरुषों के टीम फाइनल और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन राउंड में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने उतरे। प्रदर्शन सराहनीय रहा लेकिन मेडल तक का सफर तय नहीं कर पाए।
4: आज तीसरे दिन यानी शनिवार 25 जुलाई को मंच दोबारा सजेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।
3: 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम। 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल यानी तीन खिलाड़ी एक बास्केट और व्हीलचेयर पर दौड़ता पूरा मुकाबला। यहाँ रफ्तार भी है, टक्कर भी है और हर शॉट के साथ जीत की उम्मीद भी। भारतीय टीम में शामिल हैं मीनाक्षी हरिचंद्र जाधव।
12: कॉमनवेल्थ गेम ये बहुत बड़ी गेम है। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई थी मेरा जो भी हेल्थ इश्यू था वो 99% रिड्यूस हुआ है। मेरे भाई को लगता है कि गेम में क्या मिलता है तुमको, उससे अच्छा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेगी। बट कहीं पे भी जाती हूँ कुछ जीत के आ जाती हूँ तो वो थोड़ा गर्व से बोलता है कि ये मेरे बहन है।
3: लक्ष्मी रायप्पा रायनवर।
13: मैं इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर। मेरा फैमिली बहुत खुश हो, फैमिली बहुत सपोर्ट किया था।
3: रीना रमेश चंद्र गुप्ता।
14: मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलना शुरू किया 2019 में। इसकी जानकारी मुझे मेरे एक एक्स कलीग से पता चली थी। इट वाज लाइक कि हम एक टीम स्टार्ट कर रहे हैं पुणे में, क्या आप ज्वाइन करना पसंद करोगे। आई नेवर इमेजिन थी जो मैंने एज अ फन ज्वाइन किया था इट विल टेक मी टू द कॉमनवेल्थ गेम्स।
3: इरेंगबाम रितु चानू।
15: मैं इरेंगबाम रितु चानू मैं मणिपुर से हूँ।
3: हर खिलाड़ी अपने साथ एक कहानी लेकर आया है, दर्द की, संघर्ष की और उन सीमाओं को पीछे छोड़ने की जिन्हें दुनिया ने कभी उसकी किस्मत मान लिया था।
4: इंडिया विल प्ले देयर फर्स्ट ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट वेल्स एट द SEC सेंटर।
3: बॉक्सिंग में पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उतरेंगे सचिन। राउंड ऑफ 32 में उनके सामने होने वाले हैं कनाडा के कियोमा अल अहमदिया। रिंग में हर पंच के साथ सिर्फ ताकत नहीं हिम्मत भी परखी जाएगी क्योंकि यहाँ एक बार कहानी बदल सकता है और सचिन इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए डटकर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां की है।
16: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। सभी के गोल लिए आने हैं।
3: एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी लॉन बॉल्स पर। एक ऐसा खेल जहां शोर कम है, रफ्तार कम है, लेकिन हर गेंद के साथ जीत की उम्मीद धीरे धीरे अपने निशाने की ओर बढ़ती है। पहले दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पुतुल सोनोवाल मलेशिया के इज्जत जुल केपले से भिड़ेंगे और जैसा हमने बताया वुमेन पेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी का सामना टोंगा से आने वाली टीम से होगा।
4: स्विमिंग पूल में भारत के लिए उतरने वाले हैं आर्यन नेहरा और धक्षण शशि कुमार। टॉल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में ये दोनों तैराक पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतिस्पर्धा में शिरकत करते नजर आएंगे। धक्षण हीट 3 में और आर्यन हीट 4 में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश पाने की कोशिश होगी।
3: फाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा। उसके बाद नजरें होंगी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में महिलाओं पर। हवा में उड़ते शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा खेल जिसे देखकर आंखें ठहर जाएं।
4: आज इस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगी प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, प्रोशिता समानता और इशिता रिवाले।

चलते चलते रुख करते हैं मेडल्स टैली का। आखिरी समाचार मिलने तक भारत एकमात्र पदक के साथ 9वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में इस वक्त शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिनके पास 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 10 पदक हो चुके हैं। दूसरे पायदान पर नाइजीरिया है, जिनके

0: England has one more. They have 5 medals in total. However, they are placed at number 4 because they have one less gold medal than Scotland. Apart from these 4 nations, South Africa is the only one to also win a gold medal. Will India be able to climb up the tally and get off the mark in the gold medal and the silver medal column? We will know soon.
1: हर दिन कोशिश जारी है भारत के एथलीट्स 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में जज्बे और जुनून की कहानी लिख रहे हैं। हो सकता है स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में भारत को अपना नया सितारा मिल जाए।
0: आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
2: Glasgow. The Commonwealth Games.

0: यार रहमान की आवाज में दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती। और आज है 25 जुलाई, और 25 जुलाई का सफर हम तय कर रहे हैं। आज के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो मनाया जाता है राष्ट्रीय मैरी गो राउंड दिवस, राष्ट्रीय झूला दिवस। अगर आपको ये झूला याद हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कार्निवल्स होते हैं, संगीत से जुड़े मनोरंजन जो झूले होते हैं, उनमें ये झूला बड़ा सा कॉमन सा होता है कि एक ऐसे सर्कल होता है, उसमें थोड़े बहुत घोड़े होते हैं, खरगोश बने होते हैं, बग्घी बनी होती है, उनके ऊपर बच्चे कभी कभी बड़े भी बैठ जाते हैं बच्चों के साथ, और वैसे गोल गोल गोल घूमता रहता है धीरे धीरे, ताकि ये बच्चों को डर ना लगे। बच्चे बोलते रहते हैं कि थोड़ा तेज़ कर लो, थोड़ा तेज़ कर लो, लेकिन वो तेज़ नहीं करते क्योंकि वो बच्चों वाला झूला होता है, लेकिन बड़े भी बैठ जाते हैं। और मुझे बहुत ही मज़ा आता था जब मैं छोटे में इस झूले पर बैठती थी। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो राष्ट्रीय झूला दिवस। ये झूले ही तो हैं जो बच्चों को मनोरंजन करते ही रहते हैं, और वो वेट करते हैं कि कब दशहरा आएगा, कब कौन सा फेस्टिवल आएगा, जब हम ये झूले झूलने जाएंगे ग्राउंड में। लेती हूँ छोटे से ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिस्नर से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आशुतोष आ गया स्टूडियो में गुड मॉर्निंग दिल्ली को कंटिन्यू करने के लिए। मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10 दिल के तराने गाने नए पुराने प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड टू रेनबो स्टेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। अगले सप्ताह संसद में बिल पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की समस्या के खिलाफ प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद कहा। कहा कि आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और बातचीत करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त। पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्रवाई में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग ने प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत MV अमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले LPG टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता, प्रतियोगिता में देश का यह पहला पदक। और FIH युवा हॉकी

पांच एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी के बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान ने को 10-1 से मात दी। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: बिल्कुल आपकी वाणी आकाशवाणी और आपके साथ हमेशा रहते हैं हम। और फिलहाल 8:04 और 45 सेकंड हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर आप कंटिन्यू रहता है। आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है, खुशबू के बाद हम आ चुके हैं दोबारा से। और फिलहाल बस आपके लिए बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर रहेंगी, क्या कुछ हो रहा है आपकी सिटी में और वो भी बताएंगे आपके साथ हम। बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर साझा करेंगे और गीतों का बहुत एक अच्छा सिलसिला आपके साथ लगातार बना रहेगा यहाँ पर। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। फिलहाल आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है, स्टे ट्यून्ड और ये अमेजिंग ट्रैक के साथ शुरू कर रहे हैं इस घंटे को।

एग्जैक्टली। और जब आपसे मिलते हैं तो जादू खुद ब खुद छाने लग जाता है, समा अपने आप ही बहुत ही खूबसूरत होना शुरू हो जाता है। और फिलहाल आज का जो मौसम है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही औसम सा बना हुआ है। फिलहाल आपको बताते चलें कि सूर्य उदय बिल्कुल हो चुका है 5:40 पर आज, और सूर्यास्त होगा 7:17 पर। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रहने की संभावना है 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और हल्की हल्की कभी कभी बारिश हो सकती है, उसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। और सावन भी शुरू होने वाला है और बिल्कुल उसकी भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और अगर आप भी कांवड़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो बिल्कुल आपको भी थोड़ा सा अपडेटेड रहना होगा अपनी कांवड़ यात्रा के लिए। और उसके लिए जो श्रद्धालु हैं ना, उनकी सुरक्षा और तेज़ रफ्तार यातायात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर कांवड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पैदल और साइकिल या फिर अन्य धीमी गति से चलने वाले कांवड़ियों को इस एक्सप्रेस

का उपयोग नहीं कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड एक्सप्रेसवे कहा जाता है इसको, जहां वाहनों की रफ्तार काफ़ी अधिक रहती है, और ऐसे में पैदल यात्रियों या फिर कांवड़ियों को बिल्कुल दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है अगर वो इस हाईवे पर सफ़र करते हैं, और इसी वजह से उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ये जो डिसीजन है वो लिया गया है। और साथ ही साथ वैकल्पिक जो मार्ग हैं उसके लिए भी उनके लिए निर्धारित किए गए हैं प्रशासन द्वारा, और जहाँ आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, और श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि वे केवल निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें और पुलिस और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बिल्कुल सख्ती से पालन करें, और एक्सप्रेसवे पर गुजरने वाले वाहन चालकों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है, और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी साथ ही साथ अपील की गई है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी यात्री सुरक्षित रहें और बिल्कुल ये यात्रा सुगम बनी रहे। तो बिल्कुल अगर आप भी कांवड़ यात्रा पर हैं तो इस मार्ग को सफर बिल्कुल अच्छे से बनाइए और अपनी योजना अच्छे से बनाइए, और सारी ट्रैफिक एडवाइजरी का बिल्कुल जानकारी लेते चले जाइए, और अपनी सावधानी बरतिए, और अपना आपका सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरे, और आप बिल्कुल इस यात्रा को सफल बनाएं, यही हमारी कामना है। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

शनिवार की सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और बिल्कुल साउथ दिल्ली के ट्रैफिक जाम से अक्सर आपको दो चार होना पड़ता होगा। और बिल्कुल इसके लिए आपके लिए एक राहत की खबर आई है, क्योंकि अब जो

अथॉरिटीज़ है ना, वो एक काम कर रही हैं अरुणा आसफ अली मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, और इस जो परियोजना है ना, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी को मंजूरी दे दी गई है। और ये प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर वसंत कुंज से आउटर रिंग रोड के बीच ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है, और इस मार्ग पर रोज़ाना हज़ारों वाहन गुजरते हैं और पीक आवर्स में लंबा जाम अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कॉरिडोर बनने से सफ़र तेज़, आसान और अधिक सुगम होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और बिल्कुल इस स्टडी में ये भी देखा जाएगा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का सबसे उपयुक्त डिज़ाइन क्या होगा, और इससे जो यातायात है उसमें कितना असर पड़ेगा, और निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है, और अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। और दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल कई प्रमुख मार्गों पर काम किए जा रहे हैं, ऐसे बुनियादी ढांचों को की संभावना भी तलाश की जा रही है जहाँ पर काम किया जा सके और इस प्रेशर को, जो ट्रैफिक प्रेशर है ना, उसको कम किया जा सके। और उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि यात्रा का समय कम हो और ईंधन की बचत हो और लोगों को जाम से राहत मिले। तो उम्मीद कीजिए कि आने वाले समय में दक्षिण दिल्ली की सड़कों पर सफ़र आसान होगा और बिल्कुल आपके लिए बहुत ही एक सुलभ तरीके से एक बहुत ही अच्छी रोड्स तैयार होंगी और बिल्कुल ईजिली आप बिना किसी रुकावट के आसानी से सफ़र कर सकेंगे। बिल्कुल कम जाम मिलेगा तो सफ़र अपने आप ही सुहाना हो जाता है ना, आप एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे सुन रहे हैं इस वक्त अपनी कार में, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक यहाँ निकल रहा है खास आपके लिए।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एग्जैक्टली और हम जब आपके साथ होते हैं ना तो बिल्कुल जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमें प्यार अपने आप ही हो जाता है। और बिल्कुल आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत की सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, विदुषी, लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर शोभना नारायण जी। और हाल ही में उनकी नई पुस्तक स्पीकिंग स्कल्पचर्स प्रकाशित हुई है जो भारतीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत पर एक महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ है। तो आइए सीधा उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और आपने आमंत्रित किया, और नमस्कार सभी श्रोतागणों को और आपको भी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको इस महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशन के लिए आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं मैम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और बिल्कुल इस पुस्तक के पीछे वर्षों का शोध है आपका और साधना है, और सबसे पहले आपके मन में ये विचार कैसे आया कि प्राचीन मूर्तियों और कथक के करणों के बीच जो एक अद्भुत संबंध है उसको खोजा जाए, तो ये विचार आपको कैसे आया?
1: देखिए, जब मैं बहुत ही यंग थी, मैं 18 साल की थी, तो हमेशा था उस वक्त की कथक जो शब्द है वो एक बहुत ही संस्कृत वाला शब्द है
0: जी।
1: और हमेशा जब हम देखते थे मंदिरों को, तो वो मंदिर सभी दक्षिण में ज्यादा थे और नॉर्थ में नहीं थे, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में खाजुराहो था तो, लेकिन ये सब 1000 वर्ष पुराने, और इनमें स्कल्पचर्स बड़े अच्छी हैं, मूर्तियां बहुत अच्छी थी, डांस के मूर्तियां हैं। लेकिन फिर मेरे मन में आता था कि कथक महाभारत में उसका जिक्र है, कथक का आदि पर्व में कथकों का जिक्र है, फिर एक अभिलेख है मौर्य जमाने का, तो फिर वो सब कथक कहाँ थे, और जब गुप्त पीरियड के जो स्कल्पचर थे, शिल्पकार थे, वो कहाँ गए, गुप्त काल के, मौर्य काल के, पाल काल के, तो ये सब कहाँ गए। तो जब हमने फिर ढूंढना शुरू किया तो वो खजाना निकला, और वो खजाना ऐसा है कि वो एकदम मत जो है, जो आज की जो पॉपुलर मत है उसके एकदम को उलट देती है। जो पटना म्यूजियम में आपको मौर्य काल के स्कल्पचर्स मिलेंगे, और वो उसमें आज भी आपको जो जितने भी पोस्चर्स मिलेंगे डांसर्स के, वो कथक से मिलता जुलता मिलेगा। गुप्त काल के जितने स्कल्पचर्स हैं, और उससे पहले शुंग काल के, जब जैसे भरहुत वगैरह में 2nd सेंचुरी में
0: जी।
1: और उसके बाद गुप्त काल में 5वीं शताब्दी के, तो जितने भी स्कल्पचर्स मूर्तियां मिलती हैं डांसरों की, और जो वो पहनावा था वो भी सब कथक का ही है। सभी कथक, आप लहंगा ले लें या

0: टाइट पजामा अनारकली ले ले, कुर्ता ले ले, और माँ आदमियों के लिए धोती ले ले या बंडी ले ले, तो वो सब आपको मिलता है। तो हमारी जो है आज की जो मत है, पॉपुलर मत है, वो उससे बिल्कुल विपरीत है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो इतना इंटरेस्टिंग रहा, तो उस पर ज्यादा जब जितना और शोध किया तो हर काल में आपको बहुत सारे मूर्तियां मिली, लेकिन सब मूर्तियां म्यूजियम्स में हैं। और हमारे जितने भी श्रोतागण जो सुन रहे हैं, आप में से मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग कितने लोग म्यूजियम्स जाते हैं, मंदिर जाएंगे टूरिज्म के लिए, लेकिन कितने लोग म्यूजियम जाएंगे? क्योंकि म्यूजियम्स में जो कहानी कह रही है, जो पत्थर कह रही है, वो कुछ और कहानी कह रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भारत की जो विरासत है बहुत ही विशाल है, और इस पुस्तक में आपने नाट्य शास्त्र के करणों को आज के कथक से जोड़ने का बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आपके अनुसार इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है, और जिसे हर कलाकार और पाठक तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है?
0: मैं हर पाठक को मैं कहूँगी और हर श्रोतागण को कहूँगी कि सिर्फ मंदिर जो है हमारे हजार वर्ष पुरानी है, लेकिन म्यूजियम देखिए, क्योंकि पत्थर झूठ नहीं बोलता है। आप और हम शायद हमारे वक्तव्य कल कुछ और हो, आज कुछ और हो, तो हम उसके हिसाब से लेखने भी कर सकते हैं, लेकिन पत्थर तो एक बार वो गढ़ जाता है
1: जी,
0: उसको तो आप मिटा नहीं सकते।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो आप पत्थरों पे जाइए कि पत्थर क्या कह रही है, और वहां से आपको असली जो है आपका इतिहास मिलेगा, असली चीजें मिलेंगी, और फिर असली मत भी जो है एक उसमें आपको एक धागा मिलेगा, और आप उसको धागे को अगर जोड़ेंगे तो एक कहानी मिलेगी, एक फिलॉसफी मिलेगा, एक मत मिलेगा।
1: एग्जैक्टली। और आपकी जो जीवन यात्रा को हम देखते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। और एक और आप भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा से जुड़ी रही, और साथ ही साथ दूसरी और आप कथक के प्रति पूर्ण समर्पित रही हैं। तो आपने अब तक के अपने सफर में अगर आप पीछे मुड़कर देखती हैं, तो आज जो आप शोभना नारायण बनी हैं, वो उसको किस तरीके से देखती हैं, कैसे वो पड़ाव आए आपके जीवन में?
0: मैं अपने दिल से काम करती हूँ। और मेरे माँ बाप जो हैं, वैसे वो डांसर्स और आर्टिस्ट नहीं थे, वो तो फ्रीडम फाइटर फैमिली के थे दोनों ही, और जमींदार वगैरह बिहार के, तो लेकिन उन्होंने ही, उनका हर हमारे दोनों ही तरफ से, माँ के तरफ से, पिताजी के तरफ से, कला पर बहुत जोर दिया जाता था, साहित्य पर बहुत जोर दिया जाता था, और राष्ट्र भावना पे बहुत जोर दिया जाता था। तो जब मैं बहुत ढाई तीन वर्ष की उम्र में मुझे नृत्य के क्षेत्र में डाला, मेरी एनर्जी को, ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए, तो वो मेरे लिए आत्मा बन गई। और फिर साथ ही साथ मेरा अपना स्व था कि मुझे पढ़ाई में भी बहुत दिलचस्पी थी, तो इसीलिए फिजिक्स भी किया, सब कुछ किया, और तो दोनों साथ ही साथ चले। मेरे पैर जो थे दो नाव में हमेशा बचपन से, चार साल की उम्र से, तो आज भी वैसे ही, और वही, और मैं खोजती रहती हूँ। तभी तो फिजिक्स में पीएचडी भी कर रहे थे। हर चीज में मैं पूछती हूँ क्यों, और माँ इनकरेज करती थी कि पूछो, सवाल पूछो, डिस्कशन करो,
1: क्योंकि दोनों ही फील्ड बहुत वाइड है, एक तरफ साइंस है, एक तरफ आर्ट्स है, और ये दोनों ही एक फुल फ्लेज्ड एक फील्ड है, तो उसमें दोनों को
0: देखिए, साइंस में आर्ट है और आर्ट में भी साइंस है भैया।
1: और इसी से जुड़ा
0: जीवन में देखे ना, इतनी खूबसूरत ये हमारी सृष्टि है, लेकिन उसके साइंस ही तो चला रही है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अभी तो बैलेंस है, लेकिन खूबसूरती जो है वो एस्थेटिक्स है, वो आर्ट है।
1: और इसी से जुड़ा एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आज अनेक युवा कथक सीख रहे हैं, और आपके भी बहुत सारे शागिर्द हैं जो आपसे सीख रहे हैं, आपके शिष्य हैं, और आपको आदर्श मानते हैं अपना, तो आज युवा कलाकारों से मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, कि क्या केवल मंच पर अच्छा प्रदर्शन ही पर्याप्त है, या फिर कला को, इतिहास को, शास्त्र का अध्ययन करना ही उतना महत्वपूर्ण है उसके लिए?
0: देखिए, दो प्रकार के बच्चे हैं, होते हैं, उनकी अपनी है, एक जो गहराई में जाना चाहते हैं, एक जो ऊपर बुलबुले की तरह वो रहना चाहते हैं, जो एक फुलझड़ी और फटाके बनना चाहते हैं, और एक मंदिर का दिया और लौ और वो अगरबत्ती हो, तो वो उनकी

0: ऊपर है, दोनों ही पॉसिबल है,
1: हाँ।
0: लेकिन आत्म शांति कहाँ मिलती है
1: जी?
0: वो अगरबत्ती और मंदिर के लौ में।
1: बिल्कुल,
0: आत्म शांति वहाँ है। फटाका और ये आकाशबाजी तो क्षणिक है
1: जी,
0: तो
1: जी
0: आपको डिसाइड करना, हर एक व्यक्ति को डिसाइड करना उसे क्षणिक चाहिए
1: जी।
0: या आंतरिक आनंद चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत गहरी बात आपने बोली आज। और ये जो कविता है, जो आपका जो किताब है आज, ये आज शाम को हम आपसे साक्षात्कार कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, आइए सभी लोग आइए। IIC में है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में है
1: जी।
0: एक छोटा सा फिल्म दिखाएंगे 6 मिनट का, फिर थोड़ा बुक लॉन्च होगी और 11 और सब डिस्कशन भी करेंगे। बहुत ही बुद्धिजीवी लोग इस पर बात करेंगे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और उसके बाद एक 11.5 मिनट का एक डांस आइटम है, मेरे शागिर्द लोग, 6 शागिर्द मेरे करेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए अपने कीमती वक्त में से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी श्रोताओं को, और मैं चाहूंगी कि आप लोग सब शाम को आइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश
0: बिल्कुल
1: आइए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू।
1: तो ये थी डॉक्टर शोभना नारायण जी, और बिल्कुल आज इनकी जो किताब है स्पीकिंग स्क्रैचर्स, तो वो आप बिल्कुल इनके साथ जाकर देख सकते हैं, और बिल्कुल IIC इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, लोधी रोड में। और बिल्कुल इन्होंने ना केवल कथक को अपनी साधना बनाया, उसको नई ऊँचाइयाँ दी हैं, बल्कि अपने शोध और लेखन के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया है हम सबको। और बिल्कुल जो आपकी किताब है, इसके लिए, सफलता के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हैं, और आशा करते हैं कि ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ सिद्ध होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल उन्हीं को डेडिकेटेड ये गीत हम प्ले कर रहे हैं आज के अपने इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टेली NCR में। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ।

0: क्या है बबल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और अब दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने एक अहम फैसला लिया है कि सड़क पर रखरखाव और मरम्मत कार्यों पर लगे सभी कर्मचारी और ठेका एजेंसियों के श्रमिकों के लिए विभागीय जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा और इस जैकेट पर विभाग या संबंधित एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। और ये पहल जो है वो स्पेशली इसलिए की गई है कि जब से सड़क पर काम करे कर्मचारियों की पहचान आसानी से हो सके और पारदर्शिता बढ़ सके और काम की बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके और इससे आम नागरिकों को भी आसानी से ये पहचान कर सकेंगे कि मौके पर जो कि ऑथेंटिक कर्मचारी हैं वो ही काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई गलत तरीके से किसी चीज़ को काम कर रहा है। और ऐसी जैकेट पहनने से ना केवल विभाग की पेशेवर कार्यशैली मजबूत होगी बल्कि कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और साथ ही साथ सड़क पर काम के दौरान उनकी दृश्यता बेहतर होने से सुरक्षा के लिहाज से भी ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से सड़क पर मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्य की गुणवत्ता पर बेहतर निगरानी होगी और नागरिकों का भरोसा भी मजबूत होगा। तो बिल्कुल अगली बार अगर आपको कोई स्पेशल ऐसी जैकेट पहना दिखे तो बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा क्योंकि ये अब नॉर्मल होने वाला है। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, स्टे ट्यून्ड क्योंकि एक और अमेजिंग ट्रैक यहाँ पर आपके लिए और आपके मैसेजेस भी हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं लिसनर्स के, उन सभी को हम शामिल करेंगे। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

एग्जैक्टली बस अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, अब खुशबू आएंगी आपके लिए दिल की तरह ने गाने नए पुराने 9:02 से, और उसके बाद 10:02 से आप सुन पाएंगे ज्योति अहलावत के साथ मैचलेस म्यूजिक आवर, और बॉलीवुड ट्रेल सुनेंगे 11:02 से प्रियंका वर्मा के साथ आप। और फिलहाल बस अब मेरे चलने का वक्त हो चुका है, लेकिन जो हमारे तमाम लिसनर्स हैं उनके मैसेजेस हम ज़रूर शामिल कर लें। राजेश भल्ला इस वक्त मेरठ से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकोला से ही इस वक्त प्रमोद जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और डॉली इस वक्त दिल्ली से हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन तमाम श्रोताओं का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं लेकिन मैसेज नहीं कर पाए, लेकिन हमारे प्रोग्राम को पूरा पूरा एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल अब बस चलता हूं और इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। स्टे ट्यून, अपना वीकेंड ऐसे ही एंजॉय करते रहिए और लगातार हमारा साथ ऐसे ही निभाते चले जाइए, क्योंकि यहां पर एंटरटेनमेंट की डोज कभी नहीं थमती है और इन्फॉर्मेशन तो लगातार आपके लिए आती ही रहती है। तो फिलहाल इन्फोटेनमेंट का ये जो फ्लेवर है ना, इसको अपनी ज़िंदगी में घोलते चले जाइए, और अपनी हेल्थ का बहुत खास ख्याल रखना है, तो इसलिए अच्छी अच्छी जो चीज़ें वो खाते चले जाइए। मैंगो का ज़माना है तो मैंगो शेक पीते जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में 9 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। अगले सप्ताह संसद में बिल पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की समस्या के खिलाफ प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी परीक्षा प्रणाली में सुधार पर आज तीसरे दौर की वार्ता करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त। पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुट्टंकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज MV ओमफ्री पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजम्बिक ध्वज वाले LPG टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोणक, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम को 4:30 बजे शुरू होगा। चीन में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक। और FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी में बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से मात दी। ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: पर अब आकाशवाणी पर मेरी वाणी बंद हो जाएगी क्योंकि अब चलेगी गानों की वाणी, वो भी बैक टू बैक। यानी अब प्रोग्राम शुरू हो गया है दिल के तराने गाने नए पुराने आपकी आरजे खुशी के साथ, लेकिन आरजे खुशी की आवाज आपको कम सुनने को मिलेगी क्योंकि ये प्रोग्राम है बैक टू बैक गानों का। साथ ही 9:15, 9:30 और 10:15 यानी कि 9:15, 9:30 और 9:45 पर रेनबो की ओल्ड डायरी से आपके लिए लेकर आऊंगी मैं ओल्ड इज गोल्ड वाले सॉन्ग। तो बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

अब आप फिदा होने वाले हैं इस गाने पे, क्योंकि रेनबो की ओल्ड डायरी से आप सभी लिसनर्स के लिए फिल्म जाबा से गाना लेकर आई हूँ मनहर और कंचन की आवाज पे, सिर्फ रेनबो स्टेशन 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तुम्हारी सुल्लू मूवी से ये गाना चल रहा था रेनबो स्टेशन पर गुरु रंधावा की आवाज में। और अब क्यों की घड़ी की स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है समय 9:30। तो रेनबो की ओल्ड वाली डायरी से आपके लिए ये गाना लेकर आई हूँ फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

0: सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: करीब है।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: और 102.6 पर अब पुराने वाले गाने यानी कि ओल्ड वाली डायरी से मैं लेकर आई हूँ मुकेश दा की आवाज में ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी धर्म कर्म।

रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

दिस वॉज द लेटेस्ट ट्रैक फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2. और अब मेरे जाने का टाइम आ गया है. जाने से पहले मैं आपको रेनबो पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ. ज्योति आ गई है स्टूडियो में विद द प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आवर्स, जो है एक वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम जो आप सुनेंगे 10 से 11, 11 से 12 आपके साथ रहेंगी प्रियंका वर्मा बॉलीवुड ट्रेल्स में और किसी ना किसी को बनाएंगी बॉलीवुड का सरताज. ज्योति के साथ आप सुनेंगे प्ले इट कूल 12 से 1, 1 से 2 आपके साथ रहेंगी प्रियंका मेरा वाला सॉन्ग में, जहां आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आपके फेवरेट सॉन्ग आपके नाम के साथ. और आरजे खुशी यानी कि मेरे जाने का टाइम आ गया है. रेनबो पर प्रोग्राम्स का सिलसिला यूं ही कंटिन्यू रहेगा. जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जब आपको लगेगा ना कि अब कुछ नहीं हो सकता तभी चमत्कार होगा. इसी विचार के साथ आरजे खुशी को दीजिए इजाजत. खुश रहिए, खुश रखिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसे

नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर आप तक के मुख्य समाचार। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदे विधेयक को मंजूरी दी। अगले सप्ताह संसद में बिल पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की समस्या के खिलाफ प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी आज परीक्षा प्रणाली में सुधार

तीसरे दौर की वार्ता करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्य के जहाज MV ओम रफी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की मोज़ाम्बिक ध्वज वाले LPG टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में भारत का ये पहला पदक। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनहत का सामना मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। लाइट कैमरा एक्शन सिर्फ एक फ्रेज नहीं है बल्कि हार्ट बीट है बॉलीवुड की। जहाँ बनती हैं वो मूवीज जो कराती हैं आपको नटेन। जी हाँ, जो आपके इमोशंस के रोल कोस्टर राइड कराती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, इंस्पायर करती हैं और दिल के अंदर एक पेट्रियोटिक जज्बा भी जगाती हैं, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। So guys, let's dive into the vibrant world of Bollywood, जिसके लेटेस्ट अपडेट्स के साथ सर्व होंगे हैपनिंग गाने। इसलिए लॉगिन करें आप हमारा रेडियो ऐप या फिर चले आए रेडियो के क्लोज, क्योंकि हम देंगे आपको बॉलीवुड डोज आकाशवाणी रेनबो पर, जहां प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्विस्ट, जहां आज मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।

संभाले तो हमें कौन संभाले। वेल दोस्तों, इस भजन की जो पंक्ति है जगन्नाथ रथ यात्रा की रूह को बखूबी बयां करती है। जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं, तब हर दिल से बस यही प्रार्थना निकलती है, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ। सुरों के साउंडस्केप में हर एहसास को मोटिव इनोवेशन से नहीं पहचान देते हैं आप। सुरों के साउंडस्केप में हर एहसास को इनोवेशन से नहीं पहचान देते हैं आप। क्लासिकल म्यूजिक की रूह को कंटेम्प्रेरी बीट्स के संग खूबसूरती से ब्लेंड करते हैं आप। हर कॉम्पोजिशन आपकी वर्सटैलिटी और एक्सपेरिमेंटल स्पिरिट की कहानी बयां करती है। राम संपत आपकी धुने हर बार म्यूजिकल कैनवस पर लहरा कर झूम कर संगीत का जश्न मनाती है। राम संपत इज अ सेलिब्रेटेड इंडियन कॉम्पोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, वोकलिस्ट नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक, इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे गाइस। 25 जुलाई 1977 को मुंबई में जन्मे राम संपत की जिंदगी की पहली दस्तक ही ऐसे म्यूजिकल घराने में हुई जहां सुर, ताल और मेलेडीज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। उनके दोनों पेरेंट्स म्यूजिकली इंक्लाइंड थे और उनका एंसेस्ट्रल हाउस कर्नाटक म्यूजिक के कई लेजेंडरी सिंगर्स और म्यूजिशियंस का उसमें आना जाना लगा रहता था। बचपन से ही सुरों, रियाज और रागों के इस दिलकश माहौल और नेचुरल अंडरस्टैंडिंग के बीच वो रहे, जी हाँ, जो आगे चलकर उनकी म्यूजिकल जर्नी की स्ट्रांग फाउंडेशन बनी। इसी एनरिचिंग म्यूजिकल एनवायरनमेंट ने उन्हें कर्नाटक म्यूजिक सीखने के लिए इंस्पायर किया और लगभग 8 साल तक शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद राम ने मुंबई के कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की दोस्तों, जहां एक रॉक बैंड में वो कीबोर्ड प्ले किया करते थे। यहां रॉक, वेस्टर्न रॉक की रॉ एनर्जी और इंडियन क्लासिकल के सोलफुल डेप्थ ने मिलकर उनकी म्यूजिकल आइडेंटिटी को शेप किया और यहीं से दोस्तों उनके सोनिक विजन को नई डायरेक्शन मिली। राम संपत ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई के एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से की, जहां उन्हें 7,000 से ज्यादा एडवर्टाइजिंग जिंगल्स कंपोज किए। छोटे ड्यूरेशंस के जिंगल में भी मेमोरेबल मेलेडीज क्रिएट करना उनकी खासियत बन गई। एडवर्टाइजिंग के बाद राम संपत ने इंडी पॉप की दुनिया में कदम रखा और 90s और अर्ली 20s के इंडी पॉप एरा को अपने फ्रेश मेलेडीज और कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ रीडिफाइन किया। बॉलीवुड में राम संपत ने 2002 की लेट्स टॉक से अपना डेब्यू किया, लेकिन 2004 की खाकी ने उन्हें एक प्रॉमिसिंग फिल्म कंपोजर के रूप में एस्टैब्लिश किया। इसके बाद पीपली लाइव, डेली बेली, तलाश द आंसर, लाइज विद इन, फुकरे, भूतनाथ रिटर्न्स, रमन राघव 2.0, रईस, कटहल, लापता लेडीज जैसे प्रोजेक्ट

में भी उन्होंने अपने म्यूजिकल आइडेंटिटी और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से हर कहानी को एक अलग सोनिक टेक्सचर दिया, जिससे उनका जो म्यूजिक है वो सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। टेलीविजन की दुनिया में भी राम सम्पत ने अपने म्यूजिक ब्रिलियंस की गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों मैं तो हम उन्हें विश करना चाहेंगे, वी विश राम सम्पत अ वेरी हैप्पी बर्थडे, कीप एंटरटेनिंग अस विद योर इनोवेटिव साउंडस्केप एंड सोलफुल मेलोडीज। फिलहाल अब जो हम ट्रैक सुनेंगे दोस्तों, उस ट्रैक के बारे में बस यही कहना चाहूँगी, जब आप सुनेंगे तब आपको महसूस होगा, लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि इस कॉम्पोजिशन में राम सम्पत ने फोक इंस्पायर्ड सोल को कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ बहुत ही नज़ाकत के साथ ब्लेंड किया है। जी हाँ, इस ट्रैक का म्यूजिक कभी वोकल्स पे हावी नहीं होता बल्कि हर लफ्ज़ को सांस लेने की जगह देता है। तो चलिए सुनते हैं इस ट्रैक को, उस सजनी रे ऑन द वोकल्स अरिजीत सिंह।

सच नहीं रे जी। हाँ अरिजीत सिंह के जो सोलफुल वोकल्स हैं ना, उसका क्या कहें, उनकी आवाज़ का ठहराव और इमोशनल डेप्थ राम संपत के म्यूजिक के साथ मिलकर हर लफ्ज को महसूस करवा देती है ना। इस ट्रैक में आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रही हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म। जी हाँ, रिनाउंड फिल्म मेकर स्क्रीन राइटर प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन, जी हाँ, उन्होंने मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म लोखा चैप्टर वन चंद्र में अपनी फियरस एक्शन अवतार और पावरफुल परफॉर्मेंस से न सिर्फ मेकर्स को बल्कि ऑडियंस को भी काफ़ी इम्प्रेस किया है। और अब कल्याणी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं रणवीर सिंह स्टारर प्रलय, विच इज़ अ हाई बजट जॉम्बी एक्शन थ्रिलर। प्रलय में कल्याणी का रोल कन्वेंशनल लीडिंग लेडी, जैसे होते ना कि डैमसल इन डिस्ट्रेस, ट्रेडिशनल टाइप जैसा नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस एक्शन हीरोइन के रूप में वो नजर आएंगी। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, फिल्म में कल्याणी और रणवीर दोनों हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस परफॉर्म करेंगे। उन्हें इंटरनेशनल स्टंट कोऑर्डिनेटर्स और वर्ल्ड क्लास एक्शन एक्सपर्ट्स की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। कहा जा रहा है कि कल्याणी के एक्शन सीक्वेंसेस का स्केल और एग्जीक्यूशन हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स की लीडिंग फीमेल एक्शन स्टार्स का लेवल पे होगा। उनके डेयर डेविल स्टंट्स और हाई ऑक्टेन एक्शन पीसेस को इसी सिनेमैटिक स्टैंडर्ड पर डिजाइन

जा रहा है दोस्तों। फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त से शुरू होगी। पहला स्केड्यूल दिवाली तक कंप्लीट किया जाएगा। फिल्म का दूसरा स्केड्यूल 2027 यानी नेक्स्ट ईयर रिज्यूम होने की उम्मीद है। लगभग 300 करोड़ के बजट में बन रही प्रलय एक विजुअली स्पेक्टेकुलर VFX ड्रिवन जोम्बी एक्शन थ्रिलर होगी, जहां सर्वाइवल सस्पेंस और लार्ज स्केल सिनेमैटिक एक्शन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिल्म का डायरेक्शन जय मेहता कर रहे हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम। और अब देशभक्ति के एसेंस से भरे इस ट्रैक को सुनिए और इसके एक एक लव्स को दिल से महसूस कीजिए। जय हिंद।

था माथे पे माटी सजा के चलो। ये दोस्तों सिर्फ एक पेट्रियोटिक लाइन नहीं है बल्कि एक सोल्जर के जज्बात का गहरा एहसास है। उन्होंने अपने माथे पर सिर्फ माटी नहीं अपने देश की इज्जत, अपनी भारत माता का गुरूर भी सजाया है और उसकी इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रिल्स, जहां मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए देते हैं नेक्स्ट बॉलीवुड अपडेट। सैयारा के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद आहान पांडे नजर आएंगे अब्बास जफर अली की फिल्म में। फिल्म के कुछ ग्लिम्स जो ऑनलाइन सर्फेस पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं वो यूके में शूट हुए हैं ग्रैंड स्केल पे। आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन और अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म दोनों की प्रोड्यूसर डायरेक्टर जोड़ी के तौर पर फिफ्थ कोलैबोरेशन होगी। आहान पांडे, शर्वरी, ऐश्वर्या ठाकरे और बॉबी देओल स्टारर इस अनटाइटल्ड रोमांटिक एक्शन ड्रामा की थिएटरिकल रिलीज के लिए 26 मार्च 2027 की डेट लॉक कर दी गई है, यानी नेक्स्ट ईयर। दोस्तों शिरवानी मेड हर डेब्यू विद यशराज फिल्म्स बंटी और बबली इन 2021। बेशक वो फिल्म नहीं चली थी, खैर आहान की ये सेकंड प्रोजेक्ट है यशराज फिल्म्स के साथ आफ्टर सैयारा। अब बॉलीवुड सरताज के लिए सवाल रेडी है आज किस बॉलीवुड कंपोजर का हैप्पी हैप्पी बर्थडे है। हमने उनके बारे में बातें की हैं इस प्रोग्राम में, उनका कंपोज किया हुआ गाना लगाया है 9868107070। 9868107070 ये नंबर है जिस पे आप भेज सकते हैं इसका आंसर, बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। जब मैं कॉल करूं तो प्लीज़ कॉल कनेक्ट हो जाए। एक तो मैं ये प्रेयर करती हूं साथ में वहां शोर ना हो और साथ में आप बहुत ही शांत जगह पे हो जहां पर आपको हमारी आवाज़ आए, है ना। तो चलिए अभी फ़िलहाल सुनते हैं। अच्छा, आपके चेहरे पे जो स्माइल आ रही है ना, इसको आने दीजिए क्योंकि नेक्स्ट ट्रैक जो है थोड़ा हंस के तो दिखाइए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: love their cricket and their cricket history, and he is, you know, revered worldwide.
1: That he certainly is, and there have been a lot of accolades here in India as well, tributes pouring in. In India, he played very few matches, but the legend certainly was very strong. And even as I was growing up in my early impressionable years, the biggest bragging rights in the game seemed to be who has the highest aggregate score, which he did. World record score, and of course the 365 not out, which was a bit like Everest at that point of time. You know, it's the highest of the highs. He was certainly a larger than life figure, and I would dare to suggest that there is no Indian who doesn't hold him in that regard of, as Jim says, the best cricketer in the world. We all grew up knowing that Sir Garfield Sobers was in a class of one.
0: Well, that's all we've got time for on Stump this week for Akash Vani. Don't forget to follow us on X. We're at BBC WS Sport, and use the hashtag BBC Stumped. And check us out on YouTube as well. Go to the BBC World Service on YouTube. Thanks to Chari Sharma and Jim Maxwell, and to all of you for listening. Speak to you soon. Bye-bye.
2: Stumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akashvani.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
4: वेलकम बैक, आ गई हूँ मैं प्रियंका आपसे बातें करने के लिए प्रोग्राम बॉलीवुड ट्विज में। अब बॉलीवुड अपडेट्स के साथ कौन है हमारे साथ फोन लाइन पर, जो है हमारे बॉलीवुड सरताज। हेलो।
5: हेलो मैम, नमस्ते। राजकुमार संतानी, अकोला महाराष्ट्र से।
4: नमस्कार राजकुमार के संतानी, आप अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। आपके यहाँ थोड़ा सा शोर आ रहा है।
5: हाँ जी,
4: एक्चुअली थोड़ा सा शोर आ रहा है जहाँ पर आप हैं, वहाँ लगता है काफी गाड़ियाँ आगे जा रही हैं।
5: एक्चुअली हवा चल रही है, पानी का मौसम है।
4: अच्छा, पानी का मौसम है, बारिश आ रही है।
5: बारिश आने वाली है, आए तो बहुत अच्छी बात है।
4: हमारे तो सुबह सुबह हम निकले, पर हमारे साथ तो बारिश आंख में चोली खेल रही है। इस समय धूप हो गई है, देखिए दिल्ली में तो।
5: हाँ हाँ,
4: अच्छा तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि राम संपत हैं, वो म्यूजिक बॉलीवुड कंपोजर जिनका आज बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या आपको खास
5: चीज लगती है? राम संपत जी का बर्थडे है, उनके लिए शुभकामना देता हूँ। और उनका जो है अंबर सरिया, जो की फुलकरे मूवी का गीत है, अच्छे गीत है उनके। और बाकी कंपनी 2002 में उन्होंने म्यूजिक दिया था, और 2004 में खाकी, और अभी आपने लापता लेडीज का गीत बहुत अरिजीत सिंह का मजे से सुना है, काफी अच्छा लगा।
4: ओके, तो आपको उनके म्यूजिक में क्या अच्छा लगता है?
5: जी, उनकी म्यूजिक काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है। आप चाहे खाकी में सुन लीजिए, दिल डूबा, या अंबर सरिया जो अभी आप फुरकरे गीत उनका सुन लीजिए, या फिर जो खलास कंपनी फिल्म का है, जो कि डीजे में आज भी सर चढ़ कर बोलता है, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग म्यूजिक है उनकी।
4: वो एक्चुअली इंडियन म्यूजिकल रूट्स को कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं ना, जैसे उनका गाना मॉडर्न भी लगता है, टाइमलेस भी, और अच्छा भी लगता है सुनने में।
5: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लगता है, बेस्ट लगता है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है राम संपत जी।
4: जी तो चलिए कोई गाना सुना दीजिए।
5: जी, फुलकरे मूवी का ही लगा दीजिए, अंबर सरिया, काफी बढ़िया गीत है वो।
4: हम
5: अच्छा
4: तो
5: गीत
4: प्ले
5: है।
4: करेंगे, लेकिन गाना आए ना आए, गाना चाहिए, आप गाना सुनाएंगे हमें।
5: तो गीत कौन सा गाएं आप बताइए, इन्हीं का गीत गा देते हैं जो कि इनका बर्थडे है। तो दिल डूबा तेरी आंखों में, दिल डूबा जो कि नीली आंखों वाला दिल डूबा, ऐसा कुछ गीत था खाकी फिल्म का।
4: आपको जो जिसके लिरिक्स आते हो ना, जो आपको दिल कहे कि हाँ मुझे ये सुनना है, ये सुनाना है इस समय, तो सुनाइए।
5: अच्छा, तो हमारा गीत, वैसे तो SRK का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जो कि उनके गीत काफी अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो उन्हीं का निगम साहब का गीत है ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना।
4: मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, क्योंकि सीने में धड़कता है ये दिल, है ना?
5: जी जी जी, बिल्कुल काफी।
4: उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है।
5: जी जी जी, सोनू निगम जी एकदम बेहतरीन सिंगर है, किसी को भी अपनी सिंगिंग देते हैं तो उस गीत में जान आ जाती है।
4: वैसे ऐसा लगा हमने गाना नहीं कविता पढ़ी है।
5: जी जी जी बिल्कुल, हम सिंग।
4: हाँ जी
5: जी, हम सिंगर नहीं है, एकदम परफेक्ट सिंगर है। जो आपकी आवाज़ें काफी अच्छी है, जो आप बता रहे थे, हमें आता नहीं, हमारा ट्यून वैसा नहीं बैठता है।
4: आपको पता है गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, क्योंकि गाने सुन के ना क्या होता है, जो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, वो कम हो जाता है, पता है? और चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और इससे बड़ी क्या चीज चाहिए, चेहरे पे स्माइल आ गई, आपका खून जो है, जो ब्लड है वो अच्छा सर्कुलेट हो गया, और क्या चाहिए, है ना।

0: जी बिल्कुल, ऐसे में रिम्बो से कॉल आ गया तो अच्छी खुशी आ गई, और अगर पानी आता है कल संडे तो हम एंजॉय भी करेंगे बच्चों के साथ में, और सोनू के स्वागत भी हो जाएगा और एफएम रेनबो भी सुनेंगे अच्छे से।
1: क्या बात है, चलिए इसी बात से अम्बर सरिया लगाते हैं, ये ट्रैक लगाते हैं, ये ट्रैक है फुकरे मूवी का, और इस गाने में आपको क्या खासियत लगती है?
0: जी राम संपत जी का म्यूजिक ऐसी है और इन्हीं की वाइफ ने गाया है, काफी अच्छा गीत है ये, काफी बेहतरीन गीत है।
1: जी बिल्कुल, सोना के जो अर्दी वोकल्स हैं इस ट्रैक में वो हार्ट बीट हैं इस ट्रैक के, क्यों लगता है ना उनकी आवाज का जो रॉ वार्म्थ है, जो एफर्टलेस एक्सप्रेशन है, वो हर लव्स को एक अलग ही चार्म देता है, मानते हैं बात?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही मानते हैं,
1: चलिए काफी, हाँ जी
0: काफी मेहनत करते हैं, काफी अच्छे से बनाते हैं ताकि बाद में हम इसे प्रचार कर सकें, आप हम सभी काफी काफी मेहनत करते हैं।
1: चलिए अच्छा लगा कि आप उनकी मेहनत को इतना अप्रिशिएट करते हैं, आपसे बात करके राम अच्छा लगा बहुत ही। चलिए इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।
0: बिल्कुल बाय, थैंक यू थैंक यू।

सोना की आवाज़ का आवाज़ में यही जो ट्रैक है ना, इसमें पंजाबी फोक की रूह और कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड साउंड का एक खूबसूरत संगम है। और राम संपत ने इस कॉम्पोजिशन में फोक म्यूजिक की मिठास को मॉडर्न अरेंजमेंट के साथ नेचुरली ब्लेंड किया है कि हर बार लगता है ये गाना कि हम पहली बार सुन रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। आप हमारी जो नेक्स्ट प्रेजेंटर है ज्योति, वो भी इस ट्रैक को इन्जॉय कर रही थी और इसी के साथ जल्दी से राम राम जी। लगी ये दिल की क्यों यूं ही लगाई नहीं जाती, दिल की बात सारी यूं किसी से बताई नहीं जाती, कोई तो होगा रिश्ता जरूर आपसे, यूं तो अखियां आपके लिए बसाई नहीं जाती। वाह, चाहे जग जो समझे परवाह है नहीं, किसी को अपना है जब बनाया, दिल से है अपनाया, फिर और तो कोई इस दिल में नहीं है समाया, खुद आप ही समझे ना या ना समझे, हम तो धूल बराबर हैं चरणों के आपके, ये ऐलान है हमारा, सरेआम है हमारा, क्योंकि दिल से दिल तक ये प्यार है हमारा, ये प्यार है हमारा, बहन का भाई से, श्रोता का रेनबो से, हमारा आपसे, आपके विचारों से, आपके मधुर संगीत से, आपकी सोच से, आपकी पूरी टीम से। प्रियंका जी आपके तहे दिल से नमन, आपके माँ बाप को भी प्रणाम है हमारा। रोहित खेरा दिल्ली 9 से, हर बार रोहित जी इतना अच्छा मैसेज लिखते हैं कि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, दिल से लिखते हैं, दिल तक समझ में आती है आपकी बात। अंशी शर्मा हसनापुर मेरठ से हमारा वेलकम भी करती हैं और बिल्कुल सही जवाब भी देती हैं। इसके साथ पंकज जी अमरावती महाराष्ट्र से हमें लिखते हैं और इन्होंने भी कहा है कि बॉलीवुड ट्रेल्स में इन्होंने पिछले शनिवार को भी सुना था और मैसेज भी किया था, शामिल निवान का मैसेज, ऐसा नहीं होगा किया होगा मैंने शामिल, शायद स्किप कर गए होंगे आप। राम संपत परवीन चौहान हमें लिखते हैं मध्य प्रदेश से, सही जवाब। मिसेस धर्म भाटिया का भी मैसेज है और इसी के साथ सलीम मलिक का भी मैसेज है मेरठ से और इसी के साथ हमें मैसेज है, गलत जवाब दिया है विनोद सोनी जी ने। और इसी के साथ प्रियंका आप बहुत अच्छा गाया आपने दीवाना ये दिल, अरे थैंक यू डॉली। पता है मैंने एक्चुअली कुछ लिरिक्स आपके जहन में रह जाते हैं और बस एक तार छिड़ती और वो आप बस गुनगुनाने लगते हैं, यही हुआ, बाकी पसंद आया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं, इन्हें भी जो फर्स्ट ट्रैक था वो काफ़ी सुकून दे गया, चलिए बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ, टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

0: whatever the situation is, it just says that small steps are still steps, isn't it? And you don't have to change your whole life in just one day. Just one good thing at a time, you know, will make all the difference. Yes, so a few messages before we get going with our songs. And my dear listener, yes, so what do I have with me? I have Rajkumar from Maharashtra, another great regular listener of ours. And I remember, Rajkumar, you were there in the morning as well with some sweet messages, and here you are again. Thank you for wishing us a happy Ekadashi. Thank you so much, Rajkumar. And this one is there's no name there, but says, "Hello, ma'am. Hello, dear one. Hello, how are you doing?" Okay, so I have to play out some songs and some ads in between. So stay with us, dear listeners. Don't you even think of going anywhere, because we still have almost 24 minutes more to enjoy. Stay with us.
1: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर, एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार। दोपहर के 1 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। अगले सप्ताह संसद में बिल पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की समस्या के खिलाफ विस्तारित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी आज परीक्षा प्रणाली में सुधार पर तीसरे दौर पर वार्ता करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त। पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। श्री गोयल ने कहा, जनता को गुमराह करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा। मतदान 30 जुलाई को, चुनाव परिणाम की घोषणा 3 अगस्त को की जाएगी। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज MV ओमफ्री पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मौसमिक ध्वज वाले LPG टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। चीन में

निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रीय मंडल खेल में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में देश का यह पहला पदक। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन को महिला 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में सीधा प्रवेश मिलने के साथ ही उनका कांस्य पदक पक्का। मुक्केबाज जदुमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और भारत की स्क्वाश खिलाड़ी अनाथ सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनाहत का सामना मिस्र के रुकैया सलेम से होगा। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, जैसे कानों का है आवाज से रिश्ता, सुरों का है सांस से रिश्ता। जो गाने रहते हैं आपकी जुबान पर, नक छोड़ जाते हैं आपके दिलो जहाँ पर, वही गानों के बारे में पूछेंगे आपसे और बहुत सी बातें भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर, जहाँ आप 9868107070 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं वो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब, जिससे जुड़ी कोई याद, कोई बात, या जिससे आप कनेक्ट कर जाती है आपकी वाइब, जो आपके कॉल फोन की कॉलर ट्यून है, जी हाँ रिंग ट्यून है, बस आपको पसंद है, आपको बस रीजन बताना है तो अच्छा लगेगा हमें। जी हाँ, 9868107070 ये वो नंबर है जहाँ भेज सकते हो गाने जो वजह बेवजह है आपके दिल के करीब। फिलहाल जो मुझे पसंद है इस समय, तो चलिए इस गाने की एक एक लिरिक को, एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुड आफ्टरनून।

भक्ति के एसेंस से भरे इस ट्रैक को आपने सुना, जिसमें सोल्जर्स की स्पिरिट और स्कूल कैडेट्स की डिसिप्लिन दोनों इस गाने में रिफ्लेक्ट होती हैं। वैसे ये ट्रैक सुनते ही प्राइड और यूनिटी दोनों इमोशन ही हम महसूस करते हैं ना, अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए। आकाशवाणी रेनबो पर जय हिंद। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये वाला सॉन्ग। और आकाशवाणी रेनबो पर ही फर्स्ट मैसेज हमें भेजती है अंची शर्मा हस्तनापुर मेरठ से, कहती राधा कैसे न चले। जी हाँ, इन्होंने हमें दो चार चॉइसेस भेजी हैं, तारे हैं बाराती। पता है मेरे को दोनों गाने बहुत पसंद है, मैं दोनों में कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। वैसे मैंने दोनों क्यों कर रखा है, राधा कैसे न चले और तारे हैं बाराती। जहाँ पर कहते ना कि हाथ में हमारा जो होता है कि वहाँ पर प्ले हो जाएगा, तो उसी गाने को हम प्ले कर देंगे। दोनों ही गाने बहुत प्यारे हैं। इसी के साथ हमें मैसेज आया है, हाय प्रियंका, मैं हूँ प्रगति राज पटना से। ओके, मैं फिल्म सुल्तान का गाना सुनना चाहती हूँ, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो धड़कन का कोई भी गाना सुना दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरे मैसेज को ज़रूर शामिल कीजिएगा, धन्यवाद। जी मैंने ये गाना भी अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, बड़ा प्यारा गाना है धड़कन का, तो मैंने ये जो है ये क्यों कर दिया है। नेक्स्ट, उसी के साथ गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली, फिल्म बॉर्डर का या फिर DDLJ का या फिर दिल तो पागल का। ओके, ये सारे गाने इनमें से कोई भी फिल्म का गाना लगा दीजिए। वाह क्या बात है, क्या चॉइसेस दी हैं आपने हमने। तो अभी बिना देर किए हम लगा देते हैं तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। कितने प्यारे लिरिक्स है ना।

साथ ये गाना जो है अंशी की बेशक चॉइस है, पर देखिए ना कैसे कनेक्ट होते हैं। मेरठ से आई चॉइस दिल्ली में डॉली को अच्छी लग रही है, वो कह रही तारे हैं बाराती, बहुत प्यारा गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा है कुछ साल से। डॉली दिल्ली से लिखती है और फिलहाल इन्हें जो फर्स्ट ट्रैक था सेना की जय जय हो जाए, इन्हें बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ अंशी का मैसेज आया, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू डियर। एंड इसी के साथ जो नेक्स्ट ट्रैक है प्रगति की चॉइस का, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में दो दिल तड़कते हैं।

सीरियसली इस गाने के लिरिक्स बड़े ही दिल को छू गए मेरे। आई एम श्योर आपने भी इस गाने को एंजॉय किया होगा। और देखिए जो पहला गाना है ना, जो सेकंड गाना इनफैक्ट जो अंशी शर्मा हसनापुर मेरठ से हमें भेजती हैं, एक मैसेज आया उनके लिए कि प्रियंका जी आपने तारे हैं बराती सॉन्ग चला के दिल खुश कर दिया है। जिसने भी रिक्वेस्ट भेजी उसे धन्यवाद। इस सॉन्ग का एक एक शब्द दिल को छू जाता है। उस पर जसविंदर नवला जी की आवाज़, साथ में कुमार सानू, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से लिखते हैं। वाह क्या बात है, कितना अच्छा लगा। मेरठ से हमारी ये दोस्त ने हमें चॉइस भेजी और दिल्ली से डॉली को पसंद आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है मोहम्मद इम्तियाज जी, तो क्या बात है। इसी के साथ दोस्तों एक मैसेज आया है हमें कि प्रियंका वर्मा मैडम जी किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, ओके जी आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। कविता देव भूमि उत्तराखंड से हमें कहती हैं, टिहरी गढ़वाल से मैसेज किया है और इन्होंने भी हमें जो मर्डर फिल्म का गाना बोला है कि अगर आपका हो सके तो प्ले कर दीजिए। देवेंद्र इंगती हमें लिखते हैं जिला कार्बी अंगलोंग से, मीरा का मोहन, ओके इन्होंने भी हमें चॉइसेस भेजी है और देखते हैं कि ये गाना हमारी लिस्ट में है या नहीं। और इसी के साथ नितिशा ने हमें भेजा है और कहाँ से भेजा है समझ नहीं आया दोस्त। आपने लिखा आप घूमने आई हैं, सफारी पे हैं और आपको यहाँ पर जंगलों के बीच आप रेडियो सुन रही हैं और रेनबो सुन रही हैं, ओके ओके रेनबो सुन रही हैं, क्या बात है, क्या बात है डियर, क्या मस्त यू नो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है, पेड़ों के बीच में और जंगलों के बीच में रेडियो चल रहा है, उसमें रेनबो चल रहा है, उसमें मेरी आवाज़ चल रही है, उसमें इतने अच्छे गाने चल रहे हैं, क्या बात है। इसी बात पे ना एक बात मुझे ध्यान में आई है, वैसे चलिए आपसे शेयर करूंगी। इसी के साथ हमें राहत गजाला लिखती हैं, इन्होंने भी हमें नेहतापुर बिजनौर से मैसेज किया है और इसी के साथ मैसेज आया है कि आपको मेरा मैसेज क्यों नहीं शामिल कर रहे। शिवम कुमार पटना बिहार से लिखते हैं, आप मेरे को सुना दीजिए आज एकादशी है, ओके आपने हमें कौन से गाना लिखा है दोस्त, आपने हमें लिखा है, ओके चलिए दोस्त हम इस गाने को ट्रैक को पहले ढूंढेंगे फिर आपको बताएंगे कि हम ये प्ले कर सकते हैं नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर रहेगी आपके इस ट्रैक को प्ले करने की क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की है। और इसी के साथ दिल है तुम्हारा सॉन्ग सुना दीजिए। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से हमें लिखती हैं, ओके डियर कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ हमें मोहम्मद इम्तियाज ने ही लिखा था कि दो चार फिल्म्स के ट्रैक थे तो इस समय मैंने दिल तो पागल है का ट्रैक जो है वो क्यों किया है। और आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, ऐसी मन में आ रही है कि जो पेड़ों की पत्तों की सरसराहट होती है और जो हवा का गुजर होता है, शाखों की हल्की सी खनकन होती है, सीधा हमारे बॉडी और माइंड से कनेक्ट होती है ना। जब हम पेड़ों के बीच रहते हैं तो ये नेचुरल रिदम हमारी सांसों के साथ अलाइन होती है, जैसे नितिशा अभी उनके साथ हो रहा है, और हार्ट बीट को एक सॉफ्ट बैलेंस देती है। माइंड में जो बहुत सारा एक अननेसेसरी शोर होता है ना वो कम होने लगता है, स्ट्रेस हल्का होता है और बॉडी अपने हीलिंग स्टेट में आ जाती है। जी हाँ, पेड़ों के साथ रहना, पत्तों के साथ रहना, मतलब एक ऐसा अनुभव है कि क्या कहे भाई। मैं तो कहूँगी नितिशा इस समय आप सच में बहुत इंजॉय कर रही हैं क्योंकि जो पेड़ों की रसलिंग होती है, जो हवा का फ्लो होता है और जो माइक्रो मूवमेंट्स ये छोटे छोटे होते हैं ना, इस समय मैं कहाँ पहुँच गई, ये काफ़ी रिलैक्स करते हैं, ये हमारे बॉडी और माइंड से न्यूरो फिजियोलॉजिकल लेवल पर लिंक करती हैं। जब हम पेड़ों के बीच रहते हैं तो नेचुरल साउंड्स हमारे ब्रेन के अल्फा वेव्स को एक्टिवेट करती हैं जिससे माइंड काम और फोकस्ड होता है, साथ ही बॉडी का पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग सिस्टम को, ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट करता है जी। और फिर हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो होता है, जो स्ट्रेस का यू नो हार्मोन रिलीज करता है, वो कम हो जाता है और हम खुश खुश हो जाते हैं। देखिए हर चीज़ का एक साइंटिफिक

रीज़न होता है, इसलिए मेरा मन हुआ, मेरे मन में ये बात आई कि आपसे शेयर किया जाए। तो आई होप आपने पसंद की होगी। फिलहाल कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, तो बोलिए ना, रो कौन रहा है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय कहते हैं, मैनू इश्ता लग्या रोग, मैनू बचने दी नैया उम्मीद लगा दीजिए। प्रियंका जी, मैडम जी, क्या बात है, हम आपको आप हमें शामिल नहीं करती। मैं 2 महीने से देख रहा हूँ, जब भी आते हो हमको शामिल नहीं करते हो, हमसे कोई नाराज़गी है? अरे बिल्कुल नहीं दोस्त, देखिए आपका एकदम से मैसेज फ्लैश हुआ, मैंने गाना प्ले किया।

बिल्कुल जी, देखिए ये चॉइस हमें आई थी कहाँ से आई थी, ये हमें आई थी चॉइस ओके कोलार रोड भोपाल से आई थी, राम बाबू मालवीय मनीषा मालवीय का, और ये पसंद आ रहा है दिल्ली में डॉली को और साथ में रायपुर में राधिका को, क्या बात है, दोनों को चॉइस ये पसंद आ रही है। प्रदीप सरूजा जी हमें लिखते हैं कि टाइम आगे बढ़ रहा है, नाम ही ऑन एयर कर दीजिए। जी बिल्कुल कर दिया है, देखिए आपने 19 पे मैसेज सेंड किया था, पर क्या करें इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छा लगता है ना, फ्लैश होते हैं फिर वो मैसेज आपके पीछे चले जाते हैं, फिर हम स्क्रॉल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने जनकपुरी से मैसेज किया, हमारे रेगुलर लिसनर है और इसी के साथ जुड़ी रही है, और इसी के साथ मार्वलस डियरेस्ट प्रियंका मैम, ऑफकोर्स योर शो इज़ गोइंग वेरी नाइस, सभी की सॉन्ग रिक्वेस्ट ब्यूटीफुल लग रही है, वेरी वेल डन, कीप इट अप, हैव अ वंडरफुल डे, एंड ऑफकोर्स यू आर माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट प्रेजेंटर्स ऑलवेज। अंशु शर्मा हस्तनापुर मेरठ से लिखती है, दोस्तों मैंने इसलिए ऑन एयर किया है क्योंकि इन्होंने कहा कि सभी की रिक्वेस्ट पसंद आ रही है। देखिए भारत के अलग अलग राज्य से हमें रिक्वेस्ट आ रही है और सभी में कहते हैं ना यूनिटी जो है वो बड़ा अच्छा लगा उस डाइवर्सिटी में, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए इस मैसेज को शामिल किया। और इसी के साथ हमें वरुण वाशने का मैसेज है अलीगढ़ से, इन्होंने कहा धुरंधर 2 का गाना लगा दीजिए। जी बिल्कुल जी, मैंने ये गाना क्यों कर दिया है, तो बिना देर के चलते सुनते हैं इस अमेजिंग ट्रैक, अमेजिंग है सीरियसली।

0: इस ट्रैक में प्यार की सॉफ्टनेस और लॉन्गिंग दोनों ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं ना, और इस ट्रैक का रियल मैजिक है वोकल्स, जैस्मीन के वोकल्स, सतेंद्र के वोकल्स अलग अलग टेक्सचर के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवस क्रिएट करते हैं। इन दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल है, जहाँ एक गाना दूसरे एहसास से स्मूथली ब्लेंड करता है, सीरियसली ये। और साथ में एक मैसेज आया ये वरुण की चॉइस से, अलीगढ़ से, मेरे को इंसाफ चाहिए ये हमें लिखा है, सोना दिया सोनार को, पायल दिया दिल लुटिया, FM रेडियो के दोस्तों का घायल बना दिया, शिवम कुमार पटना बिहार। ये शायरी आप सभी लोगों के लिए। प्रियंका मैम आप बहुत अच्छी प्रस्तुति कर रही हैं, कार्यक्रम मज़ा आ रहा है। मैंने खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाना खाया पहले ये बताइए। और जो आपने रिक्वेस्ट किए दोस्त, मैं इस ट्रैक को ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा आपने इंसाफ आपने मांगा, आपका देखिए आपका मैसेज मैंने ऑन कर दिया है। और इसी के साथ हमें मैसेज आया कि थैंक्स जी प्रियंका वर्मा जी, नाम सुन के हैप्पी हैप्पी हो गए। चलिए प्रदीप सलूजा जी हमें जनकपुरी से लिखते हैं, और जिनका हमने धुरंधर प्ले किया है वरुण का, उनका थैंक यू मैसेज आया है। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है कि थैंक यू सो मच आरजे प्रियंका मैडम जी, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, वेरी नाइस प्रोग्राम प्रेजेंटेशन एंड नाइस सॉन्ग लिस्ट। ये तो दोस्तों आप सबकी चॉइस है। और इसी के साथ नमस्कार हमें लिखते हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं इनके, ये मैसेज है कम से कम आई डोंट नो कितने काउंटलेस मैसेज हैं जी, आपको हमारा गीत पसंद नहीं आया या हमारा नाम पसंद नहीं आया, मैसेज देखा अनदेखा क्यों कर देते हैं, लाखों मैसेज आते हैं लेकिन जो सबसे पहले आता है कम से कम उसे तो शामिल कर लिया करें। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, हम आपके गीत भी शामिल करते हैं जयराम जी, हर एक दोस्त ज़रूरी होता है आप ये जानते हैं। और इतने सारे आप मैसेज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने कितने काउंटलेस मैसेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो बहुत सारे मैसेज किए हैं। लेकिन आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े रहिए। और इसी के साथ ये मैसेज आया है, ओके मैं गुरुद्वारा के पास रहता हूँ, पटना साहिब गुरुद्वारे के पास, शिवम कुमार आपने एकदम मैसेज आया, आपका फ्लैश हुआ, ओके। और इसी के साथ आपका मैसेज है, प्रियंका को नमस्कार, हमारे घर में नन्ना मेहमान आया है, मेरा पोता हुआ है, उसके लिए प्यारा सा गीत सुना दो प्लीज प्लीज प्लीज। और इसी के साथ भगवती जी हमें न्यू दिल्ली से लिखते हैं, आजकल बिजी थोड़ा ज्यादा हूँ तो प्रोग्राम में एबसेंट हो जाती हूँ, लेकिन देखिए कितना प्यारा है ना, आपके घर में मेहमान आया, कोई गाना बताइए, मैं भी गाना ही सोच रही हूँ कि आप नन्ने मेहमान का नाम क्या रखा ये भी बताइएगा भगवती जी, और गाना मैं सोचती हूँ, कोशिश की जाएगी एकदम से, यू नो नन्नी मेहमान का तो आ गए लेकिन नन्ना मेहमान अभी सोच रही हूँ कि कौन सा गाना हो सकता है। इसी के साथ आया कि हाय आकांक्षा फ्रॉम मुंबई, डेडिकेट करना है सॉन्ग दोस्त के लिए, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। अच्छा चलिए जाने क्यों, ये कॉन्वर्सेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आकांक्षा फ्रॉम मुंबई, मैं गाना जरूर क्यों करूंगी। और इसी के साथ पहले एड है फिर आपका गाना है।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
0: ओके हमारा सिस्टर हमारे साथ हाइड एंड सीख खेल रहा है, कोई बात नहीं हम फिर से आ गए आपसे बातें करने के लिए। और मैं वो सोच रही हूँ कि चलिए हमने वो जो गाना क्यों किया था अभी, जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं, वैसे प्यार इश्क मोहब्बत कुछ भी कह लीजिए, कहने को छोटे से लफ्ज़ है लेकिन इसके आसपास ही हम सबकी दुनिया घूमती है, मानते हैं ना बात। अब देखिए वो गाना तो अभी चला गया है, अभी इस समय हमारे पास जो चॉइस आई है हम उसी को प्ले कर रहे हैं दोस्त। और इस समय ये मैसेज आया है, दिल्ली से मैसेज आया है नितिका गीतिका, ओके नितिका गीतिका रेनू, इन सब के मैसेज आए हैं, इन्हें सुना है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ओके उसका ट्रैक है, तो दो से मैंने क्यू कर लिया है।
3: सारेगामा कारवा, सारेगामा कारवा फॉर योर लव्ड वंस।
0: हेलो मैम, साजिद कुरैशी कटौली उत्तर प्रदेश से, आज हमारा सॉन्ग प्ले कर देना महान मूवी का, ओके ये कौन सी मूवी है और आपने कहा है जो गाना है दोस्त में समझ में नहीं आया। थैंक यू प्रियंका मैम, मेरा तो दिन ही बना दिया फेवरेट सॉन्ग को प्ले करके, इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा प्रस्तुति देती हैं, थैंक यू, हमेशा खुश रहिए, थैंक यू सो मच, भगवान से प्रार्थना करूँगी, थैंक यू सो मच। जब प्रगति जब कोई आपके लिए प्रेयर करता है ना तो यकीन मानिए दिल से खुशी होती है, थैंक यू सो मच, बस इसी तरह अपनी प्रार्थनाओं में हमें शामिल रखिएगा।

वैसे दोस्तों ये जो ट्रैक है ना, ये क्लासिक बॉलीवुड रोमांस का खूबसूरत रिवाइवल है। गाना सिर्फ एक लव सॉन्ग नहीं बल्कि दो दिलों के मिलने की खामोश खुशी और उनके इमोशंस का म्यूजिकल कैनवास है। प्रियंका जी आज तो इश्क की बाढ़ में फरमाइश ही बह गई, कोई शिकायत नहीं, इंजॉय कर रहे हैं इश्क से लवरेज गानों को। हैव अ रेनबो डे, रवि जोशी हमें मेरठ से लिखते हैं। थैंक यू। देखिए यही होता है खूबसूरत म्यूजिक का। आपने कहा था कि मेरा नाम शामिल हो जाता है, बस सॉन्ग रिक्वेस्ट थी, लेकिन इतने खूबसूरत गाने चल रहे हैं कि आपकी शिकायत ही आपने इग्नोर कर दी। थैंक यू सो मच रवि जोशी जी। बस इसी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अक्सर इस दुनिया में अनजाने लोग इतने खास दोस्त बन जाते हैं जिनसे दिल बस जुड़ जाता है, जैसे आपसे प्रेम गहरा हो रहा है। पापा आप ठीक हैं, आपकी दुआ ईश्वर की कृपा से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, शो खूबसूरत चल रहा है, थैंक यू सो मच डियर। इसी के साथ हमें मैसेज आया है कि जो भी मैसेज आया था ना, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, वो गाना हमने क्यों कर दिया, मुंबई से मैसेज था, तो हे वी गो।

साफ कहते हैं, क्यों डरते हैं आप? अपनी बातों को, अपने दिल के एहसास को बताइए ना। जैसे ये बता रहे हैं रोहित खेड़ा दिल्ली 9 से लिखते हैं, राम राम जी। नदी का बहता पानी अपनी ओर खींचता है, नदी का बहता पानी अपनी ओर खींचता है। आप जाते हैं, हाथ लगाते हैं, एहसास जल को छूने को आपको खुशी देता है। ठीक उसी पल आप फिर से उसे छूना चाहें, लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे? कभी नहीं, वो जल आगे बह चुका है। ठीक उसी तरह हर पल हर दिन जिंदगी का लौट कर कभी नहीं आता, हर पल चाहे जैसा हो बहता चला जाता है। इसलिए हर पल को खुशी का पल समझ उसमें डुबकी लगाते रहो, किसको पता कल हो ना हो। प्रियंका जी, जब भी आप आते हैं उस पल को खुलकर जी लेते हैं। आपकी सोच, आपकी बातें, देशभक्ति, आध्यात्मिक और ऊपर से आपका मधुर संगीत, सब कुछ हमें बहुत आनंद से सुनते हैं। रोहित खेड़ा दिल्ली 9 से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिसिएशन रोहित जी।

असल प्यार के सब रूप हैं सच्चे, ये तो बिल्कुल सही है। प्यार, इश्क, मोहब्बत छोटे से लव्स हैं, लेकिन इसके आसपास जैसे कि मैंने कहा दुनिया घूमती है। और दोस्तों, साउंड एयर में वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड हमारे कानों तक पहुँचता है और हमें म्यूज़िक सुनाई देता है। तो क्यों ना अच्छी अच्छी वाइब्रेशन को अपने कानों तक पहुँचाइए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अपनी चॉइस में बताते रहिए। जी हाँ, मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप, जहाँ पर अपने गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब हमसे शेयर करते हैं। दोस्त, मैं मैसेज नहीं ले पाऊँगी क्योंकि नेक्स्ट प्रेजेंटर राजेश आ चुके हैं आशियाना रह के, तो उनके साथ भी रहिएगा। जी हाँ, और इसी के साथ ठीक के गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। अगले सप्ताह संसद में बिल पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की समस्या के खिलाफ प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी आज परीक्षा प्रणाली में सुधार पर तीसरे दौर की वार्ता करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त। पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। श्री गोयल ने कहा, जनता को गुमराह करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा। मतदान 30 जुलाई को, चुनाव परिणाम की घोषणा 3 अगस्त को की जाएगी। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। लद्दाख के द्रास में 27वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय समारोह आज से शुरू। समारोह में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा स्वर्णिम वेश में दर्शन देंगे। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और खेलों में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनाहत का सामना मिस्र की रुकिया सलेम से होगा। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है आशियाना। और आज शनिवार के इस खास दोपहर में मैं हूँ आपके साथ, मेरा नाम है राजेश कुमार। और दोस्तों, बात हम आशियाना में आज करते हैं कुछ ऐसी जो हम सबके साथ जुड़ी हुई है। कोई भी बात जो हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से, हमारे आसपास से जुड़ी हुई है, हम उन सभी बातों को अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिंदगी के वो कौन से छोटे छोटे पल हैं जो हमारी खुशियों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा अहम है, तो सोचिए क्या होगा। तो जवाब है परिवार का साथ। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम बहुत कुछ पा लेने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन अक्सर इस भागम भाग में परिवार का साथ जो है वो छूट जाता है थोड़ा पीछे। एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग कमरों में अलग अलग स्क्रीन के साथ अपना समय बिता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आजकल की जो आधुनिक जीवन की व्यस्तता है वो हमारे रिश्तों की गर्माहट को कम कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप चाहे तो हमारे साथ अपनी बातें साझा कर सकते हैं। और हम इस विषय पर कई सारी चीज़ें लेकर, कई सारी बातें लेकर आए हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस गीत के साथ प्रोग्राम आशियाना में।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है आशियाना और मैं राजेश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस गीत के बाद। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जो ये बदलता हुआ दौर है उसमें परिवार की डोर को कैसे हम बनाएं मजबूत। इस विषय पर हमने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए। तो रिश्तों की जब हम बात करते हैं तो रिश्तों की मजबूती की शुरुआत होती है आपसी बातचीत से, संवाद से। आज कई परिवारों में बातचीत केवल ज़रूरतों तक सीमित रह गई है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को महसूस कर सकते हैं। माता पिता काम में व्यस्त हैं, बच्चे पढ़ाई और सोशल मीडिया में, जबकि बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करने के लिए किसी साथी की तलाश में रहते हैं। अगर परिवार के सभी सदस्य दिन में सिर्फ 20 या 30 मिनट बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के एक साथ बैठकर अपने दिन की बातें करें तो बहुत सारी चीज़ें सुलझेंगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत सारी गलत फहमियाँ कम होंगी, और जो हमारा आपसी भरोसा है ना, वो बढ़ेगा। कभी कभी केवल ध्यान से सुन लेना भी किसी बड़े समाधान से कम नहीं होता है। वह ज़रूरत होती है एक पहल की जो हमें करने की ज़रूरत है।

चांद का तो नहीं पता, लेकिन हाँ सूरज थोड़ा सा मध्यम होने लगता है जब बीच में बादल आ जाते हैं। तो ये धूप और छांव का जो खेल है इस वक्त चल रहा है, और बहुत से लोगों को यह मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इस मौसम में भी गर्मी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो तापमान है वो पहले की तुलना में काफ़ी ठीक हुआ है। अभी अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है दिल्ली और उसके आसपास। और ऐसे में थोड़ी उमस तो होती है गर्मी में जब आप बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी। जैसे अगर आप बाहर जा रहे हैं तो छाते का तो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि छाता न सिर्फ आपको धूप से बचाएगा बल्कि बारिश से भी बचाएगा। और पानी तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पसीना बहुत होता है इस समय, तो पानी भी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आशियाना, और इसमें हम बात कर रहे हैं आज की कैसे हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं इस बदलते दौर में। आज का दौर डिजिटल है, लेकिन रिश्तों को डिजिटल नहीं दिल से निभाने की ज़रूरत है। मोबाइल और सोशल मीडिया में दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन कई बार क्या अक्सर ऐसा

देखने को मिलता है कि अपनों से थोड़ा दूर भी कर देते हैं। इसलिए घर में नो मोबाइल फैमिली टाइम जैसी जो छोटी छोटी पहल होती है, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं ना, इससे बड़े बदलाव आ सकते हैं। हफ्ते में एक दिन, वो दिन आज का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, यानी कि वीकेंड भी हो सकता है वो दिन। तो अगर हफ्ते में एक दिन परिवार के साथ हम कोई गेम खेलें, बोर्ड गेम हो सकता है, साथ में खाना बनाएं, किसी पार्क में घूमने के लिए जाएं, या फिर कुछ पुरानी जो तस्वीरें हैं अपनी फैमिली की, अपनी फैमिली से जुड़ी हुई कोई शादी की तस्वीरें हैं या वीडियो है, तो वो भी देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, जीवन भर की खुशबू जो लिए होते हैं, और ये खूबसूरत यादें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाती है। और जब हम इन यादों में अपने आप को ढूंढते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत हमारे दिल के करीब आती हैं और हमें हमारे अपनों के साथ जोड़ने का एक मौका भी देती हैं।

बिल्कुल जी, अपने तो अपने होते हैं, जैसे आप हमारे हैं और हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इसकी आप लगातार बातें पहुंचाते भी हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो लगातार अपनी बातों से, अपने सुझावों से, अपने विचारों से हमें अवगत कराते हैं, बताते हैं कि क्या खास है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है और किन चीज़ों को और बेहतर करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपके मैसेजेस के ज़रिए, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए भी हमें मिलती है। कई बार आपसे बात करने का भी मौका मिलता है तो उस तरह से भी हमें ये सब बातें पता चलती हैं। सौरभ अनेजा का मैसेज गाज़ियाबाद से आया, इन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम को लगातार इन्जॉय करते हैं। तो दोस्त, आप इसी तरह से प्रोग्राम को इन्जॉय करते रहें, हम यही चाहेंगे। शिवम कुमार पटना बिहार से हमारे साथ जुड़े और लगातार प्रोग्राम में अपनी बातें पहुँचा रहे हैं। और हमारे एक साथी हैं, इनका नाम है रवि जोशी, मेरठ से। लिखते हैं कि आशियाना सिर्फ एक रहने की जगह नहीं बल्कि आपसी समझ, विश्वास और रिश्तों का खूबसूरत एहसास ही आशियाना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है। बिल्कुल, हमारा आशियाना ऐसा ही है। डॉली का भी कहना है कि मालूम नहीं कि अब रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी फ़ोन क्यों हो गया है, ये इन्होंने सवाल किया है और उस सवाल का जवाब देने की कोशिश हम कर रहे हैं और कुछ सवालों के तह में जाने की भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, इनका नाम है राधेश्याम शाक्य। इन्होंने कहा है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए खुली बातचीत करें, एक दूसरे को ध्यान से सुने, एक दूसरे को सम्मान दें, ये इनका कहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का अपनी प्यारी बातें जो है हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर।

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

फिल्म हम दिल दे चुके सनम से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में ये बहुत ही मधुर सा गीत आपने सुना। और कुछ इसी तरह से जैसे इसमें एक कहा गया ना कि आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, तो गुस्ताखियां अगर छोटे करें तो बड़ों को माफ कर देना चाहिए। और किसी चीज को बहुत लंबे समय तक दिल में रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें ही थोड़ा अंदर से बुरा लगता है और दूसरा व्यक्ति जिसके प्रति हम ये चीज़ कर रहे हैं उसको भी बुरा लगता है। तो बुरा क्यों लगने देना, बस छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन्हें आपसी बातचीत से सुलझा लेना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना, ये एक बेहतर तरीका, बेहतर विकल्प है जब हम बात करते हैं अपने परिवार की। दोस्तों, परिवार केवल खुशियाँ बांटने का नाम नहीं है बल्कि जिम्मेदारियों को साझा करने का भी नाम है। आज के समय में घर के काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होने चाहिए, खासकर जब हम बात करते हैं काम की। तो सिर्फ महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है, कई बार देखा जाता है कि बहुत से काम ऐसे हैं जो लगता है कि वो ही करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जब बच्चे छोटे छोटे कामों में हाथ बटाते हैं, पिता रसोई में सहयोग करते हैं और इसके अलावा जो हर सदस्य घर के हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब परिवार में समानता और अपनापन दोनों बढ़ते हैं। एक काम, चाहे कोई भी काम लीजिए, रोटी बनाना हो या फिर सब्जी बनाना हो, घर के छोटे मोटे साफ सफाई के काम हो, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति उस चीज़ के लिए निर्धारित है, कोई भी व्यक्ति लगकर कर सकता है। और अक्सर देखा यह जाता है कि खाली भी बैठे हुए हैं परिवार के कुछ लोग तो भी उन कामों में नहीं लगे हैं और एक ही व्यक्ति लगातार किए जा रहा है। तो ये कोई भी व्यक्ति अगर अकेला कोई भी काम अकेला ही करेगा तो उसको लगेगा कि मैं ही क्यों, ये सवाल आना लाजमी है। और इन सवालों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जब हम बात परिवार की करते हैं ना तो परिवार में एक सहयोग का भाव होता है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे केवल काम आसान नहीं होता है बल्कि दिलों की जो दूरी होती है वो भी कम होती जाती है।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है आशियाना, मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना उसमें एक लाइन थी कि जो कल का इंतजार करे जीना दुश्वार करे। तो अच्छे कार्यों के लिए कल का इंतजार क्यों करना, आज से ही शुरू कर देना सबसे बढ़िया विकल्प है। और अगर हम बात करते हैं अपने परिवार की, तो हर परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्तों की असली परीक्षा इस बात से होती है कि हम उन मतभेदों को कैसे संभालते हैं जिससे मन भेद ना हो। किसी बहस में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते को बचाना। कई बार थोड़ा धैर्य रखना और बड़े अगर कुछ कहें तो चुपचाप सुन लेना भी बहुत असरदार होता है। गुस्से में बोले गए शब्द जो हैं वो वर्षों तक दर्द दे सकते हैं, जबकि समय पर बोला गया एक छोटा सा सॉरी रिश्तों में नई शुरुआत ला सकता है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम आशियाना में। मैं हूँ आपके साथ राजेश। और दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अपने परिवार को एकजुट रखा जाए, कैसे ये जो बदलते दौर में हम अपने परिवार की खुशियों को और बढ़ा सकते हैं, कैसे इन खुशियों को कायम रख सकते हैं। तो अक्सर जो हम अपने आसपास नज़र डालें तो कुछ चीज़ें हमें बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है, और उनमें से एक है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच का अंतर, जो एक आज बड़ी चुनौती बन चुका है। हम एक दूसरे की गमियां ही निकालेंगे तो फिर मामला और उलझता जाएगा, ये जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर लगता है। लेकिन अगर कुछ हम एफर्ट्स करें तो उससे कई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर युवा बुजुर्गों के अनुभवों से सीखें और बुजुर्ग नई पीढ़ी की सोच को समझने का प्रयास करें तो ये अंतर एक खूबसूरत सामंजस्य में बदल सकता है। परिवार में कहानियां सुनाने, पारिवारिक परंपराओं को साझा करने और बच्चों को अपने संस्कारों से जोड़ने की परंपरा को सहेजना बहुत जरूरी है, और यही संस्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी विरासत बनेंगे और उन्हें आगे लेकर जाएंगे।

बिल्कुल दोस्त, आपकी और हम भी ऐसे ही आते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो आपको बताते चलें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर, और उसमें आज का विषय है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विनय गोयल जो कि सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और उनसे बातचीत आप सुन पाएंगे। इसके बाद 4:02 से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है अल्फाजन लेट्स डिटॉक्स। इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं होऊंगा राजेश, और 5 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में तमाम जो शहर की गतिविधियां हैं, तमाम हलचलें हैं, उन सभी को लेकर आप तक पहुंचेंगी दीपांश अरोड़ा। और उस प्रोग्राम में आप ज़रूर सुनिएगा बहुत सारी बातें जो हम करने वाले हैं। और फिलहाल बात करते हैं अपने इस प्रोग्राम की जिसका नाम है आशियाना। और अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन कम समय ज़रूर है, लेकिन अगर हम बातें ध्यान से करें और समय पर पहल करें तो कितना भी समय हो हम उसका सदुपयोग कर ही सकते हैं। और जब हम पूरे इस प्रोग्राम की बात करें तो इसका जो एक कहते हैं ना कि निष्कर्ष अगर हम देखें तो हर दिन अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय निकालना, बिना किसी स्क्रीन के एक दूसरे की बातें सुनना, छोटी छोटी खुशियों के साथ मनाना और हर रिश्ते को सम्मान, भरोसे और प्रेम से सींचना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी से हमारे रिश्ते बनते हैं और भी मजबूत। तो चलिए इसी पे आपके साथ मैं राजेश आपसे अनुमति लेता हूँ। चलते चलते ये गीत

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। जब हमारा मस्तिष्क और नसें सही ढंग से काम करती हैं, तभी हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी मेजबान शिल्पा गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे पूरे शरीर के संचालन से जुड़ा है। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यानी तांत्रिका संबंधी विकार। आज हम जानेंगे न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण, लक्षण, बचाव और आधुनिक उपचार के बारे में विस्तार से अपने विशेषज्ञ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद शिल्पा जी इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस क्या होती है और कौन कौन सी होती हैं।
3: देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, फिर जो उससे जो नसें निकलती हैं जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं वो नर्व्स होती हैं, वो सप्लाई करती हैं मसल्स को। तो ये स्ट्रक्चर मिलके नर्वस सिस्टम बनाता है। तो जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होंगी, जैसे ब्रेन में अगर तो इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई या ब्लीडिंग हो गया या उसमें क्लॉट बन गया या हेरिडिटरी कोई बीमारी है, तो उससे रिलेटेड ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होंगी। अगर जो स्पाइनल कॉर्ड में हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड की सबसे कॉमन तो होती है एक्सीडेंट में, जो हम सुनते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी हो गया और पैराप्लेजी, तो पैराप्लेजिया हो जाता है या क्वाड्रिप्लेजिया, मतलब चारों हाथ पैरों में लकवा हो जाता है। नर्व्स की जो बीमारी होती है जो हम कॉमनली सुनते हैं कि न्यूरोपैथी हो गया, तो जो नर्व का जब इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। और मसल्स की जो बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मायोपैथी, जनरली उसमें होता है। न्यूरोपैथी में होता है कि हाथ पैर में आपको झंझनाहट हो रही है, हाथ पैरों में वीकनेस आ रही है, जो जनरली डिस्टली मतलब पंजे और हाथों से शुरू होगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। मसल में उल्टा होता है, मसल में होता है कि आपको बैठ के खड़े होने में दिक्कत हो रही है, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है। कुछ होती है जो मसल और नर्व के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। वो बीमारी ऐसी होती है जैसे मायसिनिया ग्रेविस, तो आप कोई रिपीटेडली एक्टिव से आप जैसे एक बार तो खड़े हो गए बैठ के, लेकिन जब पांचवीं बार खड़े होंगे तो आपको थोड़ा वीकनेस फील होगा। जब आप खाना खाएंगे, लगातार खाना खा रहे हैं, पहली रोटी खा ली, दूसरी तीसरी में दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो रिपीटेड एक्टिविटी के बाद आपकी मसल वीक हो जाती है। ये होता है क्लासिकल मायस्थीनिया, जो कि नर्व मसल के जंक्शन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है।
2: तो इसका मेन रीजन क्या है, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं किस वजह से हो जाती हैं, क्या कारण है?
3: इसको हम एक तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे हम ब्रेन से शुरू करें तो ब्रेन में जो कॉमन चीज होती है वो क्या होती है, लकवा हो सकता है, जो हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं या पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। तो पैरालिसिस दो टाइप का होता है।

0: तो होता है कि ब्रेन का बहाव जो है वहां पे किसी कोई ब्लड वेसल जो रुक जाए तो उससे उस एरिया में खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर जो राइट साइड का ब्रेन अफेक्टेड है तो सिम्टम जो है वो लेफ्ट साइड में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हेमिप्लेजिया हो गया, तो हाथ या पैर उठना बंद हो जाएगा। अगर जो ब्रेन में हेमरेज हो गया है तो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में हेमरेज हुआ है। तो हम जो तीन चार चीजें होती हैं जिससे हम बोलते हैं कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं स्ट्रोक के, सबसे पहले तो अगर जो आपका हाथ अगर ऊपर उठ रहा है और नीचे उठाने में दिक्कत हो रही है, आवाज में अगर जो दिक्कत हो रही है, आपकी चाल में अचानक लड़खड़ाहट होने लगी है, सिर में बहुत तेज भयंकर ऐसा हेडेक हुआ है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, ये ऐसे सिम्टम आने लगे तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको लकवा हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, किसी को राइट साइड में भी चेस्ट पेन होता है, हार्ट जबकि लेफ्ट साइड में होता है, तो उसके मन में दिमाग में आता है कि मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, वो एकदम भाग के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन मैं आप जो कुछ सिम्टम बता रहा हूँ, किसी का एक हाथ चलना अचानक बंद हो गया, पैर चलना या पूरा एक साइड का हाथ का लकवा हो गया, लोग पहले क्या सोचते हैं ये सो गया होगा, तो मालिश करते रहते हैं या लोकल डॉक्टर से कई बार बात कर लेते हैं, घरेलू इलाज करते हैं, वो प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि ऐसा मानना है कि अगर जो ब्रेक कोई ब्लड प्रेशर बंद हो गया, इसमें क्लॉट आ गया है और आप विद इन 3 आवर्स अगर जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो हमें एक ड्रग दी होती है जिसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर, वो दवा लगाने से वो क्लॉट को डिसॉल्व करने से 100% रिकवरी हो सकती है। तो ये एक बार एक एम्स की स्टडी में हमने देखा था कि क्यों लोग लेट पहुंचते हैं, जब हम बोल रहे हैं 3 घंटे में आइए, तो सबसे पहला तो कारण था कि मरीज ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि लकवा है। हार्ट अटैक को तो एकदम आइडेंटिफाई करे जबकि गलत डायरेक्शन में, लेकिन ब्रेन अटैक को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो सोचा है किसी कारण से होगा। दूसरा कारण था कि जो सबसे पहले जिस कॉन्टेक्ट लोकल फिजिशियन या जिससे बात करी उनका ठीक हो जाएगा, वो उस अब तो खैर बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, पुरानी स्टडी है, तो वो सेकेंड फैक्टर था। तीसरा मेजर फैक्टर था ट्रांसपोर्ट, वो बड़े हॉस्पिटल पहुंचने के चक्कर में 2 घंटे ट्रैफिक में रहे, तो जो प्रीशियस टाइम हमारा 3 घंटे का था वो वेस्ट हो गया। तो आई वुड से कि आप सबसे पहले जो रीजनेबली अच्छा हॉस्पिटल है आपके वहां जाइए और डॉक्टर बताइए कि हमको लकवा हो गया, फोन से बता सकते हैं तो पहले ही बता दीजिए, जिससे वो डॉक्टर सीटी स्कैन या एमआरआई करने के लिए तैयार रहेंगे, और सीटी स्कैन में जैसे ही या एमआरआई भी पता चलेगा कि आपको ये क्लॉट वाला लकवा है तो आपकी दवा वहीं शुरू हो जाएगी, और वहीं शुरू हो जाएगी तो विद इन 3 अब तो आजकल 4.5 घंटे तक भी हम दवा लगाते हैं तो वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा, तो आपका लकवा पूरा ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते
1: हैं। तो कुछ ऐसा भी है कि वो घर पे कर सकते हो कि मतलब इमीडिएटली घर पे क्या ट्रीटमेंट कुछ दे सकते हैं कि इतना मील वाइज हॉस्पिटल पहुंचे?
0: नहीं, ये सवाल आपका ऐसा है कि जो लोग क्या फर्स्ट एड कर लें
1: एग्जैक्टली,
0: लेकिन क्या है कि ब्रेन में हेमरेज हुआ है या क्लॉट बन गया ये हमको पता नहीं होता। अगर जो हम वो दवा दे दें जो क्लॉट में काम करती है तो हेमरेज बढ़ा सकती है, तो ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले एक सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं जिससे एकदम पता चल जाता है कि ब्रेन में हेमरेज हो गया या क्लॉट हो गया है, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसका इलाज आगे ले जाएंगे। तो एक तो बात करी हमने स्ट्रोक की, दूसरा होता है एपिलेप्सी कि मिर्गी के दौरे, तो मिर्गी भी ब्रेन से आती है
1: जी।
0: तो मिर्गी लोग समझते हैं कि सिर्फ बेहोश होकर गिरना ही मिर्गी है, ऐसा नहीं है। मिर्गी बहुत तरह की होती है, एक होती है जो क्लासिकली हम जानते हैं कि चारों हाथ पर अकड़ने लगते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आने लगता है, गर्दन एक तरफ टेढ़ी होती है, झटके मारता है जो करीब 30 सेकंड से 2 मिनट तक होता है, फिर धीरे धीरे आदमी बेहोश हो जाता है, लंबी लंबी सांस लेता है, तो हम समझ जाते हैं इनको मिर्गी के दौरे पड़े। कभी कभी आदमी बेहोश नहीं होता है, सिर्फ हाथ में झटका आ रहा है लगातार, वो भी मिर्गी हो सकती है। कभी हो सकता है एक हाथ या एक पैर में सुनपन आ रहा है और चला जा रहा है, सुनपन आ रहा है और चला जा रहा है, वो भी मिर्गी हो सकती है। कई बार अचानक चेंज इन बिहेवियर जिसको हम साइकिक सीजर बोलते हैं, वो भी मिर्गी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, इवन मिर्गी तो एज सिंपल एज ऐसी हो सकती है कि हालांकि लोग बड़े कंफ्यूज रहेंगे कि अगर आपके पेट में ऐसा लग रहा है कि अचानक घबराहट सी हो रही है पेट में या अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आदमी फिर बेहोश जैसा हो रहा है, क्योंकि पेट में अच्छा नहीं लग रहा तो हर आदमी को होता है
1: जी।
0: लेकिन उसके बाद आदमी बेहोश नहीं हुआ था या कंफ्यूज नहीं हुआ था, तो वो भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। तीसरा होता है इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन जो हम कॉमनली जानते हैं, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाता है या वायरल इंसेफेलाइटिस हो जाता है। अब तीसरी जो नई चीज पिछले 10 साल में हम ज्यादा आइडेंटिफाई करने लगे वो ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। वो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली कोई भी बॉडी में अगर जो केमिकल या सब्सटेंस जाएगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज का मतलब होता है हमारे ब्रेन के कॉमन सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है जो नहीं बननी चाहिए, और वो उस ऑर्गन को डैमेज करने लगती है जो कि शरीर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, और जो ब्रेन में होगी तो उसको हम ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो ये भी एक तरह की बीमारी हो सकती है। ट्यूमर एक और बात है, जैसे बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है ऐसे ब्रेन में भी कहीं भी ट्यूमर हो सकता है, वो ब्रेन की झिल्ली की वजह से हो सकता है, ब्रेन के मटेरियल की वजह से हो सकता है। तो कुछ ट्यूमर तो ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं इतने खतरनाक नहीं है, जैसे मेनिन्जियोमा होता है वो जनरली स्लोली बढ़ते हैं, कुछ परसेंट वो मेलिग्नेंट हो सकते हैं, मतलब बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक होता है जो

0: जिसको हम बोलते हैं, जो हम ग्लायोमा के नाम से जानते हैं, वो जो हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं उस इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। तो जो ग्लायोमा ट्यूमर होता है उसमें ग्रेड होता है। जब ग्रेड वन होता है तो हम मान के चलते हैं कि आदमी की 10 साल सर्वाइवल तो अच्छा होगा। ग्रेड टू और ग्रेड थ्री होते तो मानते हैं 5 से 8 साल या 10 साल की सर्वाइवल अच्छा होगा। एक होता है जो ग्रेड फोर होता है। ग्रेड फोर ऐसा है कि एक तो वो दिखने में ऐसा होता है कि एक जगह नहीं होता, वो जैसे पानी बह जाता है उस तरह से ब्रेन के कैंसर वाले सेल ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वो बहुत रैपिडली बढ़ता है। और कई बार हमने देखा कि जब तक हम उसके पहले सिम्टम से, उसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, तो कई बार एक दो दौरे पड़ते हैं लोग इलाज कराने नहीं जाते। इसलिए बोलते कभी भी दौरा पड़े तो ब्रेन का एक सीटी स्कैन हमारे जरूर होना चाहिए, उससे एकदम पता चल जाएगा। तो प्रीशियस टाइम 2 महीने निकाल दिए उन्होंने कि दूसरा दौरा नहीं पड़ा। दूसरा होता है परसिस्टेंट सिग्मा हेडेक रह रहा है। तीसरा डिपेंड करता है कहां से शुरू होता है, चेंज इन बिहेवियर। पहले पिछले हफ्ते ठीक थे आप, अब आपका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। कभी भी अचानक याददाश्त आपकी कमजोर होने लगे तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, जाके मेरे को ऐसा लग रहा है तो आप देखिए और बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो एक ट्यूमर हो गया। ट्रॉमा एक ऐसी चीज है जो सबसे कॉमन होता है रोड साइड एक्सीडेंट से। और हम जानते हैं कि जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं, ऐसी स्थिति हो जाए कि आप गिर जाएं और आपका सिर किसी चीज से टकरा जाए तो ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, ब्रेन की हड्डी टूट सकती है, वो हड्डी टूट के ब्रेन के अंदर घुस सकती है। तो कई बार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक उससे होता है। उसमें भी ये है कि अगर जो आप समय पर पहुंच जाएं तो अगर जो ऑपरेशन सही टाइम पे हो तो रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखा उसी वक्त डैमेज इतना ज्यादा होता है, वो एक सेकंड में आप मतलब 60 की स्पीड से दीवार से टकरा जाएं तो सोचिए आपका सिर कितनी बुरी तरह टकराएगा। कुछ ऐसी स्थिति होती है। तो सबसे पहले श्रोताओं को जानना चाहिए कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। लोग बोलते हैं कि मैं तो 10 साल से नहीं पहना, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं हो सकता है, सबको पहनना चाहिए। और जब तक आप, और उसका दूसरा बात है जो मैंने देखा है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स वीडियो बनाते हैं, हेलमेट पहनते हैं लेकिन उसको हुक नहीं लगाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमें प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। अगर कभी भी हम बाइक या कुछ भी ऐसे राइड करें तो हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर, बातें हम और भी करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर। हमारे पास एक मैसेज है, ये है, लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई एम 26 इयर्स ओल्ड। आई फॉरगॉट मैनी थिंग्स, इवन स्मॉल थिंग्स विच वर टोल्ड अ मिनट एगो। आई फॉरगेट मैनी थिंग्स लाइक स्विचिंग ऑफ व्हीकल आफ्टर पार्किंग, टर्निंग ऑफ गैस स्टोव एक्सेट्रा। इज इट सीरियस? वॉट कैन बी डन?
1: ये जो सागर 26 साल के सागर साहब ने जो सवाल पूछा है, ये जनता का सवाल है ये तो, क्योंकि ये बड़ा कॉमन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हर आदमी मल्टीटास्किंग कर रहा है। आदमी मोटरसाइकिल पे भी चला रहा है तो मोबाइल भी कान में लगा हुआ है और दूसरे काम भी कर रहा है। तो जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपकी, जैसे मैं उसको इस तरह समझाता हूँ, हमारी रैम होती है, क्या 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, उसकी एक कैपेसिटी आप कितना काम कर सकते हो। लेकिन हम उसके ऊपर 20 ऐप खोल के बैठ गए, जब हम 20 ऐप खोल के बैठ जाएंगे तो रैम स्लो हो जाएगी। ये कुछ कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। जब हम मल्टीटास्क, एक तरफ तो आप सोच रहे हैं ऑफिस के बारे में,
0: काम कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ
1: काम
0: कर रहे हैं,
1: कुछ ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने टारगेट दे रखा है वो भी चल रहा है, घर में वाइफ ने एजेंडा दे रखा
0: है, उसके बाद क्या करना है,
1: उसके बाद क्या करना है। तो जब आप मल्टीपल चीजें सोच रहे हो तो उसके बीच में कोई आपको ये बता के चला गया कि ये फोन नंबर पर बात कर लेना, तो आप 2 मिनट बाद सोचेंगे ये कौन सा फोन नंबर था। तो ये हमारी मेमोरी की दिक्कत नहीं है, ये हमारे वर्किंग स्टाइल की दिक्कत है। तो इनको, सागर साहब को भी ये कहूंगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा उसके ऊपर कंसंट्रेशन करें। जब भी करेंगे जो गाड़ी जो ऑफ करना भूल गए, क्योंकि आप जब उतरे तो आपको सोचते हुए उतर गए, तो ध्यान नहीं रहेगा गाड़ी की ऑफ करनी थी। तो अटेंशन उस टाइम कितना आपका है उसकी वजह से। उसके लिए मैं कुछ हद तक आज के एनवायरमेंट को भी मैं ब्लेम करता हूँ। वो भी मैंने एक रेडियो प्रोग्राम में और भी कहीं कहा था कि आज से पहले हम टीवी देखते थे, आधा घंटे का प्रोग्राम देखते थे, सीरियल देखते थे, पौन घंटे का देखते थे। आज क्या देखते हैं? 15 सेकंड की रील। कोई प्रोग्राम अगर जो 2 मिनट का अगर जो हो तो हम देखते नहीं, उसको फॉरवर्ड करते। तो हमारा टेंशन स्पान इतना छोटा होता जा रहा है। जो चाहिए हमको फास्ट चाहिए, अभी चाहिए, 1 सेकंड में चाहिए। कोई बात भी कर रहा है तो लंबी बात करने वाला कोई लाइक नहीं कर रहा है। तो जब आप सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट करे जा रहे हैं तो वो आपके माइंड में घुस ही नहीं पा रही है वो बात। यही बात हो रहा है कि वो रजिस्टर नहीं हो रही है। आपके हियरिंग ठीक है, आपने बात सुनी भी, आपको याद है, लेकिन क्या सुनी वो, क्योंकि रजिस्टर नहीं हुई वो। तो वो जब तक रजिस्टर नहीं होगी तो मेमोरी में नहीं जाएगी वो, तो आपको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई सीरियस बात नहीं है, बड़ी आम कंप्लेन है। तो पहले तो अपने आप को थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लें, मन को शांत रखें, इंपॉर्टेंट चीजों पे थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा दें, जिससे कि वो आप चीजें भूल ना जाए और आपके ध्यान में ध्यान रहेगा।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, प्रणाम मैम, प्रणाम सर, माय फादर हैज इस्केमिक स्ट्रोक ऑन 23rd Jan 2026। नाउ ही हैज लिटिल बिट फ्रोजन लेफ्ट शोल्डर, स्लो वॉकिंग इश्यूज, व्हाट कैन बी डन, प्लीज टेल।
1: जैसे जनवरी में, मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी कि लकवा, मतलब एक तरफ जो है एक हाथ या पैर नहीं चलता है। अभी डिपेंड करता है कितना सीवियर पावर, जैसे इनकी बातों से लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा डेफिसिट रहा होगा। जब भी लकवा हो जाता है तो 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो जिस कारण से लकवा हुआ उसके लिए इलाज करें। इस्केमिक स्ट्रोक में जनरली हम खून पतला करने की दवाई देते हैं, तो वो रेगुलर लेनी है। अब ये क्या हो रहा है, ये उस लकवे का कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हाथ चल नहीं रहा था और एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं होगी तो कोई भी जॉइंट है वो फ्रीज हो जाएगा, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। यही हाथ में होता है, यही पैर में होता है। पैर में एक और चीज होती है कि पैर में स्टिफनेस बहुत आ जाती है, हाथ में भी स्टिफनेस बहुत आ जाती है। अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए कि क्या इस स्टिफनेस को कम करने के लिए दवाई इंजेक्शन लगा सकते हैं। एक बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन आता है, जो मसल बहुत स्टिफ होती है उसको लगा के उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, तो आदमी का चलना और हाथ का पोस्चर बेटर हो जाता है।
0: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो,
2: हाँ रघुवीर जी बोल रहे हैं उत्तराखंड।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, बताइए आपका क्या प्रश्न है।
2: जैसे एक्सरसाइज करते समय गर्दन को हल्का सा मोड़ते हैं ना, तो कट की आवाज आती है गर्दन को मोड़ते समय। दूसरी बात यह है कि मेरा आंख का ऑपरेशन हो चुका है
1: जी,
2: तो क्या वो नस से, दिमाग के नस से, क्या आंख से, आंख के नस से कुछ इफेक्ट पड़ा होगा?
1: नहीं, आंख का किस चीज का ऑपरेशन हुआ आपका?
2: आंख का ऑपरेशन कॉन्टैक्ट
1: कैटरेक्ट का।

0: देखिए कैटरेक्ट तो जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक हो जाता है, उसको इंस्ट्रूमेंट से निकाल के दूसरा लेंस डालते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो इसमें 99.9% कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है। और मैंने जो आपने सवाल पूछा उससे मुझे याद आ रहा है कि एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, 2 दिन बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। उसका कारण यह था कि क्योंकि ऑपरेशन करने जाए उनको एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। ऑपरेशन हुआ तब तक तो सब कुछ ठीक था, उस टेंशन में उनका बीपी बढ़ गया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये आंख की वजह से नहीं हुआ, ऑपरेशन की वजह से नहीं हुआ। तो आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या और दूसरी स्थिति को आप कंट्रोल कर लें। रही बात गर्दन में कटकट की, तो कटकट जो मसल्स और टेंडन जो बोन से टकराते हैं वो कटकट की आवाज आती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेना है। लेकिन अगर जो आवाज आती है तो उसको बार बार करके उस हिस्से को आप मतलब उसको फ्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक्सरसाइज करिए और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से समझ लीजिए कि कहीं एक्सरसाइज आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात श्रोताओं को बताऊं, क्योंकि इन साहब ने जो सवाल पूछा उससे रिलेटेड ही है, कुछ लोगों की आदत होती है गर्दन में झटका मारने की, ऐसे हाथ से पकड़ गर्दन एक तरफ मोड़ते हैं फिर दूसरी तरफ मोड़ते हैं या रोटेट करते हैं। ये कभी भी करना नहीं चाहिए। उसका कारण ये है, स्पेशली जब बाल कटवाने जाते हैं तो जो बार-बार लोग होते हैं उस सिर के मालिश के साथ साथ गर्दन में झटका लगाते हैं, वो अच्छा लगता है जिसको लगा रहे हैं। लेकिन उसका जो सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन मैंने देखा है कि हमारे गर्दन में दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी 2 नसें होती हैं, 4 नसें होती हैं, उनमें से 1 नस कभी कभी फट जाती है उसकी वजह से। और कभी कभी इमीडिएट लगवा नहीं होता है, वो फट जाती है, उसमें जब थ्रोम्बोस बनता है अगले 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते में फिर जाके लगवा होता है। तो ऐसी बातों को अवॉइड करना चाहिए और ये इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एक और बात, मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ बच्चे जो है कान में मोबाइल लगा के गर्दन और कंधा मोड़ के और मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंस बताता हूँ जिससे शायद हमारे श्रोतागण समझ जाएंगे ये कितना सीरियस हो सकता है। एक यंग लड़का था, वो अपने किसी परिवार वाले से रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक फोन पे रात में लेटे लेटे ऐसे गर्दन मोड़ के और कंधे पे मोबाइल रख के उसने बात करी और सो गया। फिर सुबह जब उठा तो उसको लेफ्ट साइड में पूरा लकवा हो गया था। क्यों? कि जब वो इस पोस्चर में रहा तो उस मोबाइल की पोस्चर की वजह से उसकी राइट साइड की नस दब गई, जो उसको उस टाइम महसूस नहीं हुई, और वो हल्की सी उसमें क्रैक आ गया, उसमें क्लॉट बन गया रात में और सुबह लकवा हो गया। तो ये पोस्चर भी कई बार कितना खतरनाक हो सकता है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: जी, आपने स्ट्रोक की बात करी थी, तो स्ट्रोक क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं या इंडिकेटर्स क्या हैं?
0: स्ट्रोक की हमने बात करी थी, जैसे हमने बताया कि स्ट्रोक 2 तरीके से हो सकता है। एक तो या तो ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो किस हिस्से में ब्लड सप्लाई बने उससे डिपेंड करेगा। तो उसके या हुआ दूसरा कि वो नस फट गई, जो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से नस फट गई। ऐसी स्थिति में 4-5 चीजें को सिम्टम जो होते हैं, पहला होता है कि आपको एक राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हाथ या पैर कम चलने लगे अचानक। दूसरा होता है कि आपकी आवाज या तो बंद हो जाए या लड़खड़ा जाए या आपको लगे आवाज ठीक नहीं है। तीसरा होता है कि जब आप चलते हैं तो आपका चलने का बैलेंस खराब होने लगे अचानक। तो आपको सोचना चाहिए क्या ये लकवा है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि अगर ऐसा आपको डाउट होता है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात करी कि विदिन 3 आवर्स आप पहुंच जाएंगे तो चांसेस है कि उसको ठीक करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
1: कई बार होता है कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, हम सोचते हैं हाँ ऐसे ही हो रहा होगा, हम इतना ध्यान नहीं देते।
0: यही एक प्रॉब्लम है, मैंने जैसे कि पहले बताया प्रोग्राम में कि राइट साइड में चेस्ट पेन होगा तो हम सोचते हैं हार्ट अटैक,
1: लेकिन कई बार लेफ्ट में भी होता है या वैसे भी होता है, हम सोचते हैं अच्छा गैस का हो रहा होगा।
0: जी जी,
1: तो हम उसमें पानी लेने लगेंगे, कुछ लेने लगेंगे, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हार्ट के में भी प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकता है।
0: उसमें सबसे इम्पोर्टेंट
1: भी कुछ इंडिकेटर्स हैं,
0: उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एज है। अगर जो 25 साल के यंग, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 25 साल में हार्ट अटैक नहीं होता है, पर यंग एज में अगर जो ऐसा सिम्टम हो रहा है तो शायद चांसेस हार्ट अटैक के कम होंगे। लेकिन उम्र दराज अगर जो किसी को हो रहा है तो सबसे सावधान है कि अस्पताल नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एक ECG कर लें, जो कि बता देगा कि मेजर हार्ट अटैक तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले ECG में नहीं दिखता है, तो लेकिन वो डॉक्टर देख के समझ जाएगा कि ये सिम्टम ठीक नहीं लग रहा है, तो उससे बचाव हो जाएगा।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हाँ जी मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी मैम, मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ मैम।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका राजकुमार जी?
2: जी मैम, मेरा भांजा उम्र उसकी 30 वर्ष है, और अभी आज तत्काल घटना, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो अचानक जो है जैसे कहीं पे जाएगा तो इसको एकदम अचेतन अवस्था में आ जाएगा, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या नाम है, मतलब कुछ भी नहीं बता पाया, कहीं भी चला जाएगा मैम। घर वाले पूरा खोजते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो 24 घंटे के बाद पता चला 2 दिन बाद वो कहीं पे, जब उसको वो चेतन अवस्था में आता है तो बताता है कि हाँ मेरा ये मेरा घर यहाँ पर है, मेरे पास

0: लड़का का नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे घर पे कॉल कर दीजिए, बता दीजिए। सब लोग पहुंचते हैं, उसको वहाँ से रिसीव करके ले आते हैं। तो मैम हमें कहाँ दिखाना चाहिए, क्या दिक्कत है?
1: तो उनकी मानसिक स्थिति तो वैसे ठीक है ना?
0: जी मानसिक स्थिति सही है सर, मानसिक स्थिति ठीक है, पूरा नॉर्मल आदमियों की तरह व्यवहार करते हैं, खाना पीना मतलब व्यवसाय हर चीजें करते हैं। लेकिन ऐसी घटना जो सर बता रहा हूँ ये 5-6 दफा हो चुकी है, उम्र 30 साल है।
1: देखिए उम्र कितनी उनकी?
0: 30 वर्ष।
1: देखिए आपकी बातों से लग रहा है इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जो हम समझते हैं ना। तो मिर्गी के दौरे में, एक तो मिर्गी का दौरा ऐसा होता है जिसमें आदमी के हाथ पे रकड़ जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आता है और आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, और 2 से 5 मिनट में होश आ जाता है। कई बार क्या होता है, ये मिर्गी के दौरे ब्रेन में लगातार चलते हैं। जब ये मिर्गी के दौरे पर लगातार चलते हैं तो जब थोड़ी देर बाद होश आता है, 10-15 मिनट आधा घंटे बाद, तो उसको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि वो मिर्गी के इतने दूर होने से एक तरह से ब्रेन का फंक्शन रुक जाता है। तो वो कुछ टाइम तक याद नहीं कर पाएगा मैं कहाँ हूँ, कहाँ आया था, क्या हुआ था। तो लोग जवाब पूछेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये तो जो है कुछ गड़बड़ाती है, सही जवाब नहीं दे रहा, तो उसको मिसट्रीट भी करते हैं कई बार। लेकिन थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसको याद आ जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरा घर ये है, मेरा एड्रेस है, जैसा कि आपके बेटे के साथ होता है। तो आप किसी भी अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, या अगर हो सके तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और उनको ये सवाल भी पूछ लीजिए कि रेडियो पर प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने बताया था कि क्या इसको मिर्गी के दौरे तो नहीं है, तो वो उसकी जांच करके उसका जरूर इलाज कर सकते हैं हम।
2: सर मिर्गी से लेके काफी मिथ्स भी हैं, और इमीडिएटली हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए इसके बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कुछ गीत ऐसे होते हैं हम जब भी सुनते हैं मन को सुकून सा महसूस होता है। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं तांत्रिका संबंधी विकार पर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे मिर्गी के दौरों पर, तो उससे जुड़े मिथ्स भी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, सर आई एम विशाल सिंह, मुझे ब्रेन ट्यूमर ग्लियोमा हुआ था, सर्जरी के बाद 10 कैमो हुए हैं, MRI में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं शो करता, बट मेरा दौरा आना कम नहीं हुआ। सर मेरा लाइफस्टाइल ठीक है, आगे कैसे करना है प्लीज गाइड करें।
2: देखिए, ग्लियोमा के हमने बारे में भी थोड़ी सी बात भी करी थी, आपकी बातों से लग रहा है कि इनको ग्लियोमा का सर्जरी अच्छा हो गया है, कीमोथेरेपी जो हम स्टैंडर्ड देते हैं वो भी मिल गया है और MRI में कोई चेंजेस अब नहीं है, तो ये अच्छी बात है। रही बात कि इनको दौरे पड़ रहे हैं, ब्रेन में कोई भी नुक्स पड़ जाए वो ग्लियोमा टिश्यू की वजह से हो सकता है, ऑपरेशन के स्कार की वजह से हो सकता है, चोट की वजह से हो सकता है, तो दौरे आना जो है वो एक अलग बात है। तो इनसे आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने डॉक्टर को जाके बताएं कि आपको दौरे आए तो आपकी दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। कभी कभी आपकी दवा की मात्रा कम होने की वजह से दौरे आ सकते हैं, या एक या दो या तीन दवा भी देनी पड़ सकती है, तो इसमें इतनी चिंता की बात मुझे अभी नहीं लग रही है। अगर जो आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो आपकी दवा की मात्रा बढ़ाकर या जरूर पड़ने पर एक या दो और दवा ऐड कर आपके दौरों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी ऐसा कभी ऐसी स्थिति होती है कि चार दवा देने के बावजूद बहुत दौरे पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यूरोसर्जन दोबारा सोचते हैं कि जिस हिस्से से दौरे पड़ रहे हैं तो EEG करके या वीडियो EEG करके उस हिस्से को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कहां से दौरे पड़ रहे हैं, तो उस टिश्यू को भी निकाल के हम ऑपरेशन करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये पहले तो मुझे लगता है हमको दवा की मात्रा बढ़ा के ही एक बार ट्राई करना पड़ेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार गुप्ता मैम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, रघुवीर सिंह ठाकुर
1: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न ये है कि जैसे नींद में झटके आते हैं ना किसी किसी में, जैसे हमारी फैमिली का भी है, तो जैसे एकदम सोते जैसे नींद आ जाती है तो हाथ एकदम झटका जैसे करंट लग गया हो, तो कभी कभी होता था सर, ये कैसे क्यों होता होगा सर, सब बताएंगे डॉक्टर
2: जी। देखिए, नींद में जनरली या तो छोटे बच्चों में ऐसा फिनोमेना ज्यादा होता है कि नींद में झटके आते हैं, जब आप स्ट्रेसफुल स्लीप होगी आपकी तो ऐसे झटके आ सकते हैं। तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन, कि आप जो है जब भी सोने जाए तो आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि लाइट कम हो या अंधेरा हो, रूम का टेम्परेचर ऐसा एम्बियंट हो कि आपको ठंड ना लगे या सर्दी ना लगे, आप एडिक्वेट कपड़े पहन के सो रहे हैं, पोस्चर आपका ठीक हो, बिस्तर नीट एंड क्लीन हो, तो ये स्लीप हाइजीन जब भी आपका अच्छा होगा तो वो ठीक रहेगा। दूसरा, मन की स्थिति, आप स्ट्रेसफुल हैं और कुछ सोच रहे हैं, बहुत गंभीर बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ऐसे झटके आ सकते हैं। तीसरी बात, कुछ एक दो तरह के झटके भी होते हैं। एक होते हैं जब हम सोने जाते हैं तो शुरुआत में जैसे ही हल्की नींद आई एक झटका आ जाता है, वो स्लीप ऑनसेट जो होते हैं जग। एक होते हैं जब सुबह जगने वाले होते हैं, तो उस टाइम भी ऐसे यही सेम फिनोमेना हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अगर जो बहुत ज्यादा झटके आ रहे हैं तो छोटी सी एक दवा देके उन झटकों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लेकिन दूसरी बात और भी है, कभी कभी ये झटके दूसरी बीमारी ब्रेन के होने के कारण भी होते हैं, तो जब वो डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, जरूर पड़ेगी तो CT स्कैन या MRI या EEG करेंगे, तो उसे ये पता चल जाएगा कि एक तो ये एपिलेप्सी के दौरे नहीं है और क्या दूसरी बीमारी के कारण ऐसे झटके तो नहीं आ रहे। तो झटके तो बड़े सिंपल चीज है, लेकिन वो बीमारी ब्रेन में कुछ और है जिसकी वजह से झटके आ रहे हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर साहब से बात करके इस बात को क्लियर कर लीजिए।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार आप दोनों को।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: मैं सपना बात कर रही हूँ दिल्ली से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
4: हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे करीबन 6-7 साल पहले से पैर के नीचे में दर्द होता था, कौन से वहाँ पर, उसके कारण से फिर मुझे ऐसा लगा मुझे पूरी टांग में दर्द होने लगा और मैंने काफी उसको ट्रीटमेंट लिया, विटामिन B12 भी मैं खाती रहती हूँ, मल्टीविटामिन भी मैंने काफी लिए, मगर मेरी टांग के दर्द की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और अभी लेटेस्ट मुझे फ्रोजन शोल्डर, पहले एक बाजू में था और अभी

0: तो मुझे कुछ अजीब सा दूसरी बाजू में भी है, इन द सेंस की मैं जैसे प्लेट पकड़ के खड़ी होती हूँ थोड़ी देर तक, खड़ी मतलब बैठ के जब भी मैं कुछ खा रही हूँ प्लेट अगर मैंने पकड़ी हुई है तो बाजू को सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अकड़ सी जाती
1: है। मैडम आपको डायबिटीज है?
0: नहीं, डायबिटीज
1: फैमिली में डायबिटीज है,
0: टाइप 2 था मेरे पेरेंट्स को।
1: तो आप अपनी ब्लड शुगर रेगुलर चेक करें जरूर जरूर से, क्योंकि कभी ऐसे देखा है जिन लोगों की डायबिटीज की टेंडेंसी हो फैमिली में, वो आगे जाके डायबिटीज होने वाली हो, उनको भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो जो शोल्डर की बात कर रहे हैं उसका तो सबसे अच्छा इलाज है कि डॉक्टर से बात करके एक्सरसाइज सीखिए, सिकाई करिए, और रेगुलर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो 3 से 6 महीने एक्सरसाइज करने के बाद आपका फ्रोजन शोल्डर अच्छा होगा, 2 दिन 5 दिन में उससे आराम नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, जो आपने पैर में कॉर्न बताया वो तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट को या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ कॉर्न के पैच आते हैं अलग अलग, वो लगा सकते हैं, या फिर बहुत डीप हो तो उसको सर्जिकली पैरों से निकालना पड़ता है। आपने एक जो इम्पोर्टेंट बात बताई कि आपके पैरों में दर्द होता है, पैरों में दर्द जो होता है एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये क्लासिकली ऐसा होता है कि जब हम रात को सोने जाते हैं तब पैरों में दर्द होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये दर्द दिन में भी होने लगता है और कुछ लोगों को तो सारा दिन रहता है, लेकिन रात के टाइम पे ये ज़्यादा तकलीफ देता है। रात को मान लो थोड़ी देर सो गए फिर उठे फिर नींद नहीं आएगी क्योंकि पैरों में दर्द हो रहा है। ये बड़ी ऐसी अजीब सी बीमारी है जिसका कोई टेस्ट नहीं है जिसको हम करके बता दें कि ये RLS है। ये आपके डॉक्टर, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको देखेगा तो एक मिनट में आपके सिम्टम्स सुन के समझ जाएगा। उसकी पहचान ये है कि अगर जो आप पैर दबाएं, कोई आपके पैर दबा दे तो आपको अच्छा लगने लग गया। जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप कहेंगे हमारे घर में नानी दादी मामी, मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि रात को सोने से पहले पैर दबाते हैं तभी उनको नींद आती है, ये वही RLS है उनको भी, और ये फैमिली में रन करता है तो समझ में आ जाता है कि आपके परिवार में किसी को बीमारी थी तो वो आपको भी है। दूसरी बात, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे उस दिन ऐसा होगा, तो हो सके तो सोने से पहले पैरों को गर्म पानी में, मतलब शॉवर चला के गर्म पानी से वो कर लें, या फुट मसाजर जो आते हैं मार्केट में 10 मिनट वो कर लें, या जो क्या बोलते हैं बहुत सारे आसन होते हैं जिसमें पैर को मोड़कर हम बैठते हैं, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं जो आसन क्या होता है उसको मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो पॉस्चर है उसमें अगर जो बैठेंगे आप तो उससे जो काफ मसल्स हैं वो प्रेस हो जाएंगी, उससे भी एकदम आराम मिलता है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें करने से, और आपके डॉक्टर को एक बार दिखाएं तो उसके लिए कुछ जाँच भी करते हैं कि आपका कई बार आयरन लेवल कम हो तब भी ऐसा होता है। जब आपने बोला B12 तो ठीक है, लेकिन आयरन की भी जाँच करा लें, और डॉक्टर साहब से बोलिए क्या RLS बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि क्या ये वो बीमारी तो नहीं है, अगर जो ऐसी बीमारी है तो उसकी एक छोटी सी दवा देते हैं जो खाने के 1 घंटे पहले लेने से आपको इसमें तकलीफ में आराम मिल जाएगा।
2: डॉक्टर साहब जैसे कि अभी अपने टेस्ट की बात करी तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हम न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के बारे में पहले ही पता लगा सकें?
1: देखिए ये सवाल तो आपने ऐसा पूछ लिया है जैसे कि रामबाण दवा जैसा, कि कोई एक ऐसा टेस्ट हो जाए जिससे हम सारी बीमारी पता लगाएं, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जैसे ब्रेन का है तो CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, EEG करते हैं, जिससे कॉमनली सारी बीमारियों के, और बहुत सारे एडवांस पेट स्कैन आ गया है, पेट स्कैन में अलग अलग एफडोपा है, अलग अलग टाइप के स्कैन आ गए हैं। जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे आसान तरीका तो जनरली MRI करके उसे पता चल जाता है। जब हम न्यूरोपैथी की बात करें तो न्यूरोपैथी के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी बोलते हैं, उसमें साथ में EMG करने की जरूरत है या नहीं वो अलग बात है, तो उससे पता चल जाता है। मायोपैथी होता है तो उसमें EMG करके हम देखते हैं कि मसल की जो है किस टाइप का मसल इन्वॉल्वमेंट है उससे वो पता चल जाता है, या जरूर पड़ने पर मसल एक स्किन से इंसीजन लगा के मसल का टुकड़ा लेके भी हम जांच करते हैं। तो ये तो है हमारे कॉमन टेस्ट। बीच में अपने बात करी थी एपिलेप्सी की, एपिलेप्सी के लिए MRI करते हैं, आजकल इतनी सारी एंटीबॉडी आ गई वो हम चेक करके देखते हैं तो उससे भी पता चल जाता है।
2: एपिलेप्सी से लेकर कई बार लोगों के उसमें मिथ भी है कि अगर किसी को ये अटैक हुआ है, मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो जुराब सुंगा दो या चम्मच डाल दो कुछ ऐसा, तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या देना चाहिए?
1: आई थिंक ये सवाल तो हमको पहले भी डिस्कस कर लेना चाहिए था पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एपिलेप्सी पहले बात तो ये समझना चाहिए कि एकदम जानलेवा नहीं होती है आपको, लेकिन भयानक जरूर दिखती है। तो जिसको पहली बार होती है उसके परिवार वाले भी डर जाते हैं, देखने वाले भी डरते हैं। तो जब किसी को भी अगर वो एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा है तो 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसको देखिए उसका सांस बराबर आ रहा है तो कपड़े ढीले कर दें। दूसरा, उसको 90° करवट दिला दें, दोनों हाथ पर पकड़ के एक तरफ करवट दिला दें, और 2 से 5 मिनट में वो दौरा अपने आप ठीक हो जाएगा। जस्ट ये वॉच करना है कि ही इज ब्रीदिंग वेल। तीसरी बात बड़ी कॉमन जो आपने बोला कि लोग क्या करते हैं, जूता सुंघाते हैं, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। आई थिंक जब तक आप जूता डलाते हो या मोजा उतारते हो तब तक वो दौरा

0: ठीक ही हो जाता है। तो लोग समझते हैं कि मोजा सुंघाने से ठीक हो गया, लेकिन जो आपने बात बताई कि मुंह में चम्मच डालना या उंगली डालना, ये बड़ा खतरनाक है। क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति में जब दौरा शुरू होता है तो दांत भेजते हैं, उसके बीच में जीभ आ जाती है और वो जीभ कट जाती है। तो लोगों को लग रहा है उस जीभ को बचाने के लिए वो चम्मच डाल देते हैं, होता क्या, वो जबड़ा इतना जोर से टूटता है कि जीभ तो बचे ना बचे उनके दांत जरूर टूट जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अपनी उंगली डाल देते हैं, तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें उंगली लिटरली उनकी कट जाती है, क्योंकि जबड़े का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर जो किसी की जीभ कटनी है तो वो, और जब तक आप कोई भी उपाय करते हैं तब तक वो कट चुकी होती है, और वो जो आप देखते हैं आपको देखने में डर लगता है, लेकिन जैसा मैंने बताया 2 मिनट करवट दिला के देखिए कि सांस आ रहा है, और गर्दन को थोड़ा नीचे की तरफ कर दे तो मुंह में जो भी लार बनी है या सलाइवा आ रहा है वो निकल जाएगा, वो लंग में नहीं जाएगा, और देखिए कि 2 से 5 मिनट में होश आ जाएगा। एक बात, अगर जो 2 से 5 मिनट में होश नहीं आता तो जरूर हॉस्पिटल जाइए। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को दौरा पड़ा, बेहोशा, दोबारा दौरा पड़ना शुरू हो गया, तो ये ऐसी स्थिति है कि जब आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली जरूर जाना चाहिए। तीसरी बात, उसके हाथ पैरों को मोड़ने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, दौरे में एक आदमी का हाथ मुड़ रहा है, मैंने ऐसा देखा है, 2 दोस्त जा रहे थे, एक को दौरा पड़ा, उसका हाथ मुड़ा, उसने सोचा हाथ मुड़ गया, उसको पूरा घुमा के दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया, उसका पूरा शोल्डर तोड़ दिया उसका। तो उसको मिर्गी से इतना नुकसान नहीं हुआ जिसके उसके दोस्त की मदद करने से नुकसान हो गया। तो प्लीज उसके शरीर को छोड़ दीजिए, चोट ना लगे, आसपास ऐसी चीजें हो जिससे चोट लगती है उसका बचाव कर लीजिए, और अपने आप मरीज को होश में आ जाएगा, फिर अस्पताल ले जाइए।
1: डॉक्टर साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे, हम डायबिटीज की भी बात कर रहे थे, तो जो बीपी या डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं?
0: देखिए, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां हैं, पहली बात तो एक बार किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो मान के चलिए आपको जिंदगी भर ये बीमारी रहेगी। वो बीमारी कितनी सीवियर होगी वो उम्र के साथ में दवाओं के ट्रीटमेंट के हिसाब से। कुछ लोग सोचते हैं कि बीपी की दवा खाई तो मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी बीपी की दवा की मात्रा बढ़ घट सकती है। जनरली समर्स में पसीना ज्यादा आता है तो बीपी अच्छा कंट्रोल होता है तो लोग दवा बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें। अपने डॉक्टर से बात करके अपनी दवा की मात्रा कम कर लें, और विंटर आए तो अपनी दवा की मात्रा दोबारा बढ़ा लें। रही बात कॉम्प्लिकेशन की, तो उससे ब्रेन पे असर पड़ता है। ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई है तो स्ट्रोक हो सकता है। जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों, उनको स्ट्रोक होने का चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। स्ट्रोक हो सकता है तो मिर्गी के द्वारा भी हो सकते हैं, न्यूरोपैथी हो सकता है। डायबिटीज वगैरह जो अच्छी तरह का कंट्रोल है, डायबिटीज में अगर जो और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये भी, तो बॉडी के ढेर सारे ऑर्गन आपके अनकंट्रोल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं, और जो कि कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। अगर जो समय से मैं आपको बताऊंगा, अगर जो 100 मरीज जो अस्पताल में आते हैं जो लकवा लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल से 50 मरीज वो होते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली दवा खाना बंद कर दिया है, ये सोच के कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन वो तरीका बिल्कुल गलत है।
1: लेकिन कई बार होता है ना कि डॉक्टर हमें 2 दिन की दवाई दे रहे हैं, 3 दिन की दवाई दे रहे हैं, 2 दिन बाद हमें ठीक सा महसूस हो रहा है तो हम खुद ही छोड़ देते हैं, तो वो सही है या गलत है और कितना गलत है?
0: दो बातें, एक तो होता है कि 2-3 दिन में खाने के बाद अच्छा लग रहा है, इसका एक ही मतलब है कि आपको दवा सूट कर रही है, आपके लिए दवा इफेक्टिव है, तो दवा बंद ना करें। दूसरी होती है, मैं 3 दवा खा रहा था, अभी मैं सब कुछ ठीक, तो ऐसा करता हूँ 2 कर देता हूँ, ये भी गलत तरीका है। स्पेशली जो पार्किंसन के मरीज होते हैं जिनको हम लियोडोपा नाम की दवा देते हैं, तो उनको, अगर मेरे श्रोता जो पार्किंसन के हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं।
1: हमें मालूम है कि आपकी पार्किंसन में एक्सपर्टाइज है, तो उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए,
0: इसीलिए मैं पार्किंसन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर जो डॉक्टर ने आपको 3 दवा लिखी है, तो और जिस समय से लिखी है उसी समय पे आप 3 दवा खाएं, क्या होता है 3 दवा खाने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको लग रहा है 3 क्यों खाऊं, अब मैं 2 खाऊंगा। तो उसका एग्जांपल ये है कि अगर जो आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आपको मान लो 10 लीटर गाड़ी में पेट्रोल भराना है, तो आप 5 लीटर भरा के काम नहीं चला सकते। और बॉडी की रिक्वायरमेंट 3 गोली की है, तो ये लिवोडोपा तो गाड़ी का पेट्रोल है पार्किंसन के लिए, तो आपको उतनी ही दवा खानी पड़ेगी और समय से खानी पड़ेगी, तभी आपका पार्किंसन अच्छा कंट्रोल रहेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मेरे जी नमस्कार, आप राम, मेरा नाम राम मिलन है
1: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: अभिदम जी, दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ। मैं ये जो अभी आप लोग चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे थे दौरा और मिर्गी के बारे में
1: जी,
2: तो इसके उपचार और इलाज के बारे में मैडम जी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भांजे को ऐसा होता है ना।
1: अच्छा ठीक है, बताइए
2: तो इसके विषय, हाँ थोड़ा सा चर्चा करिए और बताइए आप लोग जो हो सके तो।
0: हमने सारी बात अभी बहुत विस्तार में बताई है, फिर भी एक लाइन में ही बता देता हूँ कि जब भी मिर्गी के दौरे होते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि असली में मिर्गी के दौरे हैं या नकली मिर्गी के दौरे हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये मिर्गी के दौरे असली हैं या नकली है, वो डॉक्टर आपकी जांच करके बता देगा। दूसरा, मिर्गी के दौरे जब भी होते हैं उसमें ज्यादातर

0: 60% मरीजों को एक दवा देने से मिर्गी के दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग दवा बंद कर देते हैं। दोबारा दौरा पड़ने का सबसे कॉमन कारण है कि आप दवा बंद कर देते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे। जब भी एक मिर्गी का दौरा होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि 6 महीने से 3 साल कम से कम दवा देते हैं। किसको 6 महीने देना है, किसको 3 साल देना है, ये आपका डॉक्टर आपके बीमारी के प्रोफाइल के हिसाब से देख के बताएंगे आपको।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम नसों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो नसों की कमजोरी या न्यूरोपैथी, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से हो जाती है ये?
0: जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि ये पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो जैसे हमारे घर में बिजली की वायरिंग है, उस तरह से पूरे शरीर में वायरिंग है, जिसको हम नसें बोलते हैं या नर्व्स बोलते हैं। और इनका काम जो है ब्रेन के सिग्नल को मसल तक, स्किन तक, सब्जी के सारे ऑर्गन तक पहुंचाना है। तो इसकी कोई भी बीमारी है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। अगर आप पूछे कि क्या कॉमन कारण है, तो डायबिटीज सबसे कॉमन कारण है। अगर 100 मरीज देखूंगा जिनको न्यूरोपैथी है, तो उसमें से शायद 70% लोगों को डायबिटीज होगा। ये वो लोग होंगे जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होगा, जिनकी डायबिटीज अच्छा कंट्रोल नहीं रही होगी। कभी कभी जिन लोगों को कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी देते हैं, उनकी वजह से भी ये बीमारी होती है। एक होती है बीमारी, जब आपने न्यूरोपैथी की बात, उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? हाथ में दर्द होता है। कब होता है? ज्यादातर रात में या शाम को या काम करने के बाद, जो गृहिणियां जो खाना बनाती हैं या जहां पे हाथ में रिपीटेडली फ्लेक्शन मतलब मूवमेंट हो रहा है, उसके बाद वो दर्द होता है। किसी भी को भी हाथ में दर्द होता है, उनको डॉक्टर से आकर पूछना चाहिए कि क्या मेरे को कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो नर्व कंडक्शन करके, उसकी जांच करके हम कंफर्म कर सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से इंजेक्शन लगाकर या दवा देके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कभी कभी कुछ ड्रग्स होती हैं जो लंबे टाइम तक लेने के बाद, जैसे टीबी की कुछ दवाइयों से होता है, और लीवर में अगर जो एप्सिस होता है उसकी दवा लेने से होता है, उनके कारण भी न्यूरोपैथी हो सकता है। अनकॉमन होता है जैसे वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है नसों के अंदर, उससे भी होता है। एक जो बड़ी अचानक होने वाली बीमारी होती है, जो बोलते हैं एक्यूट डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आदमी बिल्कुल ठीक था, आज सुबह उठा तो उसको लगा पैरों में थोड़ी कमजोरी सी लग रही है, उठने में दिक्कत है, शाम तक वो दिक्कत बढ़ गई, कल तक इतनी हो गई कि अब वो उठ भी नहीं पा रहा है। आप सोचिए 24-48 घंटे में आदमी बेड बाउंड हो गया, ऐसा भी हो सकता है, जो कि डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर है, जो पब्लिक जो हो सकता है समझ पाए इस बात को, कि उसको बोलते हैं गिलेन-बारे सिंड्रोम हो गया, जीबीएस हो गया, जीबीएस हो गया, बड़ा कॉमन वर्ड है ये। तो उस बीमारी में आपको समय से अस्पताल जाना चाहिए, और समय पे इलाज शुरू करने से उस बीमारी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी मरीज देर से आते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी इन्वायरमेंट भी जाता है, तो उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। किसी भी मरीज को इस बीमारी में अगर जो पहले हफ्ते के अंदर अंदर वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो इसका मतलब बीमारी बहुत ज्यादा थी, उसकी रिकवरी स्लो होगी, और कभी महीनों जाके टाइम लगेगा जब वो रिकवरी होगी।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी इलाज की बात करी, तो क्या कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट है इस फील्ड में?
0: हाँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पार्किंसन, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज है। उस पार्किंसन में एडवांसमेंट क्या है, 2-3 चीजें हैं। एक तो दवाइयां बहुत नई नई आ गई हैं, तो दवाओं की तो एक बात करेंगे। जब पार्किंसन बहुत एडवांस हो जाता है तो दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, लेकिन उसी दवा का साइड इफेक्ट होने लगता है। तो कैच-22 सिचुएशन ये है कि हमको दवा बढ़ानी है, लेकिन दवा बढ़ाने से साइड इफेक्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम ब्रेन का सर्जरी करते हैं, उसको बोलते हैं डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जैसे हम हार्ट में पेसमेकर डालते हैं, ऐसे ब्रेन के अंदर पेसमेकर डाल देते हैं, और बाहर से उसको प्रोग्रामर से उसको एडजस्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे पैरामीटर सेट करके हम उसको पेशेंट को ठीक करते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम डीबीएस सर्जरी करते हैं, तो उसकी दवा की रिक्वायरमेंट 80% तक कम हो जाती है। जब दवा की रिक्वायरमेंट 80% तक कम हो जाती है, तो दवा से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ, तो मैं और भी एडवांसमेंट जो बोले कि अब ये अपने आपने सुना होगा, एक अल्ट्रासाउंड से भी ब्रेन के अंदर सर्जरी कर रहे हैं। वो हर मरीज के लिए नहीं है, पहली बात तो ये सुन लीजिए। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको डॉक्टर देख के डिसाइड करके बता सकता है कि इस मरीज को ऐसा सर्जरी करने का फायदा हो सकता है। उन्हीं मरीज में हम डीबीएस भी कर सकते हैं। एक तो ये एडवांसमेंट है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन में, आजकल जैसे अलग अलग टाइप के पैट स्कैन आ गए, जैसे पार्किंसन में डोपामिन लेवल कितना है ब्रेन का, वो हम जांच कर सकते हैं। दूसरा अब जो नया आने वाला है, जो भी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है, वो है ब्रेन के अंदर एमायलॉइड कितना है, वो देख सकते हैं। जैसे डिमेंशिया की आज हमने इतनी बात नहीं करी है, लेकिन डिमेंशिया भी एक ऐसा बीमारी है, तो डिमेंशिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको हम डिमेंशिया एज ए ग्रुप बोलते हैं, कि आदमी को मेमोरी उसकी कम होती जा रही है। तो कॉमन जो डिजेनरेटिव होता है, जो कि उम्र के साथ बढ़ता जाता है, वो होता है जिसमें एमायलॉइड डिपॉजिट होने लगता है। तो एमायलॉइड पैट करते हैं जिससे पता चल जाता है। उसके लिए आपने बहुत

0: सुना होगा कि आजकल ब्लड सैंपल भी ले रहे हैं, तो ब्लड सैंपल में पर्टिकुलर टाइप का एमाइलाइड का प्रोटीन का कितना रेशियो है वो देख के भी वो जज कर सकते हैं। और दवा की बात करें तो उसके लिए कुछ नई अभी बहुत एडवांस दवाइयाँ आई हैं जो कि अल्जाइमर्स के लिए ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम दें तो उनसे ऐसा मानते हैं कि उन मरीजों को फ़ायदा हो सकता है।
1: दवाइयों के अलावा अगर हम फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की बात करें तो उसका क्या रोल रहता है?

0: ये कुछ कुछ ऐसा ही है जिनको वीकनेस आई है, चाहे वो लकवे की वजह से तो हो, न्यूरोपैथी की वजह से हो, मायोपैथी की वजह से हो। तो अगर जो आप रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज बराबर करते हैं तो उसी बीमारी की रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आज हम इतने डिस्कस नहीं पा रहे, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन जनरल आर प्रोग्रेसिव, और जब वो प्रोग्रेसिव है तो आपको इतनी अच्छी एक्सरसाइज करनी है कि आपकी मसल की पावर बनी रहे और बीमारी से आप आगे निकल जाएं। ऐसी एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसमें भी मसल्स आपकी वीक होने लगती हैं, तो उसमें भी वो प्रोग्रेसिव होती है। तो अगर जो आप खूब एक्सरसाइज करके अपनी मसल की पावर को मेंटेन कर लेंगे तो यहाँ ये रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सेम लकवा होने के बाद अगर जो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। एक और भी जो बात आज हमारे शायद समय की व्यवस्था के कारण नहीं हो पाई कि मन की स्थिति। मैं कई बार पेशेंट्स को बोलता हूँ खुश रहो। अब मरीज बोलते खुश रहो क्या बीमारी है, मतलब खुश रहने का क्या मतलब है,
1: कैसे खुश रहे?
0: कैसे खुश रहेगा? तो ये जो खुश रहो वाला जो तरीका है वो आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है। जैसे आपने मेरी चॉइस के गाने लगाए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो मुझे अच्छा लगा मेरे गाने सुन के।
1: आप हमारे शो में आए, हमें भी खुशी हुई।
0: जी, ऐसे कोई आते हैं जो स्पिरिचुअल, उनको भगवान के भजन में बड़ा मजा आता है, वो उसमें खुशी ढूंढते हैं। प्लेयर जो होते हैं उनको खेल के बड़ा मजा आता है। जिन लोगों को दौड़ने की आदत पड़ जाती है वो जब तक 5-10 किलोमीटर दौड़ के नहीं आए उनको खुशी नहीं मिलती है। तो हर आदमी की खुशी अलग है, वो हर आदमी अपनी खुशी अलग जगह ढूंढता है।
1: लेकिन अगर कोई मरीज है किसी बीमारी से जूझ रहा है तो वो उसके साथ अपना जो डेली लाइफस्टाइल है वो कैसे फॉलो करे, अपनी डेली रूटीन कैसे जिए, क्योंकि वो कई बार उस चीज में चला जाता है कि हाँ इस बीमारी हो रही है।
0: ये तो बहुत कॉमन बात है, उसके लिए मैं मरीजों को एक बात बताता हूँ कि भगवान न करे किसी की टांग टूट जाए तो अब दो तरीके हैं, या तो अपनी टांग को देख देख कर रोज परेशान हो जो कि कई बार लोग करते हैं, दूसरा है उसमें बढ़िया सा कलर वाला प्लास्टर लगाओ, दोस्तों को बुलाओ उस पर ऑटोग्राफ लो, पता है 3 महीने में ठीक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग रखना और पॉजिटिव रखना, उन्हीं को मैं बोलता हूँ कि खुश रहिए तो आप अच्छे रहेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब आज आपने काफी हमें जानकारी दी कि ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में, तो जाते जाते आप क्या संदेश हमारे श्रोताओं को देंगे? लेकिन उससे पहले एक मैसेज आया है, मैं मैसेज जरूर लूंगी शॉर्ट में, बेशक उनको हम मैसेज दे दें। वो लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब आजकल मिडल एज में ही लकवे की प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या रीजन है, पर्यावरण या खान पान? कृपया बताएं। नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से, शॉर्ट में आप
0: नरदेव सिंह जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बड़ा मिलियन डॉलर सवाल है, क्योंकि ये आपकी नहीं हमारी भी बड़ी समस्या है। 30 साल का यंग लड़का, 22 साल का यंग लड़का, उसके 2-3 कारण है। एक तो ब्लड प्रेशर बहुत यंग एज में होने लगा है, डायबिटीज यंग एज में होने लगा है, खान पान इतना खराब है, स्कूल में 50% बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, तो ये कारण है। तीसरा है कि हम हेल्थ चेकअप नहीं कराते, स्मोकिंग इज ए इम्पॉर्टेंट कॉज, और रेगुलर चेक करने के बाद में जो है पॉल्यूशन एक दूसरा कारण है। अभी मैं देख रहा था जब 400 वो होता है तो हम 10 सिगरेट के बराबर 40 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है।
1: तो डॉक्टर साहब जाते जाते शॉर्ट में मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिससे वो स्वस्थ रहें और खुश रहें।
0: खुश रहें वो तो हमने बता दिया, एक हमेशा खान पान का ध्यान रखना है कि स्वस्थ खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मन की स्थिति को अच्छा रखें, और अगर भगवान न करे कोई ऐसी बीमारी हुई है तो उसको समझ के उससे आगे निकल जाए
1: और शांति से उसका सामना करें। तो श्रोताओं आज हमने जाना कि न्यूरोलॉजिकल रोगों के लक्षणों को समय रहते पहचानना और उचित उपचार लेना कितना आवश्यक है। सही जानकारी, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम इन समस्याओं से काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद शिल्पा जी।
1: दोस्तों आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और

0: दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी।

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में इस्तीफा दिया। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से फोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा स्वर्णिम वेश में दर्शन देंगे। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। आइए चलते हैं, आप सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today I am talking about gentle parenting. क्या होती है gentle parenting? क्यों हो रही इतनी popular? आजकल के digital दौर में बच्चों के परवरिश करना भी एक challenge बन गया है. ऐसे में भी अब gentle parenting काफी चर्चे में है. इसे celebrities भी अपना रहे हैं. चलिए आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि जेंटल पेरेंटिंग क्या है, इसे कैसे अपनाएं और इसके फायदे क्या होते हैं. आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी ने बच्चों की परवरिश को भी मुश्किल बना दिया है, तब माता पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कैसे बने अच्छे पेरेंट्स, बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें लेकिन बिना डांटे या मारे, कैसे उनके साथ ऐसे रिश्ते बनाएं जहां वो खुलकर बात कर सके और साथ ही जिम्मेदार भी बने. इसी सवाल के जवाब में एक नया ट्रेंड सामने आया है जो है जेंटल पेरेंटिंग. कई मशहूर सेलिब्रिटी पेरेंट्स भी इस स्टाइल को अपना रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक फैशन है या ट्रेंड है? वाकई में बच्चों के बेहतर परवरिश का रास्ता है या? आइए विस्तार से समझते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग होती क्या है और क्यों ये स्टाइल इतनी पॉपुलर होता जा रहा है. आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. ये एक ऐसी परवरिश जिसमें बच्चों के साथ सख्ती नहीं बल्कि समझदारी, संवेदनाशीलता और सम्मान से पेश आया जाता है. ये तरीका कहता है कि बच्चों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझाया जाए, उनकी फीलिंग्स को सुना जाए और उन्हें इमोशनल तौर से सेफ माहौल दिया जाए. इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जाता है बल्कि उसके व्यवहार को समझकर और उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए गाइडेंस दी जाती है. अगर बच्चा जिद कर रहा है या गुस्से में है तो उस पर चिल्लाने के बजाय उसकी फीलिंग्स को पहचाना जाता है. जैसे मुझे पता है तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें अभी वो खिलौना चाहिए था, चलो मिलकर कोई हल निकालते हैं. तो दोस्तों क्या आप कभी सोचे कि जेंटल पेरेंटिंग क्यों हो रहा है इतना पॉपुलर? इमोशनल कनेक्शन को बढ़ावा देती है ये जेंटल पेरेंटिंग. बच्चे खुद को माता पिता के करीब महसूस करते हैं जिसे रिश्ते में गहराई आती है और बच्चे भी ज्यादा विश्वास के साथ कम्युनिकेट करते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल सिखाती है. जब बच्चों को उसकी बात कहने का मौका मिलता है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनता है. उसे पता होता है कि उसकी बात मानी गई है या नहीं, कम से कम सुनी जरूर जाएगी. डर के बजाय समझ से नियम सिखाते हैं. ट्रेडिशनल सख्त पेरेंटिंग में बच्चे अक्सर डर से सही व्यवहार करते हैं, लेकिन जेंटल पेरेंटिंग में वो खुद समझते हैं कि कौन सा व्यवहार क्यों गलत है. मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है ये जेंटल पेरेंटिंग. ये स्टाइल बच्चों के मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है. इसकी मदद से उन्हें कम तनाव होता है और इमोशनल रूप से वे ज्यादा स्थिर होते हैं. क्या जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चों को कुछ भी करने दिया जाए? बिल्कुल नहीं. जेंटल पेरेंटिंग में भी रूल और ब्रांडिंग होती है, लेकिन उनका पालन साझा या डर से नहीं, समझ और सहयोग से करवाया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चा खाने से मना कर रहा है तो उसे डांटने के बजाय ये कहना, मुझे पता है अभी तुम्हारा मन नहीं है लेकिन खाना जरूरी है ताकि

हेल्थी रहो, चलो चलो साथ बैठकर खाते हैं। बच्चों के बाद ध्यान से सुने, भले ही वो छोटी सी बात क्यों न हो। तुम गलत हो कहने के बजाय पूछो, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। गलत व्यवहार पर गुस्से के बजाय ऑप्शन दे, ऐसा नहीं, ऐसा करके देखो। जो व्यवहार आप उनसे चाहते हैं पहले खुद अपनाएं। दोस्तों, बच्चों की परवरिश करने के लिए पेरेंट्स तरह तरह के तरीकों को अपनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक ही तरह का पेरेंटिंग स्टाइल कारगर हो। कई बार एक ही बच्चे पर अलग अलग पेरेंटिंग तकनीक अपनानी पड़ती है। ये पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करता है। पहले के समय पर पेरेंटिंग का तरीका बिल्कुल अलग हुआ करता है, लेकिन अब ज्यादातर पेरेंट्स जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल को अपना रहे हैं। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में इसे सुनेंगे आपके आरजे चेतन से। पारंपरिक पेरेंटिंग स्टाइल में जब बच्चा कुछ अच्छा करता है या अच्छा व्यवहार दिखाता है तो उसे शाबाशी और गिफ्ट दिए जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा कुछ बुरा करता है तो उसे डांट दिया जाता है और कुछ मामले में बच्चों की पिटाई तक हो जाती है। हालांकि जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स अपने बच्चों के भावनात्मक जरूरतों और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। इसमें बच्चे के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल बनाने पर जोर दिया जाता है। इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करने वाले पेरेंट्स बच्चों को सख्त सजा नहीं देते हैं, बल्कि बच्चों को उसकी भावनाओं को समझकर ठीक तरह से व्यवहार करना सिखाया जाता है। जब आप अपने बच्चों की जरूरत और भावनाओं को सुनते हैं और सहानुभूति और समझ के साथ जवाब देते हैं तो आप उन्हें उसी तरीके से बातचीत करना सिखा रहे होते हैं। जेंटल किंग आपके बच्चों को हेल्थी और सही तरीके से अपनी भावनाओं को पहचाने और व्यक्त करने में मदद करती है। ये एक जरूरी लाइफ स्किल है। जेंटल पेरेंटिंग एक दयालु दृष्टिकोण है जो बच्चे के भावनात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझने और उनका पालन पोषण करने पर केंद्रित है। इसके मूल में यह माता पिता और बच्चों के बीच सहानुभूति, सम्मान और सकारात्मक संचार पर जोर देता है। इस पालन पोषण दर्शन का उद्देश्य बच्चों को एक सहायक, अहिंसक और समझदार माहौल में बड़ा करना है। सौम्य पालन पोषण बच्चों को उनके अपने विचारों, भावनाओं और अद्वितीय व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के रूप में पहचानता है। यह उनकी स्वच्छता को महत्व देता है और उनकी उम्र और समझ के अनुरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने का प्रयास करता है। चिल्लाना, पिटाई या टाइम आउट जैसे दंडात्मक उपायों का सहारा लेने के बजाय सौम्य पालन पोषण सकारात्मक अनुशासन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, पुनर्निर्देशन का उपयोग करना और तार्किक परिणामों को नियोजित करना शामिल हो सकता है, जो शर्म या डर पैदा करने के बजाय मार्गदर्शन करता है। सौम्य पालन पोषण करने वाले माता पिता अपने बच्चे के दृष्टिकोण साथ सहानुभूति रखने का प्रयास करते हैं। व्यवहार और जरूरतों के पीछे अंतर्निहित कारणों को समझकर माता पिता अधिक प्रभावी ढंग से और दयालु पूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुसंगत नियम और सीमाएं स्थापित करने से बच्चों को सुरक्षा और पूर्वानुमान की भावना मिलती है। हालांकि ये सीमाएं बच्चों के व्यक्तित्व और विकासात्मक अवस्था को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति और लचीलेपन के साथ निर्धारित की जाती है। सौम्य पालन पोषण माता पिता को बाल विकास, प्रभावी संचार और उम्र उपयुक्त अपेक्षाओं के बारे में लगातार शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये संयोगात्मक समस्या समाधान को भी बढ़ावा देता है और माता पिता को संघर्ष या मुद्दे के समाधान खोजने में बच्चों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, ये एक नया टर्म है, ट्रेंडिंग है, जेंटल पेरेंटिंग। दैट वाज ऑल अबाउट जेंटल पेरेंटिंग इन टुडेस लम्हे प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है अल्फा जैन। और अल्फा जैन के आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेट्स डिटॉक्स की। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार, और इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में कई बार हमें लगता है कि हमारी जो प्रगति है उस राह में रुकावट बन रही है, हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने की दिशा में जो हमारे प्रयास हैं उनको भी हम याद करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की एक छोटे से सवाल के साथ। सवाल ये है कि क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए टाल दी क्योंकि लगा कि अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूँ? शायद एक यूट्यूब चैनल शुरू करना था, कोई परीक्षा देनी थी, गिटार सीखना था, या फिर किसी को अपने मन की बात कहनी थी। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं कि वे शुरुआत ही नहीं कर पाते। परफेक्शन का इंतज़ार करते करते कई सपने कैलेंडर के पन्नों में कहीं खो जाते हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस ज़रूरी है, और प्रोग्रेस के लिए हमारा शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आपका स्वागत है इस गीत के साथ।

दोस्तों, किसी भी बड़ी मंजिल की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। और अगर हम इतिहास में भी निगाह डालें तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इस तरफ सोचने की एक कहिए कि सीख देती हैं, एक हौसला देती हैं। अब अगर हम अपने भारत के बारे में देखें तो अगर कुछ ख़ास जगहों के बारे में आपको कहें कि बताइए कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगती है, उनके नाम बताइए, तो बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो आपकी उंगलियों पर होंगे कि हाँ, ये तो कमाल की जगह है। और ऐसी ही एक जगह है आगरा में जिसे देखने लोग जाते हैं, ताजमहल। ताजमहल आज दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक के तौर पर गिना जाता है। लेकिन वो एक दिन में नहीं बना, लगभग 22 साल तक हजारों कारीगर हर दिन उसमें थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। किसी ने संगमरमर तराशा, किसी ने नक्काशी की, किसी ने गुंबद बनाया। अगर हर कारीगर ये सोचता है कि जब तक पूरी इमारत परफेक्ट नहीं दिखेगी तब तक मेरा काम शुरू नहीं होगा, तो शायद ताजमहल कभी नहीं बन पाता। ये जो बनना है ना किसी चीज़ का, उसमें ज़रूरी होता है कि हम निरंतर लगातार करते रहें किसी काम को। प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एथलीट जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो हमें तो लगता है कि वाह क्या बात है, कमाल। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, हर दिन ट्रेनिंग करना, कैसा भी मौसम हो, कितनी भी व्यस्तता हो, ट्रेनिंग के लिए समय निकालना और लगातार अपने आप को अगली चुनौती के लिए तैयार करना, ये बहुत ज़रूरी है। और हर महान रचना छोटे छोटे अधूरे दिनों को जोड़कर पूरी होती है। तो हमारा आज का छोटा प्रयास आने वाले कल की एक बड़ी बुलंदी का रास्ता बनाता है।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम है अल्फा जन और आज हम लेट्स डिटॉक्स में बात कर रहे हैं। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में हम जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है हमारा पहला कदम बढ़ाना। और जब हम कदम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। आज की दुनिया में अगर हम अपने आसपास देखें तो ये सच हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। मोबाइल फ़ोन हम सभी लोगों के हाथ में है, इंटरनेट का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। लगातार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत से लोग देखते हैं, उनमें से है एक रील देखना या यूट्यूब देखना। तो जब भी हम इनकी तह में जाते हैं, तो जब भी कोई स्टार्टअप सफल होता है ना, तो उसके पीछे की एक बड़ी कहानी होती है, या फिर यूं कहें कि कोई क्रिएटर जब लाखों लोगों तक पहुंचता है तो हमें उसका आज दिखाई देता है। लेकिन शायद ही कोई उन शुरुआती वीडियो को देखता है जिनमें उनका कैमरा हिल रहा था, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, या मुश्किल से कुछ सौ लोग ही उन्हें देख रहे थे। जो लोग आज प्रेरणा बन गए हैं उन्होंने शुरुआत परफेक्ट होकर नहीं बल्कि लगातार खुद को बेहतर करते हुए की। और ये फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी पहली कोशिश को आखिरी फैसला नहीं माना, और अगर कुछ कमियां थी तो उन कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया और आगे बढ़ते रहे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर

0: पर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है अल्फाजन और इसमें आज हम बात कर रहे हैं लेट्स डिटॉक्स की। और हमने आपसे कहा है कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है जिंदगी में। और इस बात को लेकर कई और भी बातें हैं हमारे पास जो कहीं ना कहीं हमें ये बताती हैं कि हमारा जो पहला कदम है किसी चीज़ को लेकर, ये हम सोचे कि अभी थोड़ा और तैयारी कर लें, थोड़ा और आगे बढ़ें। तैयारियां कई बार हम जब सफ़र करते हैं ना, तो सफ़र के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि किसी मंजिल की तरफ चलने का जो हमारा एक पूरा प्रयास होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस पूरी कोशिश में कई बार हम अपने ऊपर थोड़ा दबाव ज़्यादा बना लेते हैं। कॉलेज में है तो सबसे अच्छा CV चाहिए, नौकरी में है तो सबसे जल्दी प्रमोशन चाहिए, सोशल मीडिया पर हैं तो हर पोस्ट बेहतरीन होनी चाहिए। धीरे धीरे हम अपने काम से ज़्यादा उसकी इमेज को लेकर परेशान रहने लगते हैं और यहीं पर प्रोग्रेस जो है वो थोड़ा पीछे रह जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर कदम पर परफेक्ट दिखना चाहता है ना, वो अक्सर अगला कदम उठाने से डरता है। जापान की एक सोच है काइजेन, इसका मतलब है हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना, बस एक छोटा सुधार। यही सोच वहाँ की कंपनियों से लेकर स्कूलों तक अपनाई जाती है। सोचिए अगर कोई रोज जो है सिर्फ एक नया शब्द सीख ले, रोज 10 मिनट पढ़ ले या रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल बाद बदलाव कितना बड़ा होगा। बड़े छलांगें हमेशा दिखाई देती हैं, लेकिन जिंदगी को बदलने वाला असर अक्सर छोटे कदमों का होता है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम का नाम है अल्फा जन। में हम बात कर रहे हैं लेट्स डिटॉक्स, और लेट्स डिटॉक्स हम क्या कह रहे हैं आपके लिए कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है, और प्रोग्रेस के लिए जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार हम अगर प्रोसेस को सही से करते हैं ना, उसको अपनी ज़िंदगी में सही से उतारते हैं, तो फिर हमारे लिए सफलता बस थोड़ी दूर का रास्ता होती है, यानी कि सफलता जल्दी से जल्दी हम तक पहुँचती है। तो अगली बार जब भी लगे कि अभी सब कुछ तैयार नहीं है, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए कि क्या मुझे सचमुच परफेक्ट होना है या सिर्फ कल से थोड़ा बेहतर। क्योंकि गौर कीजिए, साइकिल चलाना, तैरना, नई भाषा सीखना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, इनमें से कोई भी कौशल पहली कोशिश में नहीं आता। हम गिरते रहे, संभलते रहे, और फिर एक दिन वही काम हमें सहज लगने लगा। तो प्रोग्रेस का भी यही स्वभाव है, वो शोर नहीं करती लेकिन समय के साथ पहचान बन जाती है, और वो पहचान अपने साथ कामयाबी को लेकर आती है।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और लेट्स डिटॉक्स में आज हम बात कर रहे हैं कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है। और प्रोग्रेस जब हम करते हैं, किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो फिर धीरे धीरे सफलता हम तक पहुंचती जाती है। और ये एक प्रोसेस है कि हम आप तक ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, इसके बाद अगला प्रोग्राम होगा और उसके बाद उससे अगला प्रोग्राम होगा। तो इस प्रोसेस को समझते हैं और इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आप बता देते हैं कि आप आने वाले कुछ घंटों में कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद यानी कि 5 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स प्रोग्राम में शहर के तमाम हलचलों, तमाम गतिविधियों को आप सुन पाएंगे, जान पाएंगे दीपांशी अरोड़ा के साथ। और 6 बजे से होगा कार्यक्रम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स, चांद मुखर्जी इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगी। और उसके बाद 7 बजे से आप सुन पाएंगे हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम सैटरडे सिजलर्स, और 8 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती, और इस प्रोग्राम को भी लेकर आप तक पहुंचेंगी चांद मुखर्जी। और जो 7 बजे हमने आपको बताया वेस्टर्न म्यूजिक का हमारा प्रोग्राम सैटरडे सिजलर्स, उसे लेकर आप तक पहुंचेंगे आशीष अब्राहम। तो ये अगले कुछ घंटों में आप प्रोग्राम सुनने वाले हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में अभी भी कई गीत हैं जो आप तक पहुंचने वाले हैं, और उनमें से ये गीत है ये वाला।

दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सीधे पॉइंट पर हम आते हैं कि जिंदगी हमें परफेक्ट होने का जो इनाम दे ना दे लेकिन आगे बढ़ते रहने के मौके देती रहती है। इसलिए अपने अधूरेपन से लड़ने की नहीं उसे अपना साथी बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का साहस रखते हैं वही एक दिन दूसरों को देखकर नहीं बल्कि खुद को देखकर मुस्कुराते हैं। और यही है आज का हमारा लेट्स डिटॉक्स। परफेक्शन का बोझ उतारिए, प्रोग्रेस की आदत अपनाइए और जिंदगी पे आगे बढ़ते जाइए। इसी बात के साथ राजेश को दीजिए आप अनुमति, चलते चलते ये गीत आपके लिए। नमस्कार।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में इस्तीफा दिया। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामले की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकेंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा स्वर्ण वेश में दर्शन देंगे। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे मैच में जिम्बाब्वे टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ बिल्कुल, आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप। और ये शाम का वो समय होता है जब हम आपको बताते हैं कि हमारी अपनी दिल्ली में क्या कुछ खास चल रहा है जो हमारे लिए जानना और समझना है बेहद जरूरी। प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त दीपांशी प्रस्तुत हूँ यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। भाई बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात हुए, तो आज सोचा आज इस सब्र को और इंतजार को करते हैं खत्म और जल्दी से आ जाते हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। एक बार तहे दिल से फिर से आप सभी का स्वागत कार्यक्रम सिटी लाइट्स में। आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप।

आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस अपडेट के साथ जो सबसे ज़्यादा है ज़रूरी जानने के लिए कि भाई क्योंकि वीकेंड है, शनिवार का दिन है और अब हम प्लान कर रहे हैं कि चलिए कहीं घूमा जाए, क्योंकि यही दो दिन मिलते हैं ना अपने पूरे हफ्ते भर की थकान मिटाने के लिए और ऑफिस से, अपने काम से थोड़ा सा बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी को एक अलग स्टाइल में जीने के लिए, है ना। तो ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि भाई घर से बाहर निकलेंगे, ये ना हो कि घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगे और अगर बाहर कहीं आउटडोर में घूमने का प्लान है तो वो ख़राब ना हो जाए। वेल, अगर हम वेदर की बात करें, वेदर अपडेट की बात करें, तो आज 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं हुई और हाँ हल्की हल्की बारिश की संभावना है। तो अगर आपको बारिश में उन जो बूंदें टपकती हैं ना, मोती जैसी बूंदें टपकती हैं ना आसमान से, उसमें भीगते हुए घूमने का, वॉक करने का शौक़ है या कहीं आइसक्रीम या गरम गरम भुट्टा खाने का शौक़ है ना, तो निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी उस वॉक में आपका साथ देने बारिश की कुछ वो छलकती हुई बूंदें भी आ जाए। मौसम साफ रहेगा, आपको प्लान करना है बिल्कुल कर सकते हैं, आपके प्लान का मौसम बिल्कुल साथ दे रहा है, तो चलिए उठिए जल्दी से। लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम के बाद अच्छा सा कोई प्रोग्राम बनाइए और कहीं घूम कर आइए।

मौसम को थोड़ा सा और खास, थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए पापन की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

अभी आपको ये बता दिया है कि जाइए घूम आइए, थोड़ा सा मन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। और कहते हैं ना, जब आप बाहर निकलते हैं घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू करते हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर नज़रिया भी बदल जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब हम कुछ ऐसी चीज़ों से रूबरू होते हैं जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है फॉर ए चेंज, और अपनी मोनोटनी तोड़ते हैं ना, रोज़ वही उठकर काम पे जाना, वही रोज़मर्रा का काम करना, ज़िंदगी की जद्दोजहद से जूझते रहना, वही आपाधापी, वही भाग दौड़, वहाँ जब हम थोड़ा सा ठहरने की कोशिश करते हैं, और ये जो ठहरने का एक छोटा सा मौका है ना, ये हमें वीकेंड पर ही मिलता है ना, तो कभी कभी लगता है नहीं यार, लाइफ इतनी भी हेक्टिक नहीं है। शायद हम उस उधेड़ बुन में काम करने के जज्बे में शायद लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा सुकून और थोड़ी सी खुशी मिलती है, जैसे हमें मिलती है कि जब हम आपसे यहाँ मिलने के लिए आते हैं, तो एक ज़िंदगी को हम थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। वेल, हम बात कर रहे थे कि भाई अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपको कहीं जाना है, तो कहाँ जाया जाए, चलिए थोड़ी सी मदद हम कर देते हैं आपको ये बताकर कि दिल्ली में कहाँ कुछ खास हो रहा है जिसे एंजॉय करने के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको शौक है एग्जिबिशंस को देखने का, तो आप जा सकते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहाँ इंडियाज़ प्राइड एशियाटिक लॉइंस इस फोटोग्राफी एग्जिबिशन का आयोजन किया गया है। और ये जो एग्जिबिशन है ये कल तक वहाँ रहेगी। इसका जो समय है सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक है। तो अगर आपको कुछ खूबसूरत पिक्चर्स देख कर, फोटोज़ देख कर उन्हें सराहने का मन है, तो जाइए, थोड़ी सी नज़र दौड़ाइए और देखिए।

आप वहाँ जाकर इन फोटोग्राफ्स को देखकर जिंदगी के क्या और कुछ मायने समझते हैं। और उसके अलावा आप जा सकते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर, यहाँ पर आप एक फिल्म को इंजॉय कर सकते हैं, एन अनफ्रेम्ड पोर्ट्रेट। 7 बजे का इसका समय है, इंडिया हैबिटेट सेंटर गुलमोहर IHC में। तो जाइए, अगर इसे इंजॉय करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।

0: कार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
1: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप सभी जो रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में, मैं हूँ आपके साथ दीपांशी। और कल जब डीएमआरसी ने ये बताया था, ये खबर दी थी कि आज भी करीब 18 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद रखे जाएंगे, जहाँ पर इंटरचेंजेस अलाउ किए गए थे लेकिन मेन 18 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था एहतियातन। अभी यदि हम अपडेटेड सूचना के अनुसार बात करें तो कुछ प्रमुख मेट्रो स्टेशन को फिर से खोल दिया गया है, और ये जो मेट्रो स्टेशन हैं इनको आप चेक कर सकते हैं डीएमआरसी की वेबसाइट से कि किन किन मेट्रो स्टेशन को फिर से खोल दिया गया है और वहाँ पर जो सेवाएं हैं पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। तो अगर आप मेट्रो से सफ़र करना चाह रहे हैं और तो बेटर है कि एक बार चेक करके निकले कि कौन से मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद है और किन मेट्रो स्टेशन के जो एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं वो खोल दिए गए हैं, ताकि वहाँ पहुँच कर आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक बिफोर यू लीव कि कहाँ पर आवाजाही जो है पूरी तरह से सामान्य हो गई है। तो चेक कर लीजिए कौन कौन से मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं। सूचना के अनुसार राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय, इन मेट्रो स्टेशन, इन प्रमुख मेट्रो स्टेशन को फिर से खोल दिया गया है।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। वेल, अगर हम पेरेंट्स की बात करें या बीइंग एडल्ट्स की बात करें, जिस तरह से हम अपना ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि हम एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि जितना हम बड़े होकर, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह से हमारा खान पान, हमारा जो लाइफस्टाइल है और एक्सरसाइज ना करना या इस तरह की प्रैक्टिसेस ना करना, इससे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है, तो कभी हम अब ये पाते हैं कि चाहे हमारी फिजिकली हमारी जो वेलबींग है या जो हमारी मेंटल हेल्थ है, दोनों पर कहीं ना कहीं इसका बहुत असर पड़ रहा है और इसका प्रभाव हो रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर चिल्ड्रन, हम जब अपने बच्चों की बात करते हैं ना, तो हम ये शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि बच्चों पर भी उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में, अखबार में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि शायद आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप तक जानी चाहिए। और आप सभी में, हम सभी में जब ये अवेयरनेस बढ़ेगी कि जितना ख्याल हम अपने लाइफस्टाइल का, अपने खान पीन का रखते हैं, उतना ही ज़रूरी है अपने बच्चों की सेहत पर भी ध्यान देना। क्योंकि क्या होता है ना,

बच्चे जब जिद करते हैं कि नहीं ये खाने का मन है, तो कभी कभी शायद हम अपने उनके प्रति लगाव के चलते, प्यार के चलते, उनकी जो छोटी छोटी सी इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरा कर देते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करके, कि कहीं ना कहीं वो जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, जब वो हमसे पैक्ड फूड्स खाने की बात करते हैं, जंक फूड खाने की बात करते हैं, और बाहर खेलने की बजाय केवल अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं पूरा दिन उन पर बिताते हैं, तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो अर्ली साइंस हैं वो हमारे बच्चे को एक ऐसी चीज़ की तरफ धकेल रहे हैं जो शायद हम ना अपने साथ होने देना चाहते हैं और ना ही अपने बच्चों के साथ। मैं बात कर रही हूँ ओबेसिटी के बारे में। जी हाँ, ओबेसिटी के बारे में ही एक जब मैंने इस तरह की एक खबर पढ़ी तो सोचा क्यों ना उसे आपके साथ साझा किया जाए। करेंगे इस बारे में और बात। आप ये प्यारा सा गाना इन्जॉय कीजिए और जल्दी से वापस आइए, और इस बारे में कुछ ज़रूरी बात है जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक

0: भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। और अभी इस ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि किस तरह से आजकल का जो खान पान है, और इस बात को इग्नोर करना कि क्या हमारे जो बच्चे हैं, आर किड्स आर गेटिंग दोज न्यूट्रिएंट्स, या इस तरह का जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट उनमें जो बढ़ता जा रहा है, क्या हमारा ध्यान उस तरफ है? क्या हमारे बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं? क्या उन्हें उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जो चीज़ें मिलनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस, वो क्या उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं? वेल, इस बारे में ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक रोड मैप निकाला है। लेकिन ये जो रोड मैप है, ये क्यों निकाला गया है, इसे पहले समझना ज़रूरी है। अगर हम वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के बारे में अगर बात करें, तो उसमें बताया गया है कि 4.1, जी हाँ, लगभग 4 करोड़ जो इंडियन चिल्ड्रन हैं, इंडियन बच्चे हैं, वो या तो ऑलरेडी ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। जी हाँ, 4 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा नंबर है कि हमारे भारत देश में 4 करोड़ जो बच्चे हैं ऑलरेडी ओवरवेट हैं या मोटापे का शिकार है। इसी के चलते जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने एक रोड मैप को प्रपोज किया है, ताकि ये जो आजकल का ट्रेंड है, इसे यहीं पर रोका जा सके। क्योंकि अगर एक रिपोर्ट की माने, अगर ये जो ट्रेंड है इसी तरह से चलता रहा, तो वॉर्न किया गया है कि इंडिया की करीब 11% की जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, वो इंडिया उसमें 11% तक भागीदारी दिखाएगा 2000

2030 तक पूरे वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं उसमें जो ओबेसिटी है उसका 11% भारतीय बच्चों में पाया जाएगा अगर ये ट्रेंड इसी तरह से चलता रहा। अब उन्होंने जब इस रोड मैप को प्रपोज किया है उसके साथ ये भी कहा गया है कि जो FSSAI है उसके जो रेगुलेशंस हैं और स्ट्रिक्ट किए जाने चाहिए ताकि इस प्रकार के खाने

इस रोड मैप की अगर बात करें, इसमें ये भी कहा गया है कि जो जो भी खाद्य पदार्थ या कोई भी, चाहे वो प्रोसेस फूड है या जो भी खाने की वस्तु है, उसके पैकेट पर उसकी न्यूट्रिशनल लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि यह हर किसी को बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आए ये हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है, कितना हानिकारक है, या इससे हमें किसी तरह का कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है कि नहीं। अनहेल्दी फूड्स को बच्चों की कैंटीन्स में, बच्चों के स्कूल की कैंटीन्स में नहीं बेचा जाना चाहिए, उस पर भी इन्होंने कब्ज की मांग की है। और बच्चों के लिए स्कूल में भी इस तरह का जो हेल्दी फूड एनवायरमेंट है, उसे थोड़ा सा और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसका एडवर्टीजमेंट किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को ये समझाया जा सके कि कितना जरूरी है। जब आप बड़े हो जाते हैं तभी हमें अपने ओवर वेट होने के इशू से, अपने हेल्थ के इशू से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी ये जो पीढ़ी है, ये हमारे फ्यूचर है, ये हमारी भावी पीढ़ी जो है, इन्होंने ही आगे के विकास का जितना जिम्मा है अपने अभी के नाजुक कंधों पर उठाया हुआ है, तो ये भी ज़रूरी है ना कि इनके विकास की, इनके हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, उसकी वेलबींग का ध्यान भी रखा जाए। अगर अभी से वो ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ओवरवेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से बच्चे अपने आप को आगे संभाल पाएंगे। उसके बाद ये भी कहा गया है कि बच्चों में बेटर न्यूट्रिशन लिटरेसी को बढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें भी पता होना चाहिए हमें क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। जो बड़े हैं, चाहे वो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो कुछ हद तक बच्चों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक बच्चों को ये खुद पता नहीं है उन्हें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ उनकी सेहत के लिए अच्छी है, क्या चीज़ उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो बच्चे शायद उसको इतना इफेक्टिवली अपने जीवन में, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं उसको अप्लाई कर पाएंगे। जब सेल्फ अवेयर होंगे, जब उन्हें ये पता होगा कि हाँ, ये हमारे लिए अच्छा है और ये हमारे लिए बुरा है, तो उनका जो इस चीज़ को लेकर कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी जो है, वो बढ़ जाएगी, और वो खुद जब अवेयर रहेंगे कि दिस वी शुड टेक दिस, वी शुड हैव, वी शुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ जंक फूड या पैकेज फूड की लेबलिंग को जब वो पढ़ना शुरू कर देंगे, तब ये मानिएगा कि शायद उन्होंने अपना जो पहला कदम है उस ओर ले लिया है, जहाँ वो अपने बारे में भी उतना ही सोच रहे हैं जितना हम बींग पेरेंट्स या बींग अडल्ट उनके लिए सोचते हैं।

और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। जाना इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से आपसे मिलने आना है। मैं बहुत जल्द आऊंगी, जी हाँ, कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक रखिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान। लेकिन जाने से पहले ये बता दें कि अगला कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स लेकर चांद रहेंगी आपके साथ और पढ़ेंगी आपके बहुत ही मसालेदार मैसेजेस। और उसके बाद ठीक 7 बजे प्रोग्राम सैटरडे सिजलर्स, जी हाँ, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम लेकर आएंगे आशीष। और उसके बाद फिर से एक बार 8 बजे चांद जुड़ेंगी आपके साथ लेकर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। तो दीपांशी को दीजिए इजाजत, मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने कल। यहीं जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के साथ और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम को एंजॉय करते रहिए। टेक केयर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

शाम की 6 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सरकार के साथ बातचीत के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामले की सुनवाई

सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदायों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं और क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे मैच में जिम्बाब्वे टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

यकीनन दोस्तों, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे यार हैं, आप हमारे प्यार हैं, तभी तो हम आ जाते हैं हमेशा हर पल आपके साथ तैयार रहते हैं, चाहे ज़िंदगी की कैसी भी मुश्किलें हो, कैसा भी वक्त हो, लेकिन हम आपके साथ होते हैं। तो आज भी हम आपके साथ हैं। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स, और मैसेज मसाला मिक्स में आकाशवाणी रेनबो पर आज हम आपसे जानना चाहते हैं वो ये कि कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी अपने आप में कहानी होती है, कि किसी की कहानी संघर्ष से भरी होती है, किसी की हंसी से, तो किसी की प्यार और रिश्तों से। अगर आपकी कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा जाए, जी हाँ जनाब, अगर आपकी कहानी, आपकी ज़िंदगी की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा जाए, तो सोचिए आपकी ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म का नाम क्या होगा। अभी व्हाट्सएप कीजिए 9868107070। हमारे नए दोस्त जो हमसे आज पहली बार जुड़े हैं और हमें सुन रहे हैं, उनको हम अपना नंबर फिर से बता देना चाहेंगे। 9868107070 9868107070। और आकाशवाणी रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स में रहिए चांद के साथ, और बताइए कि आपकी कहानी का नाम फिल्म में, फिल्मी पर्दे पर क्या हो?

दोस्तों, जिंदगी हमेशा कोई प्रेम कहानी तो नहीं होती, और भी बहुत सारी कहानियां होती है जिंदगी में। हर इंसान की जिंदगी की अलग कहानी होती है। अगर आपकी जिंदगी पर कोई फिल्म बनती तो उसका क्या नाम होता? आज मैसेज मसाला मिक्स में आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं। और आपको तो पता ही है दोस्तों, जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, और उतार चढ़ाव से भरा एक दिन आज हमारे लिए भी था। और वक्त है आपके मैसेजेस शामिल कर लेने का, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हमारे पास। सत श्री अकाल जी, चांद आदाब आपको भी। फिल्म का नाम एक था प्रदीप, वैसे तो वो शांत रहता है लेकिन जब कोई इससे पंगा लेता है तो ये सनी देओल बन जाता है। ये 2.5 किलो का हाथ, इतना लंबा। अगर आप फिल्म का नाम रखेंगे तो लोगों को याद नहीं रहेगा। प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी न्यू दिल्ली से लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका मैसेज करने के लिए। जावेद आलम मोहम्मद जयान जयपुर से लिखते हैं, आज आपको क्या हो गया है, कुछ तो बोलो। बोल तो रहे हैं जनाब, कभी कभी शांत भी थोड़ा रहना चाहिए। नागेंद्र सोनी

0: देवीगढ़ पटियाला से कि कोई रेडियो के चांद को सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल आपको भी जी। और बनाने वाली फिल्म का नाम होगा भूले बिसरे प्राणी। अच्छा, भूले बिसरे प्राणी, मुझे सब रिश्ते नातेदार सब भूल गए हैं। ऐसा नहीं है नागेंद्र जी, ऐसा मत सोचिए, सबको सब कुछ याद रहता है। देखिए, आप हमें याद है, हम आपको याद है। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं, लिखती हैं, चांद आर यू ऑल राइट? यस, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। यू आर पेंटिंग वाइल टॉकिंग, स्ट्रगल एंड हार्डवर्क विल बी द नेम ऑफ माई फिल्म। ओके, ये कहती हैं कि इनकी फिल्म का नाम होगा स्ट्रगल एंड हार्डवर्क। ये तो सही बात है, वैसे बहुत सारे लोगों की फिल्म का नाम ये हो सकता है। हेलो मैम, गविता हरियाणा से, मेरा मेरी कहानी का नाम किस्मत होना चाहिए। किस्मत, किस्मत कनेक्शन एक फिल्म आई थी वैसे। अगला मैसेज हम पढ़ लेते हैं, नाम है सत्यजीत सरकार फ्रॉम वेस्ट बंगाल से, लिखते हैं गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया वैसे तो। और रेनबो लिसनर्स, मेरी लाइफ की फिल्म का नाम होगा सफलता का संघर्ष। सफलता का संघर्ष नाम अच्छा है वैसे। अगला मैसेज लिखा है, नमस्कार चांद, वैसे तो मैं इस काबिल नहीं कि, फिर भी यदि पर्दे पर उतरने का अवसर मिले तो मेरी फिल्म का नाम होता उपकार, जो किसानों के ऊपर बनी हुई फिल्म है। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से जी। ये तो उपकार फिल्म का नाम है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ पर फिल्म बनती तो शायद आप कहना चाहते हो कि उसका नाम भी उपकार होता है, क्योंकि आप शायद बहुत परोपकारी हैं। फिल्म का नाम मासूम दिल क्रूर दुनिया। प्रवीण चौहान जी ने लिखा है खरगोन मध्य प्रदेश से कि अगर उनके ऊपर कोई फिल्म बनती तो उसका नाम होता मासूम दिल क्रूर दुनिया। चलिए अगला मैसेज हम पढ़ें, उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक प्यारा सा ट्रैक आएगा आपके पास, उसके बाद आप मैसेजेस का सिलसिला जारी रहेगा। आज हमने आपसे मैसेज मसाला मिक्स में जानना चाहा है कि अगर आपके जीवन पर आधारित कोई फिल्म बनती तो उस फिल्म का नाम क्या होता। हम भी बताएंगे अपनी फिल्म का नाम, लेकिन उसके लिए आपको सुनते रहना पड़ेगा आकाशवाणी रेनबो। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: और दोस्तों फिट रहने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिंदगी में जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिट रहते हैं, उनमें से एक शिल्पा शेट्टी जी भी हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, और अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी फिल्म का नाम क्या होगा? अगर आपकी जीवन पर कोई फिल्म बनती है आपके जीवन पर, तो उसका नाम आप क्या रखना चाहेंगे, ये आप हमें बता सकते हो। और अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर हो जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। सुनिए आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और आज हमने आपसे जानना चाहा है कि अगर आपकी जीवन पर कोई फिल्म बनती है तो उसका नाम आप क्या रखना चाहोगे। बस इतनी छोटी सी बात हमने आपसे पूछी, आप बता दीजिए 9868107070 पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
0: दोस्तों जैसे कि हमने कहा था, हम हाजिर हो जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। तो जनाब, हम अपना किया हुआ वादा कैसे, बाप रे बाप, इतने सारे मैसेजेस आए हैं दोस्तों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सारे मैसेजेस पढ़ें। विष्णु प्रसाद आंगी, ग्राम खुजूरिया, तहसील ब्यावरा, जिला रायगढ़, मध्य प्रदेश, फिल्मी पर्दे पर मेरी कहानी का नाम होना चाहिए, सपनों का राजा जो सभी का साथ दे, अपने कार्य से सबको प्रसन्न रखे और हमेशा अच्छा ही करे। क्या बात है विष्णु प्रसाद जी, आपका नाम भी बहुत ही अच्छा है। हेलो, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली, हाउ आर यू? ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट इफ अ फिल्म इज मेड ऑन माई लाइफ, the name of the film will be Mr. Happy. Oh wow, because I am a blind person but I am still very happy and smiling, and I want everyone to get inspired by my story. Definitely sir, ye likhte hain, ye Bhuvnesh ji ne likha hai, main Ashok Vihar Delhi se, ye likhte hain ki inki film ka naam hona chahiye Mr. Happy, kyunki ye दिव्यांग हैं, दृष्टि बाधित हैं, और ये फिर भी ये बहुत खुश रहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हर कोई इनकी लाइफ से इंस्पायर्ड हो। बिल्कुल, हम भी इंस्पायर्ड हैं और जितने लोग भी सुन रहे हैं वो सब भी बहुत इंस्पायर्ड है कि आपने अपनी फिल्म का नाम मिस्टर हैप्पी रखना चाहा है।

और अगला मैसेज हमारे पास आया है अमन कुमार बागपत से, उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं कि अगर मेरी जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका नाम होगा कोई युवा पीछे ना छूटे। क्योंकि सच कहूँ, एक समय ऐसा भी था जब लोग मुझे पहचानते ही नहीं थे। मैं बस तो वो लड़का था जो सुबह 4 बजे साइकिल पर अखबार बांटता था। फिर जिंदगी ने मुझे दो रास्ते दिए, पहला अपनी किस्मत बदल दो, दूसरा अपनी तरह लाखों बच्चों की किस्मत बदलने की कोशिश करो। मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। अजीब बात है, जिस अखबार को कभी बेचकर मैं घर चलाता था, आज उसी अखबार में मेरी कहानी छपती है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी हेडलाइन अभी भी कोई पुरस्कार नहीं है। मेरी सबसे बड़ी हेडलाइन उस दिन होगी जब किसी बच्चे को सिर्फ जानकारी के अभाव में अपने सपने नहीं बेचने पड़े। और हाँ, FM रेनबो का भी धन्यवाद। सुबह सुबह अनजान लोगों की कहानियाँ सुनकर हमेशा अच्छा लगता है। दुनिया बदलने वाले लोग पहले अच्छे श्रोता बनते हैं। बाप रे, अमन जी आपने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और बहुत सक्सेस पाई है, ऐसा आपकी स्टोरी सुनकर लग रहा है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए हमें। अगला मैसेज हमारे पास है, डियर मैम कैसी हैं आप। एंड मैं आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि अगर बड़े पर्दे पर मेरी लाइफ को से रिलेटेड कोई फिल्म होती है तो संघर्ष होती, बिकॉज़ हमारी लाइफ बचपन से अब तक स्ट्रगल से भरी हुई है। आई एम अंशी शर्मा, हस्तिनापुर मेरठ, यूपी से। अंशी, बहुत अच्छी बात है अंशी जी। एक बात बताएं आपको, सबकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई होती है, लेकिन सबके स्ट्रगल करने का तरीका अलग अलग होता है, और आपकी लाइफ का भी बहुत अलग रहा होगा, ऐसा आपके मैसेज से लग रहा है। क्या बोलूँ आज के टॉपिक पर, मेरी क्या मूवी बनेगी। सुबह उठो सिलाई करो, रात को सो फिर सुबह और सिलाई करो। मेरी मूवी का नाम सुई धागा ही अच्छा होगा। जावेद आलम मोहम्मद जयान जयपुर से ऐसा लिखते हैं, क्या बात है, बड़ी सेट लाइफ है आपकी, और कोई टेंशन ही नहीं है। सुबह उठो सिलाई करो, दिमाग में ही घूमता रहता। अच्छा ऐसा बोला था, डिजाइन ये बोली थी, और कोई ज्यादा टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में, मस्त लाइफ है आपकी, बेहतरीन। और एक फिल्म भी आ चुकी है सुई धागा। चलिए गाना सुना देते हैं आपको जल्दी से इस फिल्म का। दोस्तों, वैसे बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास, लेकिन आप भी अगर मैसेज करना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। आज हमने मैसेज मसाला मिक्स में आपसे जानना चाहा है कि अगर आपकी लाइफ पर कोई फिल्म बनती तो उसका नाम क्या होता।

और दोस्तों वक्त तो नहीं इजाज़त देता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा मैसेजेस हम पढ़ सके पढ़ लें। अगर मेरी ज़िंदगी पर फिल्म बनेगी तो हीरो कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि एक आम इंसान होगा जो गिर कर भी हर बार उठता है, हालात से लड़ता है और अपने सपनों को ज़िंदा रखता है। और लिखते हैं कि हीरो के लिए मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुनूंगा क्योंकि वो सादगी, संघर्ष और हकीकत को बहुत खूबसूरती से निभाते हैं, और हीरोइन के लिए विद्या बालन क्योंकि मजबूती, समझदारी और भावनाओं को बखूबी पर्दे पर उतारती हैं। कहानी कोई परियों की नहीं होगी बल्कि हकीकत की होगी, जहाँ हर हाल हार के बाद एक नई कोशिश होगी और हर अंधेरे के बाद एक छोटी सी रोशनी होगी। मोहम्मद सरफराज आलम जी लिखते हैं, जो कि हर दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज जी मैसेज करने के लिए। आदाब बहन, मैसेज मसाला मिक्स, मेरी फिल्म का नाम इन्होंने लिखा है अभी जिंदा हूँ मैं। अच्छा जी, कस्बा बलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहाँ बेगम लिखते हैं, मैसेज करते हैं हमें, तो शुक्रिया मैसेज करने के लिए। वाह क्या बात है, मेरी मूवी बन गई सुई धागा जी, आप क्या बन गई, और हमने आपको गाना भी सुना दिया। कांट से फुरकान साहब लिखते हैं कि टॉपिक बहुत अच्छा है आपका, लेकिन बिल्कुल प्यार झुकता नहीं मूवी की तरह है, क्योंकि जैसे पद्मिनी कोल्हापुरी जी एक अमीर घर की बेटी थी और मिथुन चक्रवर्ती जी एक नॉर्मल परिवार से थे, उनकी शादी हुई और फिर शादी के कुछ दिन बाद वो अलग हो गए, ऐसे ही सेम टू सेम मेरी मूवी भी हो सकती है ससुराल वालों की गलतफहमी। अरे जनाब, ये आपको कहानी का नाम बताने के लिए कहा था, आप तो पूरी कहानी बताने लगे, ऐसा थोड़ी ना होता, इतना टाइम नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं। शुभ संध्या चांद, कल के बंगाली रसगुल्ले की मिठास अभी भी बरकरार है, जिसका वीर दमन ने कल जिक्र किया था। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ खेड़ा मेरठ से ऐसे लिखते हैं, आप लोग रोज हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला मैसेज, अरे बाप रे टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों, अगला मैसेज हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। शुभ संध्या चांद, मेरे ऊपर फिल्म बनती तो उसका टाइटल होता मैं भी बनूंगा हीरो। हीरो के मज़े हैं ना पढ़ाई ना क्वालिफिकेशन, बस हीरो बन जाओ और उसके बाद बस सारे काम, जीवन में मौज ही मौज। देहरादून से आलोक पवार और मिनी ऐसा लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी मैसेज करने के लिए, बहुत ही अच्छा मैसेज किया आपने। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, सिर्फ तुम पार्ट टू मूवी मेरी लाइफ पर बन सकती है। आपने नाम तो बताया नहीं अपना, गुड इवनिंग, नाम तो बताया नहीं आपने अपना, क्या चांद मेट्रो रूट कौन से लिया। अच्छा डॉली जी ने लिखा है जी, नाम भी मिल गया, छोटा सा आपका लिखा हुआ है डॉली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी शिद्दत से हर रोज़ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन इस तरह आज भी जुड़े हुए हैं और आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी ख्वाहिश कहते हैं, ऐसी दरख्वास्त करते हैं आपसे। और बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 1 घंटे का, और उसके बाद 1 घंटे के लिए आपके साथ रहेंगे, तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम प्रोग्राम्स का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, शरात्रि के 8 बज रहे हैं। अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार के साथ बातचीत के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलुओं के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए थे। राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण बताया है। और स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए रेनबो हमारे साथ लगातार।

0: मेरी वाणी आकाशवाणी।
1: और दोस्तों आपकी वाणी आकाशवाणी में रेनबो पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। और म्यूजिक मस्ती में बेहतरीन ट्रैक्स लेकर हाजिर हैं हम आज की शाम एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हमने आपको वैसे ही चुन लिया जैसे आपने चुना है हमें।

0: भी जा रहे हैं, आप भी कहीं मत जाइएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: गाइस, तो अभी आप सुन रहे थे फिल्म आग का ये गाना जो इला अरुण जी और सोनू निगम जी की आवाज में था। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर हो जाएंगे एक और ब्यूटीफुल से ट्रैक, एक नहीं बहुत सारे ब्यूटीफुल से ट्रैक्स हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो में म्यूजिक मस्ती।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मैसेजेस बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जब आप इस प्रोग्राम में मैसेजेस करते हैं और बताते हैं कि आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो सच में

0: और दोस्त, अभी जो आवाज़ आप सुन रहे थे वो अमिताभ बच्चन जी की थी, और सतीश भोसले जी साथ में थे, श्रेया घोषाल जी और शान जी ने इस फिल्म में गाने में अपनी आवाज़ दी। फिल्म थी अलादीन। और अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जुड़ जाइए आप हमारे साथ। जुड़े तो आप हैं, आपके मैसेजेस बता रहे हैं।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन

0: यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: और दोस्तों, आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो पर म्यूजिक मस्ती।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे विकास, जो कि बिल्कुल तैयार है बिल्कुल मुस्तैदी के साथ अपने सॉन्ग्स के साथ। और आई होप एंड आई एम श्योर कि आपने बहुत बहुत सारा एंजॉय किया होगा, क्योंकि आपके मैसेजेस हमें यही बता रहे हैं। लेकिन अब हमें आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन इस उम्मीद और इस ख्वाहिश के साथ कि आपसे मुलाकात होगी फिर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के ही किसी न किसी प्रोग्राम में। तो क्या अब आपका चांद जाए। बाय।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है। सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत के बाद सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने और आम जनता को परेशान करने के आरोप में एक आईपीएस अधिकारी सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अमेरिका ने अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत भारत पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जिससे भारत कम शुल्क श्रेणी में आ गया है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

यादों और जज्बातों का सिलसिला लिए और जैसा कि वादा किया था कि आपसे मुखातिब होऊंगा 25 तारीख को प्रोग्राम आपकी याद आती रही के माध्यम से, तो आ गया हूं मैं ये प्रोग्राम लेकर। मैं कौन? मैं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। प्रोग्राम आपकी याद आती रही, जिसमें हम जाते हैं पलट कर अपने उन दौर के सुनहरी यादों में जिसे हमसे हम जुदा खुद को नहीं कर पाते। समय चाहे जो भी रहा हो, वक्त चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो आज भी उतनी ही साफ जरूर है। हाँ, ये बात और है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं वर्तमान में जीते हुए, अपने बीते हुए उस सुनहरे दौर को, और जब बैठते हैं अकेले तन्हाई में अक्सर तो याद आते हैं वो सुनहरे पल। एक समय था दोस्तों जब हॉरर मूवीज विदाउट टेक्नोलॉजी भी डरावनी लगती थी, यानी कि इतनी अच्छी तकनीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उस वक्त जो फिल्में बना करती थी हॉरर जोन की, तो उसमें भी एक बात होती थी। और ऐसे कई यादगार फिल्में हैं, आपको भी याद जरूर होगा, जब छोटे थे हम और डरते थे, यानी कि पोस्टर भी अगर देखते थे तो लगता था कि कितनी हॉरर होगी ये फिल्म, और एक्साइटमेंट भी होता था क्योंकि मूवी का इतना क्रेज था। और इनमें से कई मूवीज तो सुपरहिट भी रही और आज भी हॉरर जोन की बेस्ट मूवीज में गिनी जाती हैं। ऐसी ही एक मूवी का एक ऐसा ही गाना जो संगीत प्रेमियों को आज भी याद है, और जब भी किसी हॉरर मूवीज की बात होगी, कभी भी जिसमें गीत संगीत भी मेलोडियस हो, तो ये जो गीत है ये जितने भी संगीत प्रेमी हैं उन्हें जरूर याद आएगा और वो सुनना भी चाहेंगे।

तमाम दोस्त जुड़े हुए हमारे साथ आपकी आदरत ही प्रोग्राम में। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सरकार, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से, और हमेशा की तरह अपने निराले अंदाज में अपनी दिल की बात लिखी है कि नन्हे पंछी आ जाते हैं, मन की बातें कह जाते हैं, पाकर निश्चल प्यार तुम्हारा और भी ऊँचा उड़ जाते हैं, नन्हे पंछी आ जाते हैं, मन की बातें कह जाते हैं, संवेदन का गहरा सागर, अंतर मन में ठहरा सागर, जिसकी स्नेहिल लहरों में गम सारे ही बह जाते हैं, नन्हे पंछी आते हैं, मन की बातें कह जाते हैं, देरी देरी जलते दीपक, रात की गोद में पलते दीपक, अंतर मन के सारे तम को पल में रोशन कर जाते हैं, नन्हे पंछी आ जाते हैं, मन की बातें कह जाते हैं। प्रेमचंद प्रेमी जी जत्रा धामपुर से हमेशा की तरह अपने निराले अंदाज के साथ। और देखिए, आपने हमें नहीं बताया, लेकिन चाहने वाले जो होते हैं वो बता ही देते हैं। सरकार मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से कहते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, तो दिली आपको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां इस खास दिवस की। और यही कहना चाहूंगा, दिल से सिर्फ दुआ है, प्रार्थना है ऊपर वाले से कि हमेशा आपको खुश रखें, जो चाहत है आपकी वो हमेशा पूरी हो।

और सरफराज आलम जी भी यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रेमचंद प्रेमी जी को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, यश, सम्मान और सृजन की निरंतर ऊर्जा प्रदान करें। वे अपनी लेखनी से साहित्य और आकाशवाणी के श्रोताओं का मार्गदर्शन एवं मनोरंजन करते रहें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर आपको ढेरों। वेलकम टू द शो विथ फ्लावर्स विक्सर। कैसे हैं आप? अंशी शर्मा हसनपुर मेरठ से अपने अनूठे निराले अंदाज के साथ जुड़ी हमारे साथ। मैं बहुत अच्छा हूं दोस्त, और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। आपकी अदाती में आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, अर्जोर गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरकार हमारे महफिल में तशरीफ लाने के लिए और इसको और भी चार चांद लगाने के लिए। और भी कई सारे मैसेजेस हैं, उनका भी सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल बात कर रहे थे हम उस बीते दौर की, टटोल रहे थे और ढूंढ रहे थे क्या हमें गुदगुदाता है। और दोस्तों, अब जो पुरानी फिल्में हमारी होती थी उसमें कई ऐसी चीजें होती थी जो आपने भी अपने हिसाब से, अपने अंदाज से महसूस किया होगा, नोट किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। अब मैं तो अपने दिल की बात कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है वो कहीं ना कहीं आपके दिल की बात से मिलके ही रहेगी। जैसे कि प्यार में जीने और प्यार में मरने की जो कस्में होती थी उसे खाना और उसे निभा कर भी जाना बीते दौर के फिल्मों की खास बात होती थी। ना जाने कितनी अनगिनत मूवीज हैं ऐसी, और कई बार वक्त बीतने के साथ ऐसे कुछ गीत भी धुंधले से हो जाते हैं हमारी यादों में, या यूं कहें कि बहुत कम सुनने को मिलते हैं किसी भी माध्यम से। तो ऐसे ही गीत अगर खुद के पास हमारे कलेक्शंस होते हैं, जैसे मेरे पास तो हैं जी, बिल्कुल हैं, पुराने गीतों की जो कलेक्शंस हैं मैं हमेशा अपनी लाइब्रेरी में रखता हूं और हमेशा ढूंढता रहता हूं कि कौन सा ऐसा गीत है जो आप लोगों के लिए पेश कर सकूं। तो आज ऐसा ही एक गीत है। फिल्म उस दौर में उतनी नहीं चली लेकिन ये गीत बहुत चला।

0: दोस्तों आपकी याद आती रही प्रोग्राम का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बस लौटता हूँ छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: तराने गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम आपकी याद आती रही में। दिल के दर्द को दिल में ही दबाना पड़ता है, टूटकर भी महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। कोई क्या समझेगा इस खामोशी का आलम, यहाँ जख्म छुपाकर भी सबको हंसाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं दिल से बहते हैं। लोग पूछते हैं कि इतने चुप क्यों हो, काश वो जान पाते हम मुस्कुराते बहुत है, बस खुशियां अब साथ नहीं देती। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से बड़ी गहरे दिल की बात लिखी है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो। आई एम शुक्लाल बाला फ्रॉम फलाकटा वेस्ट बंगाल। मैं उम्मीद करता हूँ जैसा आपने लिखा है मैं सही इसको रीड कर रहा हूँ। और आपका आज जन्मदिन है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की आपको भी शुभकामनाएं। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लवली सॉन्ग, शुक्रिया जी। और लिखती हैं इसके बाद, प्यार एक बीमारी है जो हमें कभी हुआ ही नहीं, प्यारा सा दिल हमने कभी खोया ही नहीं, दर्द एक एहसास है जो भी हुआ नहीं, हम ऐसे हैं जिए जाते हैं, हर एक दिन को खुशी से पिए जाते हैं। क्या बात है, ये अंदाज निराला आपका भी अच्छा लगा जी हमें। यादों की बारिश में भीगा है आज फिर यह शहर, हर एक मोड़ पर बिखरा है तेरी यादों का मंजर, रिमझिम फुहारे पूछती है कहाँ गया वो हम सफर, सरफराज अब भी तेरी याद में भीगता है ये शहर। क्या बात है, मोहम्मद सरफराज आलम जोगिहार दशना बाजार जिला अररिया बिहार से। पंकज अमरावती से जुड़े हैं, नमस्कार नमस्ते सरकार, आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया प्रस्तुति है और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, शुक्रिया जी। बने रहिएगा, कोशिश यही है हम जो मेहनत करें आपको पसंद आए। आदाब आदाब सरकार, फारूक अली खान साहब कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मेरे एक दोस्त कवि शायर बहुत ही उम्दा लिखने वाले प्रेमचंद प्रेमी जी का जन्मदिन है जी, बिल्कुल, और हम उन्हें मुबारकबाद दे चुके हैं और आपकी तरफ से भी एक बार फिर से दे देते हैं बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां इस खास दिवस की प्रेमचंद प्रेमी जी को। कासगंज से मास्टर राधेश्याम शाक्या, गुड इवनिंग सरकार जी, आपकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपको जुकाम है, प्रोग्राम विद सॉन्ग्स सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, नाइस प्रेजेंटेशन, शुक्रिया आपका जी। थोड़ा बिल्कुल मौसम की मार है सरकार, वो भी चली जाएगी। हेलो जी, नाइस प्रोग्राम सर, थैंक यू जी, नाम नहीं लिखा आपने और ये भी नहीं लिखा कि कहाँ से आप अपनी बात भेज रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। कारवां फिर शुरू करते हैं हमारी यादों का, और आज मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी यादों की जो कहीं ना कहीं मैंने कलेक्ट किया और सोचा आप सभी से साझा करूँ, और कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपके मैसेजेस बता रहे हैं। एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करता हूँ जिसके गीत संगीत में खूब वाहवाही लूटी उस दौर में और धूम मचाया था जी, बिल्कुल। और उस दौर में जब कैसेट्स बनते थे तो हाथों हाथ कैसेट्स बिक रहे थे बहुत, और लोगों की दीवानगी इसके एल्बम को लेकर इतनी बड़ी कि फिर मेकर्स को इन गीतों को लेकर, यानी पहले गीत जो थी वो एल्बम बनी उसकी और उसके बाद मूवी बनी जब लोकप्रियता बहुत टॉप पर पहुंच गई। हालांकि फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई लेकिन इसे वीडियो कैसेट्स के साथ रिलीज किया गया और दोबारा इसने धूम मचा दिया, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। और अनेक दिलचस्प बातें भी इस मूवीज की हैं, फिल्म का नाम आप गेस कीजिए और मैं प्ले करता हूं सॉन्ग इस फिल्म का, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग।

आपकी बातें दिलचस्प लग रही हैं, गीत संगीत सुकून देने वाले हैं। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेरा मेरठ से, आपकी बातें मुझे सुकून देने वाली है सरकार, क्योंकि जो मेहनत मैं करता हूं आप लोगों के लिए वो जब सफल होती है बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार जी, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। प्रोग्राम काफी अच्छा लग रहा है, आपकी याद आती रही, गीत भी बहुत पसंद आ रहे हैं। और एक गीत की फरमाइश की है दोस्त, ये गीत मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है लेकिन जो है वो आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, कई फिल्में ऐसी रही जिसमें कई जोड़ियां जो आई वो बहुत ही सुपरहिट रही। पहली फिल्म मतलब जो थी वो बहुत ही सुपरहिट रही ऐसी जोड़ियों की। गीत संगीत हो या अदाकारी लोगों को खूब पसंद आई, पर बाद में उस जोड़ी ने कभी भी वो कमाल नहीं दोहराया।

मिसाल के तौर पर कह सकते हैं जैसे आशिकी फिल्म थी, उसमें जो हीरो हीरोइन थे हमारे राहुल रॉय और अनिल अग्रवाल, है ना, तो वो जोड़ी थी, वो कमाल की थी उस फिल्म में, लेकिन उसके बाद वो कमाल दोहरा नहीं पाए। ऐसी ही कई जोड़ियां आई और यहां पर मैं एक ऐसी जोड़ी की बात कर रहा हूं जिनका डेब्यू बड़े बड़े दिग्गजों के साथ हुआ था और फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। गेस करना शुरू कर दीजिए आप कौन सी है। लोगों को फिल्म के साथ अन्य कलाकारों के जो काम था वो बहुत पसंद आया और इसी चीज को दोहराने के लिए कई मेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेना शुरू भी किया, पर वो बात फिर नहीं बन पाई। और ऐसी ही एक मूवी जिसका गीत मैं अब आपको सुनवाऊंगा, वो बॉक्स ऑफिस पर तो उतनी नहीं चली थी लेकिन उसका जो गीत संगीत था, म्यूजिक था, वो बहुत ही पसंद किए गए। चलिए अब ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करता हूं और सीधे सीधे फिल्म का वो गीत आप लोगों के लिए प्ले करता हूं।

जी, इस आवाज से कुछ तो एहसास हो गया होगा कि मैं कौन सी मूवी का गीत प्ले कर रहा हूं। और बीच बीच पे मैं ये इसीलिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि तड़का मारने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सही गेस किया है, जो मैंने पिछला गीत सुनवाया था, जो गाना सुनवाया था, बिल्कुल लाल दुपट्टा मलमल का है, मोहम्मद अजीज और मोहनराधा पुड़वाल की आवाज थी, पंकज अमरावती महाराज से। हालांकि ये कोई क्विज प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जो अभी मेरे दिल की बात है हमेशा करता हूं आपसे, तो गैस करने का काम आपका है, गैस करिए।

0: दोस्तों ये सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा, छोटा सा अंतराल है, अभी लौटता हूं।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

प्रदीप सलूजा जी जुड़े हमारे साथ। सॉरी कि कोई बात ही नहीं है, आने में लेट हो गया। सत श्री अकाल सरकार जी। और कोई बात ही नहीं है, जब भी आप जुड़े हमें तभी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी जी और सिमरन मुखी जी बिल्कुल जुड़े हमारे साथ। शांति नगर सोनीपत से कार्यक्रम सुन रहे हैं और उच्च कोटि की प्रस्तुति और सदाबहार गीत बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम दिल से बड़ी बधाई आपको भी, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। हमेशा कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा सरकार। बिजनौर के लोकप्रिय कवि प्रेमचंद प्रेमी जी को फिर शुभकामनाएं दे रहे हैं राजेश भल्ला कंकर खेरा मेरठ से। ओके जी, मैं दोबारा उन्हें आपकी तरफ से और तमाम दोस्तों की तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं इस खास दिवस की।

दोस्तों, मोहब्बत से प्यार जताना तो कला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पेचीदा है थोड़ा सा, और पैशनेट होकर अपनी फीलिंग्स बयां करना। खासकर तकरार होने के बाद अगर फीलिंग्स बनी रहे, वही खुशबू बाकी रहे, तो वो प्यार और परवान चढ़ता है। यानी फिर मुश्किल है उस इंसान के बिना जीना, यानी ज़िंदगी को जीना।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: नई स्टाइल गया है बम्बई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Well, we'll be right back after a short break.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

और अब पेश है मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलोग्राम से अधिक विदेशी सोना जब्त किया और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। मानवाधिकार समूह ब्लूच वुमेन फोरम ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जबरन गुमशुदगी की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। अमरीका ने अमरीकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत भारत पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जिससे भारत कम शुल्क श्रेणी में आ गया है। हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

ये सरकार जैसा कि वादा किया था प्रोग्राम लेकर रंगे महफिल हाजिर होऊंगा एक बार फिर 11 बजे, तो प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं रंगे महफिल, और महफिल सज चुकी है और हमारे दोस्त आना भी शुरू हो गए हैं, जुड़ना भी शुरू हो गए हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से। आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का इस खूबसूरत नगमे के साथ।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को जो सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। और आपके साथ हूं मैं आज, आपका खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम रंगे महफिल का। प्रदीप सलूजा जी वेलकम कर रहे हैं हमारा और हम आपका कर रहे हैं जी इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। बने रहिएगा, अभी तो बहुत वक्त बाकी है जिसे यादगार बनाना है हमें। और भी जुड़े हैं हमारे साथ, अंशु शर्मा मेरठ से जुड़ी हैं और मोहम्मद सरफराज आलम जी जो कि हर दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से लिखते हैं कि तेरी याद का मौसम कभी ढलता ही नहीं, बिछड़ने का जख्म आज तक भरता ही नहीं, मुलाकात की उम्मीद लिए बैठे हैं हम मगर तेरा इंतजार कभी थमता ही नहीं, हर शाम तेरे नाम का दीपक है जलाया, दिल का ये अंधेरा मगर छटता ही नहीं, आंखों में तेरी याद के मंजर हैं आज भी और कोई ख्वाब दिल में ठहरता ही नहीं। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, दिल इस दिलासे से मगर बहलता ही नहीं, तेरी राह में उम्र गुजर जाए तो गुजरे ये इश्क किसी मोड़ पे रुकता ही नहीं, कहता है सरफराज यही इश्क की रवायत, सच्चा प्यार किसी हाल में मिटता ही नहीं। बस यही कहूंगा सरकार की वाह वाह कहने का भी दिल कर रहा है और ये सोच रहा हूं कि इससे और लाजवाब शब्द मैं आपके लिए क्या कहूं, इतनी अच्छी और इतनी सच्ची दिल की बात आपने लिखी है। और बात भी यही है कि जब दिल की बात निकलती है तो शब्द अपने आप मिलने लगते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और बनने लगते हैं जज्बात, जैसे एक छोटी सी लाइन है मगर देखिए कितनी गहरी है कि अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता, और कुछ अगर तारीफ करनी हो किसी खास शख्स की, किसी खास शख्स की, तो कहते हैं कि चांद रोज छत पर आकर इतराता था। कल रात मैंने भी उसे तेरी तस्वीर दिखा दी,

0: रंगे महफिल का ये कारवां आगे भी जारी रहेगा, बस लौटता हूं छोटे से अंतराल के बाद।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंगो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार

दोपहर 2 बजे रेनबो पर। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से राम

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। नमस्कार सर, वेरी टीयरी गजल प्रोग्राम, बट आई विल नेवर फॉरगेट आकाश, यू आर ओनली माय प्योर लव एंड दिस वर्ल्ड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट मी, रिमेंबर मी ऑलवेज, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, लिविंग यू जस्ट आई एम नथिंग, हैव नो एग्जिस्टेंस, लव यू वेरी मच, वेरी वेरी थैंकफुल। टुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी, एम के रोड, मिंटो रोड, सेंट्रल दिल्ली से जज्बात आपके पहुँच गए हैं टुम्पा जी, आकाश तक पूरा यकीन है हमें। तेरी जुदाई का गम आज भी रुला जाता है, हर खामोश लम्हा तेरा नाम सुना जाता है, लोग कहते हैं मुस्कुरा लो सब ठीक हो जाएगा, दिल का दर्द मगर आंखों से छलक जाता है। मोहम्मद सरफराज आलम जी, जो कि हर दशना बाजार अररिया बिहार से अपनी खूबसूरत अंदाज के साथ। और जैसा कि मैंने कहा कि बात जब दिल की हो तो अपने अपने अल्फाज होते हैं, लेकिन मिला जुला कर जब बनते हैं जज्बात, वो कहीं ना कहीं एक ही होते हैं। तो कहा है किसी ने कि अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे, क्यों ना करे याद तुझको जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे।

ये नसीब याद अक्स संवारेगा, कोई खुशियाँ गम के आंचल पे उतरेगा, कोई इस फरेबी तमाम दुनिया में मैंने ये सोचा ही नहीं था कि अपना कह के भी पुकारेगा कोई, वो तंग खला परछाई भी खो जाए जहाँ, फलक की राह में उसको उभारेगा कोई, ये नसीब याद अक्स संवारेगा कोई, खुशियाँ गम के आंचल पे उतरेगा कोई। प्रेमचंद प्रेमी जी जितरा धामपुर से शो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आप हमारे साथ बने हुए रहे, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। माना के साथ उम्र भर का नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत थे वो रास्ते जहाँ तुम साथ चलते थे।

0: का शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे में फिल्में, और आज मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। वो चंद लम्हे हमारी मुलाकातों के याद रखना, वो बीती सारी बातें हमेशा तुम अपने पास रखना। चाहे अब हम तुमसे उम्र भर मिलें या ना मिलें, तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे, ये बात याद रखना। तुम मिले तो लगा जैसे सब मिल गया, खामोश दिल को कोई सुकून मिल गया। तुम्हारी बातों में एक अपनापन है जो हर दर्द को हल्का कर देता है। ये प्यार शब्दों में कहाँ बंध पाता है, ये तो बस महसूस किया जाता है। तुम साथ हो तो

बार राह आसान है, हर राह आसान है, तुम बिन सब कुछ अधूरा सा लगता है। नज़र की नज़र की नज़र ना लगे है, अच्छा भी इस कदर ना लगे, तुझे देखा है इस नज़र से जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। अंश शर्मा, हसीनापुर मेरठ यूपी से। बहुत ही बेहतरीन लाइन भेजी है आपने। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, नाइस प्लेलिस्ट ऑफ गजल्स, योर्स बिग थैंक्स फॉर बेस्ट प्रोग्राम, हैव अ ग्रेट नाइट एंड फ्यूचर लाइफ। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, यही कहना चाहूँगा आपको भी। हमारी दिल से ये दुआ है, जिंदगी हमेशा गुलजार रहे, खुशियों से आबाद रहे। मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैंप कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से। रास्तों को मुसाफिर ढूंढता है, ना जाने क्यों हर शय आगोश में आने को दिल करता है, ना जाने क्यों। बद वक्त यूं ही तुम आया ना करो, हम खुद से ही क्यों बात कर लेते हैं, क्यों, क्या बात है।

दोस्तों, वक्त तकरीबन हो गया है कि मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने कहा कि 8 तारीख को मुलाकात करेंगे। मैसेज मसाला मिक्स का प्रोग्राम रहेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत

सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 66 लाख का आंकड़ा पार कर गया। अमेरिका ने अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत भारत पर लगाने वाले अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जिससे भारत कम शुल्क श्रेणियों में आया है। हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 66 लाख का आंकड़ा पार कर गया। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा

का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। ईरान ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के मुद्दों पर उसके अधिकारियों पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों की आलोचना की। अमेरिका ने अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 303 के तहत भारत पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जिससे भारत का कम शुल्क श्रेणी में आया। हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने और आम जनता को परेशान करने के आरोप में एक आईपीएस अधिकारी सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। ईरान ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के मुद्दे पर उसके अधिकारियों पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों की आलोचना की। अमेरिका ने अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत भारत पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 10% किया। हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेडियो चैनल है, आइए अब सुनते हैं भुलाए न बने

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार कल लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने में एक आईपीएस अधिकारी सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। सिक्किम में नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमएनस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने और मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने पर गहरी चिंता जताई। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में कई दिनों से लगी आग से 2.5 लाख से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा। हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने

26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। सरकार कल लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं, अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने में एक आईपीएस अधिकारी सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी कल से पुनः आरंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने और मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने पर गहरी चिंता जताई। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में कई दिनों से लगी आग से 2.5 लाख से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 1-3 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारे कामा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार द्वारा मांगे स्वीकार किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त कर दिया है। उसने विद्यार्थियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को श्री धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 66 लाख से अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच जीतकर अजेय बढ़त ले चुका है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।